0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore cells है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore cells, एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore cells आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more cells इन द बॉडी, 10,000 crore cells इन द ब्रेन इनटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells कनेक्टेड टू 10,000 cells, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 cells इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज के ज़माने में माँ बाप अपने बच्चों को सुख देना चाहते हैं, सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं। बच्चे जो मांगे वो दिलाते हैं, बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं, बच्चे ने जो कहा उसे पूरा करते हैं। लेकिन यही माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। ऐसे बच्चे बड़े होने पर भी जिद्दी स्वभाव वाले बन जाते हैं। बचपन में ना सुनने की आदत नहीं होने के कारण ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद भी ना किसी से सुन नहीं पाते। अगर किसी ने किसी बात के लिए मना किया तो ऐसे बच्चे अपना आपा खो देते हैं, दूसरों पर बिगड़ पड़ते हैं। जिंदगी हमेशा हर बात के लिए हाँ तो नहीं कहेगी, जिंदगी में कभी कभी ना भी सुनना पड़ेगा। जिंदगी हर बार हमारी जिद, हमारी इच्छाओं को हाँ नहीं कहेगी। हमें अपने बच्चों को बचपन में ही सिखाना होगा कि आपकी हर जिद पूरी नहीं होने वाली है। अगर बचपन में बच्चों को ना सुनने की आदत होगी तो वो बड़ेपन में उधम नहीं मचाएंगे। अगर बच्चे किसी वस्तु की जिद करें तो पहले देखिए कि वो चीज़ उसके लिए ज़रूरी है या नहीं। अगर ज़रूरी नहीं है तो उसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे ने किसी बात की इच्छा व्यक्त की तो उसी समय उसे पूरा मत कीजिएगा, थोड़ा वक्त लीजिए। बच्चों को धीरज रखना सिखाइए, इंतज़ार करना सिखाइए। अगर हम उसी समय बच्चे की हर इच्छा पूरी करते रहे तो ऐसे बच्चे बड़े होने पर बिगड़ बढ़ सकते हैं, उनमें धैर्यता नहीं आती। आज माँ बाप बच्चों का दिल बहलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल बच्चों के आँखों पर, ब्रेन पर बुरा असर डालता है। आज बच्चे मोबाइल के एडिक्शन के शिकार बनते जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो पागलपन तक पहुंच गए हैं। बच्चे वही बन रहे हैं जो वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे बचपन में सिर्फ दूरदर्शन था, लेकिन आज के बच्चों के पास कई केबल चैनल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है। आज के बच्चों का जीवन ज़्यादा खतरे में है। आज कम उम्र में भी बच्चों के पास दुनिया भर की बातें पहुंच जाती है। कलयुग का बढ़ता प्रभाव, संग दोष, मोबाइल का बढ़ता उपयोग, फिल्में, दुनिया में घट रहे अपराध, इससे बच्चों को बचाना है। हमारा बचपन बहुत सुरक्षित था, लेकिन आजकल के बच्चों का बचपन इतना सुरक्षित नहीं है। इस बढ़ते असुरक्षा के वातावरण में बच्चों को सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है। कभी भी बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करना है, उन्हें बचपन से ही सिखाना है कि आपकी हर जिद पूरी नहीं होगी, हर इच्छा पूरी नहीं होगी। कुछ पूरी होगी, कुछ इच्छा पूर्ति के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और कुछ इच्छाएं तो बिल्कुल ही पूरी नहीं होगी। अगर हमने बचपन में नहीं सुनना नहीं सिखाया तो ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद भी हर हालात में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को बड़े गर्व से कहते हैं कि हम आपके फ्रेंड हैं। फ्रेंड बनते बनते बच्चों के पेरेंट्स माँ बाप बनना भूल जाते हैं। आजकल के बच्चों के पास फ्रेंड्स बहुत हैं और बहुत मिलेंगे भी, लेकिन पेरेंट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा डांटते रहेंगे या हम हमेशा प्यार करते रहेंगे। जब ज़रूरत होगी तब डांटना भी पड़ेगा, जब ज़रूरत होगी तब प्यार भी करना पड़ेगा। गलती हुई तो गलती भी दिखानी होगी, वरना हम हर बार सही है ये वहम उनमें नहीं पनपने देना है। हम परिस्थिति में हम ही सही हैं ये भावना भी अच्छी नहीं है। कभी कभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होना भी जरूरी है। बचपन में खुद की बात सच करने वाले बच्चे आगे जाकर भी खुद की बात को सही करने की जिद करते हैं, बड़ों का लिहाज रखना भूल जाते हैं। बच्चों को अपनी गलती स्वीकार करना भी सिखाना होगा। जब गलती स्वीकारेंगे तभी तो उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर गलती स्वीकारेंगे ही नहीं तो सुधारेंगे कैसे? गलती को स्वीकारना भी परिवर्तन की पहली स्टेज है। हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करना और दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना यह भी ठीक नहीं है। ऐसे बच्चे बड़े होने पर भी खुद की हर बात सही है यही सिद्ध करने की जिद करते हैं। इससे किसी का भला नहीं होता। अगर गलती की है तो गलती को स्वीकारना भी आना चाहिए। अनजान लोगों पर भरोसा करना नहीं है ये भी बच्चों को सिखाना चाहिए। पहले के जमाने में माँ बाप पड़ोसी के घर भी बच्चों को बड़े विश्वास से भेजते थे, लेकिन अब जमाना अलग है। बिना परखे अपने बच्चों को किसी के यहाँ भी नहीं भेजना चाहिए। भगवान की कृपा से आपके पड़ोसी अच्छे भी हो तो भी उनके घर आने वाले मेहमान कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, ये तो आपको पता नहीं है ना। पहले के जमाने में घर का पूरा काम करके भी चार पांच बच्चे संभाल लेते थे। आजकल एक दो बच्चे संभालने में भी माँ बाप तंग हो जाते हैं। बच्चों से तंग होकर उन्हें मोबाइल देना या पड़ोसी के घर बिना परखे भेज देना ये भी माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। अनजान लोगों से सतर्क रहना, सही गलत का फर्क समझना ये भी बच्चों को सिखाना होगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना, सभी फ्रेंड्स कर रहे हैं इसीलिए हमें भी करना है, यह गलत है। जरूरी नहीं जो काम सभी कर रहे हैं वो सही हो। सही के साथ अकेले खड़े होने की मन की तैयारी भी बच्चों की करानी चाहिए। जो काम सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो सही हो। अगर सच के साथ, सही के साथ अकेले खड़े होना पड़े तो उसके लिए भी मन की तैयारी रखनी पड़ेगी। जिंदगी सिर्फ मौज मजा मस्ती नहीं होती, जिम्मेवारी भी उठाना है। सही कर्मों की पहचान भी बच्चों को देनी होगी। घर की सुख शांति वातावरण को खराब करके अपनी जिद पूरी करना ये भी अच्छा संस्कार नहीं है। आज अगर हमने ऐसे संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसे संस्कार बढ़ते जाएंगे। आज अगर हमने इन संस्कारों को हंसी मजाक में लिया, ऐसे संस्कारों को बचपना समझा तो बड़े होने के बाद अपनी जिद पूरी करने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, बच्चों को समय का भी महत्व सिखाना बहुत आवश्यक है। देर रात तक घर से बाहर रहना ये भी बच्चों के लिए सही नहीं है। ये कलयुग है, सतयुग नहीं। देर रात तक बाहर रहना ये हमारी सुरक्षा के लिए भी सही नहीं है। पहले का जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। लोगों में विकारी वृत्ति बढ़ गई है, विकारी दृष्टि बढ़ गई है। इसे रोकटोक करना नहीं कहा जाता, इसे आपके भविष्य को सुरक्षित करना कहा जाता है। स्वतंत्रता यह नहीं है कि हम अपनी सारी मर्यादाएं छोड़ दें, इसे स्वतंत्रता नहीं कहते। किसी एक गलती से, लापरवाही से भविष्य खराब भी हो सकता है। आजकल के बच्चों ने स्वतंत्रता का गलत मतलब ले लिया है। स्वतंत्रता यह नहीं है कि हम कैसे भी कपड़े पहनेंगे, रात में बाहर रहेंगे, इसे स्वतंत्रता नहीं कहते। इसे अपने भविष्य में होने वाले अनहोनी के प्रति लापरवाही कहते हैं। छोटे कपड़े पहनना इसे सभ्यता संस्कार नहीं कहते और ना ही इसे स्वतंत्रता का नाम देना चाहिए। फैशन के नाम पर हम बच्चों को अश्लीलता की ओर नहीं ढकेल सकते। दुनिया में लोगों की दृष्टि विकृत हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसे समाज में कैसे जीना है ये भी हमें बच्चों को सिखाना होगा। देर रात को घर पे आने के बाद बच्चों में ये डर जरूर होना चाहिए कि माँ बाप पूछेंगे कि इतनी देर कहाँ थे, इतना देर क्यों लगी। आजकल तो उल्टा हो गया है, बड़े ही डरते हैं छोटों से ये बोलने में कि इतनी देर रात तक घर से बाहर मत रहो। अगर बड़े हमें कोई सलाह देते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए देते हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते, वो बस हमें सुरक्षित देखना चाहते हैं। ये महसूसता बच्चों में होनी चाहिए। इसमें टोकने की बात नहीं है और ना ही स्वतंत्रता की बात है। जिंदगी दांव पर लगाकर देर रात तक घर से बाहर रहना ये स्वतंत्रता नहीं है। बड़े हमारा बुरा नहीं चाहते, वो बस हमें सुरक्षित देखना चाहते हैं। इस बात की महसूसता बच्चों में होनी चाहिए। हर घर की संस्कृति अलग है, हर घर की रीति रिवाज अलग है। जो रीति रिवाज हमारे घर के हैं वही रीति रिवाज दूसरों के भी घर होंगे ये जरूरी नहीं है। हर घर की रस्म रिवाज अलग है। हम जहां भी जाएं वहां के रस्म रिवाज में हमें खुद को ढालना आना चाहिए। जिंदगी हमेशा वैसे ही नहीं चलती जैसे हम उसे चलाना चाहते हैं। कभी कभी हमें जिंदगी के अनुसार भी चलना पड़ता है। हर जगह बच्चों की मनमानी तो नहीं चलेगी ना, इस बात का एहसास बच्चों को दिलाना बहुत जरूरी है कि हर घर हर जगह आपकी मनमानी नहीं चलने वाली, कभी परिस्थिति के अनुसार भी आपको चलना पड़ेगा। इससे एडजस्ट होने की, परिस्थिति अनुसार ढलने का संस्कार बच्चों में आएगा। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज के युग में बच्चों के पास सारी सुख सुविधाएं हैं। हमने ऐसा भी युग देखा है जब टीवी, फोन, इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज के बच्चों को जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं हैं। पहले के जमाने में दिखाई जाने वाली फिल्में भी कुछ न कुछ सिखा देती थी, कुछ न कुछ कहानी बताती थी। बचपन में टीवी पर लगने वाली फिल्में ऐसी होती थी कि पूरा परिवार इकट्ठे बैठकर देख सकते थे। आज हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि बच्चों को कौन सी फिल्में दिखाएं, क्योंकि फिल्मों का बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन सब का बच्चों पर असर होता है। हमारे बचपन में स्नैक्स के रूप में भी हमें हेल्दी चीजें खाने के लिए मिलती थी, लेकिन आजकल के बच्चों को पैकेट फूड मिलता है जिसमें ढेर सारा प्रिजर्वेटिव मिलाया हुआ होता है, आर्टिफिशियल कलर मिलाया होता है, घटिया क्वालिटी का तेल इस्तेमाल होता है। बचपन में हमारा स्नैक्स चने, फुटाने, राजगीरा, कॉर्न, फल, ये सारी चीजें होती थी जो हेल्दी होती थी। खेल भी अलग होते थे। घर के आगे आंगन होता था और वही भागदौड़ वाले खेल होते थे, जिस वजह से शरीर की भी एक्सरसाइज अपने आप हो जाती थी। आजकल तो आंगन मिलेगा नहीं। वीडियो गेम, टीवी, मोबाइल, यही मनोरंजन के साधन बन गए हैं। हमारे बचपन में हर एक त्योहार उमंग उत्साह लाता था, खुशी लाता था। हर त्योहार में बनने वाला पकवान उस समय के हवामान, ऋतु के हिसाब से बनता था, लेकिन आजकल के भागदौड़ में पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स जैसे जंक फूड हमारे बच्चों के पकवान बन गए हैं। हमें बच्चों को वही खिलाना चाहिए जो हेल्दी हो। जो हेल्दी नहीं है वो चीजें अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को नॉनवेज जैसा तामसिक आहार भी नहीं देना चाहिए। नॉनवेज बच्चों के मन को कमजोर करता है। नॉनवेज का मन पर बुरा असर होता है। जितना हो सके बच्चों को सात्विक अन्न खिलाएं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर तामसिक, नॉनवेज, मांसाहारी अन्न खिलाएंगे तो ऐसे बच्चों में डर, गुस्सा, नफरत, हिंसा के संस्कार बढ़ते जाएंगे। हमें ऐसे खाने से बच्चों को बचाना होगा। आजकल के बच्चों को बाहरी सुख सुविधाएं देना सिर्फ यही हमारी जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि इमोशनल हेल्थ पर भी अब हमें ध्यान देना होगा। आज हमारे बच्चे इंटेलिजेंट तो है, लेकिन मन से कमजोर है, ये भी हमें स्वीकार करना होगा। केवल शरीर की हेल्थ पर ध्यान देकर नहीं चलेगा, बल्कि मन की हेल्थ पर भी अब हमें ध्यान देना पड़ेगा। शरीर की खुराक के साथ साथ मन के खुराक पर भी हमें ध्यान देना होगा। मेडिटेशन, प्राणायाम, ओम का उच्चारण, योगा, भ्रमरी आसन, ये सब हमें सिखाना होगा। जिंदगी में कब कौन सी परिस्थिति कैसे आएगी हमें नहीं पता, पर हर परिस्थिति के लिए बच्चों की मानसिक तैयारी भी होनी चाहिए।

उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्णच हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
3: तेरे जैसा यार कहां, ऐसा यार आला।
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकडी की काठी, काठी पे घोडा।
2: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं। त्याच सोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध।
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा।
3: पहला नशा, पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
6: पुणेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता ही नहीं यहाँ, लड़ने वालों के कदम में जहान होता है।
1: नमस्कार, आपने कहता है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार मंडळी, कसे आहेत? आपण सर्वजण कोविड पासून बचावासाठी खूप जागरूक आहे आणि जागरूकता वाढवण्यासाठी IVR नंबर वर निश्चित फोन करा +918066019225। नंबर एकदा +918066019225। या IVR नंबर वर फक्त मिस कॉल करा युवानी। आपण ऐकत आहेत रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। My energy is for a purpose of healing thousands of people. And जब हम उस intention से अपनी energy को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, discipline करेंगे, disciplinary action भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। It's only a lifestyle change. These are lifestyle changes. Energy life है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हमने जहां बात की लाइफ स्किल्स की, यानी कि जीवन की वो कौशल, वो कलाएं जो शायद हम नहीं जान पाए थे, और तभी जीवन जो था वो ऐसा नीरस लग रहा था, वैक्यूम लगता था, खाली खाली लगता था, दुख दर्द हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसमें एक बात, एक ऐसी स्किल जो हमने समझी कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार वो बहुत पावरफुल हैं। हम उनके थ्रू, उस ऊर्जा के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। बात एक और जो हमने समझी, उन्हें क्रिएट करने का मादा की शक्ति मेरे पास है, यानी अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स मैं खुद क्रिएट करता हूँ, सिचुएशन कोई भी हो। हमने कई तरह के थॉट्स के बारे में बात की, किस तरह के थॉट्स हैं, 7 types ऑफ थॉट्स जो हम क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे पावरफुल थे टॉक्सिक थॉट्स, यानी कि पॉइजनस थॉट्स, वो थॉट्स जो मुझे साफ नजर आते हैं। कई और तरह के थॉट्स थे, उन पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल।

0: हमारे साथ हैं ब्राह्मा कोई सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत है। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, नेगेटिव थॉट्स, आपने कहा टॉक्सिक थॉट्स, और उसके बाद बात की थी नेगेटिव थॉट्स की। टॉक्सिक थॉट्स अगर हम एक बार और उसको क्लियर कर लें कि वो जो बहुत पावरफुल होते हैं, चाहे वो गुस्से के थे, नफरत के थे, कई बार देखा जाए तो हर्ट के थे, और थोड़ा सा जो हमें दिख रहे थे एक्सप्रेशन, उसके बाद नेगेटिव में आपने कहा था इरिटेशन भी शामिल है, डर, एंग्जाइटी, घबराहट, और ना सिर्फ ये कि वो दूसरा कुछ गलत कर रहा है बल्कि ये सारी चीज़ें भी उनमें शामिल हो रही थी। डॉक्टर पटेल, लेकिन कहा जाता है जिन्हें हम नेगेटिव थॉट्स कह रहे हैं अभी, कि थोड़ी सी घबराहट, कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ यू नो एग्ज़ाम है, उससे पहले की थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा स्ट्रेस, वो ज़रूरी है, नहीं तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती।
1: लेकिन फिर भी वह नेगेटिव थॉट अगर है तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट है। एक्चुअली जो हम नाम देते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। उसको घबराहट नहीं कहो, एंग्जाइटी नहीं कहो, उसे मोटिवेशन कहो। एक डोरोथॉन्स ग्राफ माना गया है जो कहता है कि जब व्यक्ति में मोटिवेशन है, प्रेरणा है, तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है, लेकिन जब वो नेगेटिविटी का रूप ले लेता है तो उसका परफॉर्मेंस भी नीचे आ जाता है। जैसे थोड़ा सा उससे अगर कंसर्न है, एग्जाम के बारे में कंसर्न है, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन अगर वो डर का रूप ले ले तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसलिए क्या होना चाहिए कि भले एग्जाम है तो भी पॉजिटिव विचार आए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है। कहते हैं आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन आई क्यू, तो मैं कर सकता हूँ, वह थॉट होना चाहिए, तब परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर एंग्जाइटी का रूप ले लिया तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव थॉट्स ही जरूरी।
0: हाउ विल आई नो वेदर माय कंसर्न और माय एंग्जाइटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कैसे पता चल पाएगा?
2: डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर फीलिंग।
1: या
2: हाउ आर यू फीलिंग, इमीडिएटली पता चलता है कि अगर वो नेगेटिव है, डाउट वाली है, फियर ऑफ फेलियर की है, फियर ऑफ नॉट एक्सेप्टेंस,
0: वो जो वो स्टमक में कुछ होना शुरू हो जाता है,
1: ये दिमाग में भी होगा।
2: ये तो फिजिकल लेवल पर है, पर अदरवाइज इमोशनल लेवल पर भी तो फीलिंग आ जाती है ना। यू कैन मेक आउट वेदर यू आर फीलिंग नाइस और यू आर नॉट फीलिंग वेरी नाइस, वो पता चल जाएगा।
0: कॉन्फिडेंट अगर एग्जाम में या परफॉर्मेंस से पहले मन अच्छा है, मजा आने वाला है या मजा आ रहा है, देन इट इज लाइक पॉजिटिव, और अगर लग रहा है कि नहीं मैं से नहीं हो पा रहा, घबराहट है या हो पाएगा या नहीं, तब नेगेटिव।
2: एंड दूसरा भी होगा कि अगर पॉजिटिव है, दे आर स्लोअर द थॉट्स, दे आर फ्यूअर इन नंबर एंड दे आर स्लोअर, तो आपको यहाँ पर काफ़ी साइलेंस या स्टेबिलिटी जैसा लगेगा। लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो बहुत फास्ट चलते हैं, कि उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको वो प्रेशर एक्सपीरियंस होगा, सर भारी जैसी फीलिंग आएगी, आप थिंकिंग टू मच, पता चलेगा। रिलैक्स्ड फील करेंगे इफ़ इट्स पॉजिटिव, डिस्टर्ब्ड फील करेंगे इफ इट्स नेगेटिव, तुरंत पता चल जाता है। जस्ट उस समय परिस्थिति को ना ब्लेम करें, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि दिस इज व्हाट आई एम क्रिएटिंग, और अगर मैं नेगेटिव क्रिएट कर रहा हूँ उसका मेरी बॉडी पर भी असर आएगा, उसका फिर मेरी परफॉर्मेंस पर असर आएगा, सो लेट मी सिट बैक, चेंज माई थॉट्स, चेंज, क्योंकि थॉट क्या होगी, जैसे आपने कहा स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जाम है, इट्स नॉर्मली फियर ऑफ फेलियर, कि अगर नहीं हुआ ठीक तो, अगर पब्लिक को या जो वॉच कर रहे हैं उनको नहीं पसंद आया तो,
0: बहुत लोग डिपेंड कर रहे हैं इस पे, यू नो बहुत सारी चीजें होती हैं,
2: तो ये सारी तो फियर ऑफ फेलियर की है ना, फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो ये सारी थॉट्स पॉजिटिव कैसे हो सकती हैं? एंड क्योंकि फिर मैंने परफॉर्मेंस करने से पहले जो भी, इवन वाइल गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आज हमें इंटरव्यू पे जाना है, प्रेजेंटेशन करनी है कॉलेज में, कोलीग्स के सामने, क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन करनी है, ये सारी थॉट्स अगर नेगेटिव होंगी तो मैं ऑलरेडी यू नो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एक्चुअली मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एंड फिर उसका मेरी बॉडी लैंग्वेज पर, मेरे फेस पर, एंड फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइब्रेशंस जो सामने जाएंगी, अगर मैं पहले ही आपको ये वाइब्रेशंस भेजूँ, आप मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपको नहीं अच्छा लगने वाला है जो मैं करने वाली हूँ आज, ऑलरेडी आई एम सेंडिंग दैट एनर्जी, एंड ऑलरेडी आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि आज नहीं पसंद आने वाला है जो मैं करूँगी, तो एज आई थिंक सो विल हैपन, वो हो जाता है फिर।
0: तो डॉक्टर पटेल, ये तो रही बात नेगेटिव थॉट्स की, हमने और कई तरह के थॉट्स की बात की थी, वेस्ट थॉट्स थे, उनमें क्या क्या शामिल है?
1: वेस्ट थॉट जो है वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइम वेस्टर है। कई बार आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, और एडवर्टाइजमेंट को पढ़ रहे हो, तो इट इज योर वेस्ट ऑफ टाइम, भले वो कंपनी को फायदा होगा, आपको तो लॉस होना है, तो इसलिए इस प्रकार के विचार भी टाइम वेस्ट
0: है। फिर हम क्या करें, मतलब आप सड़क पे जा रहे हैं, वो दिख रही है चीजें, तो हम पढ़ेंगे
1: नहीं, लेकिन तो आप और कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग करिए।
0: अच्छा, पर वो फिर एंग्जायटी नहीं होगी, वो फिर बार बार फ्यूचर के बारे में सोचते जाना।
1: नहीं, प्लानिंग आप कर रहे हैं कि अब जाकर के मुझे क्या करना है और कोई काम करना है उसके बारे में कुछ सोचिए, तो वो एक्चुअली प्रोडक्टिव थॉट होगा। नहीं तो सिर्फ एड को पढ़ना वो तो वेस्ट थॉट हो गया। और भी एक बात भी, लोग आपस में बैठ के गॉसिपिंग करते हैं एक दूसरे के बारे में कुछ सोचते, बोलो नेचुरल करो, नेगेटिव नहीं भी है, नहीं ऐसे ही कुछ चर्चा कर रहे हैं।
0: Why do we enjoy it so much? I wanted to talk about it. Means waste जब हम क्रिएट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आनंद क्यों प्राप्त कर रहे होते हैं?
1: There's a spice in it, in fact. और ये भी कहेंगे, इसको एक प्रकार से तो नेगेटिव भी कह सकते हैं कि भी किसके बारे में सोच करके हम आनंद ले रहे हैं, उसके अवगुण के बारे में कोई डिस्कशन करते हमको अच्छा लग रहा है, तो वेस्ट तो है ही है, साथ साथ कहेंगे वो नेगेटिव भी है।
0: नहीं, आई अंडरस्टैंड कि दीज आर वेस्ट थॉट्स, खासकर गॉसिप पे तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, अननेसेसरी इतना टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, बट हम उसमें सक्ड इन क्यों होते हैं? व्हाट इज इट दैट मेक्स अस टॉक अबाउट अदर पीपल एंड यू नो लाइक कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम को मजा
2: मेक्स मी फील सुपीरियर। सी, जितना मैं अपने आसपास के लोगों के लिए उनकी निंदा कर रही हूँ एंड फिर सब लोग भी उसमें जुड़ रहे हैं, और हम क्या गॉसिप मतलब क्या, कमजोरियाँ, व्यर्थ चिंतन, उसमें कभी भी विशेषताएं नहीं डिस्कस हो रही हैं। गॉसिप मीन्स कि इट्स अ नेगेटिव थिंकिंग, तो दूसरों की नेगेटिव कहीं ना कहीं हम जानबूझ के नहीं कर रहे कि हाँ ये मुझे अच्छा फील करा रहा है, बट एक्चुअली सटल वे में दूसरे को नीचे खींचना मुझे फील होता है कि हाँ आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, सो आई एम अ नाइस पर्सन, तो दिस इज ट्राइंग टू यू नो स्टिम्युलेट माई सेल्फ टू फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, दिस इज अ वेरी सटल वे ऑफ मेकिंग योर सेल्फ सुपीरियर टू अदर पीपल।
0: लेकिन हम तो पहले जो बात की कि फील गुड, यू नो जो थॉट्स आपको गुड फील कराएं, दे आर ओके,
1: नॉट एट समवन्स कॉज।
0: नहीं, पर उसको तो पता नहीं चल रहा ना,
2: एनर्जी तो गई ना,
1: वो एनर्जी भी जाएगी वहां तक।
2: हाँ, बात तो जाएगी लेकिन एनर्जी कितनी गई, और मैं इंस्ट्रूमेंट बनी, अगर मेरे अंदर आपके प्रति कोई नेगेटिव थॉट चल भी रहा है, अगर मैंने उनको 5 लोगों के साथ शेयर किया, फिर 5 लोगों ने भी उस तरह की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, ये सारी अगर मैं निमित्त बनी आप तक भेजने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा कार्मिक अकाउंट क्या क्रिएट हो रहा है? 5 लोग अगर आपको इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, रिटर्न भी मैंने क्रिएट किया था, वो जो बीज एंड द एप्पल, दिस इज दैट, कि वो जो बीज बोया वो मैंने बोया नेगेटिव, एप्पल सारे कैसे निकले, ये सारे सड़े हुए निकले, जिम्मेवार कौन? आई हैव टू कीप चेकिंग द सीड एट एवरी पॉइंट कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। फिर आप बैठे होंगे कभी एंड आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ आज, पता नहीं लेकिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा, I'm not feeling very nice today.
0: लेकिन मैंने कोई उनकी कोई ऐसी बुराई ना की हो, I'm actually going to the psychology of the gossip also. I'm just having fun.
1: इसलिए तो waste thought कहा ना, हम negative नहीं कह रहे हैं, बोलो negative एक subtle demarcation line है, वो negative हो जाता है immediately, लेकिन फिर भी ideally as you are saying कि भी कोई बुराई नहीं कर रहे, सिर्फ बस ऐसे ही हम time pass कर रहे हैं, तो भी तो time waster हुआ। एक्चुअली तो हमें कुछ प्रोडक्टिव थॉट होना चाहिए कि जिससे स्वयं का सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, समाज में कोई फायदा हो, औरों को कुछ बेनिफिट हो।
0: वो बातें इतनी बोर क्यों लगती हैं? ये बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो बातें बोर लगती हैं। अगर कोई अब ये सब बातें हो रही हैं और कोई आके कहे कि नहीं आप, हम समाज के लिए कुछ क्यों नहीं सोचते, हम अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए क्यों नहीं सोचते, वी डोंट लाइक दैट,
2: बिकॉज देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपके बारे में बैठकर एक घंटा बात कर सकती हूँ, एक पूरा दिन भी बात कर सकती हूँ, उसमें मुझे थोड़ी कुछ करना पड़ता है, सिर्फ आपके बारे में बात करना है, इट्स मेकिंग मी फील गुड। लेकिन जैसे ही अपने बारे में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, विच मीन्स देन आई विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो दैट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन रेडी है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? इट्स ईजी बैठ कर ये इनसे, इनको ऐसे करना चाहिए। इवन अगर समाज के बारे में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? आजकल देखो समाज में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, इट्स ऑलवेज अबाउट दूसरों को क्या क्या करना चाहिए,
0: क्रिकेट,
2: एक्टर्स,
0: फिल्म, तो इट मींस ये सब उस कैटेगरी में।
1: हाँ, सब वेस्ट हुआ क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है,
2: क्योंकि और मैं उन बातों पर चिंतन कर रही हूँ जो मेरे कंट्रोल में भी नहीं।
0: पर कई बार कहा जाता है कि फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसी ये सारी बातें करते हैं आप तो आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है।
2: तो फिर उसके बाद सिर्फ ये चेक करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद रिजल्ट क्या निकला, इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या थी। वही जैसे गिरीश भाई ने कहा, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, नेगेटिव भर रहे हैं, थॉट भी नेगेटिव होगा, इससे अच्छा थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्म करें, अभी भी बातें करें, बातें करें बैठकर, चाहे औरों की भी बातें करें, एक दूसरे की भी करें, अपने भी करें, क्वालिटी विशेषताओं पर भी तो फोकस हो सकती है, उन्होंने जो अचीव किया उस पर भी फोकस हो सकती है, उसके लिए उन्होंने कौन सी स्किल या कौन सी क्वालिटी यूज़ की उस पर भी तो फोकस हो सकती है। जैसे ही अपने आप को जो इन्फॉर्मेशन है उसमें चेंज करेंगे, थॉट्स भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी सटल, लेकिन ये बहुत सटल रूप में हो रहा होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपना ही कितना नुकसान कर रहे हैं, हम अपना ही कितना फ़ायदा कर सकते हैं। हम लोग खुद देखते हैं पर्सनली कि पहले हम लोग बैठते तो पता नहीं इसकी उसकी कितनी बातें कर लेते, अब जनरली हम बात करेंगे कि ये सिचुएशन आई, मैंने ना इसको इस तरह से हैंडल किया, यहाँ पर आई फेल्ड टुडे, यहाँ पर आई कुड डू इट। नाउ दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन इज़ यूजफुल फॉर मी ऑल्सो एंड इट्स यूजफुल फॉर इवन द अदर पर्सन विद हुम आई एम टॉकिंग। तो कॉन्वर्सेशन चेंज हो गया, ऐसे नहीं बोरिंग हो गए, हमने बात बात करना बंद कर दिया, हम एकदम चुप हो गए, कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी चेंज हो गई एंड वो मोर रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई, वो प्रोडक्टिव हो गई, तो फिर वो वेस्ट में नहीं जाएगी,
0: वो लर्निंग में आ जाएगी,
2: लर्निंग में आ जाएगी। तो वो आपका अपना फायदा, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसको भी इंस्पिरेशन।
1: और जो इन्फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो अगर उस क्षेत्र में है तो आपको जरूरत है। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है, और क्रिकेटर की आप कमियां निकाल रहे हैं, बोले आनंद आता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज आई डोंट नीड इट। और भी कई चीजें हैं कि जिसका मेरा कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर ऐसी बातें क्यों मैं अपने अंदर फीड कर रहा हूँ, मेरे लिए वेस्ट थॉट है।
2: एक बहुत सटल संस्कार बनता है जब आप टीवी देखते हैं या आप मूवी देखते हैं, वो लोग वहाँ है उस तरफ, यू कांट सी देम, यू कांट टॉक टू देम, लेकिन आप उनको यू नो जजमेंटल होते जाते हैं। संस्कार किसका बन रहा है जजमेंटल होने का? वो संस्कार मेरा बन रहा है। तो अभी मैं वो क्रिकेटर्स और एक्टर्स के प्रति जजमेंटल होती, धीरे धीरे मेरे आसपास जो लोग होते उनके प्रति मैं जजमेंटल होने लग जाती हूँ। दैट इज नॉट समथिंग व्हिच पीपल आर गोइंग टू टेक फ्रॉम मी।
0: क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना कि उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि मेरी हैबिट वही बन जाएगी,
1: इसलिए कई बातें तो सुनो भी नहीं। वहां भी ना कहना।
0: हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि मैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे आसपास लोग बातें कर रहे हैं, विल इट अफेक्ट मी?
1: यू डोंट लिसन, क्योंकि सुना तो है ना आपने। कई लोग कहते एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, ऐसा नहीं होता, दोनों कानों से सुन रहे हो, अंदर जाता है
0: इन्फॉर्मेशन, जा रही है अंदर,
2: जा रही है। और जो जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी वो सोर्स ऑफ थॉट्स है। बहुत फिर जो आजकल हम कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझ में अभी आ गई है, क्रिएट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं भरी, इन्फॉर्मेशन नेगेटिव, थॉट्स भी फिर नेगेटिव या वेस्ट की डायरेक्शन में ही जाएंगे।
1: सुकरात के लिए बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं। कहते सुकरात के पास उसका एक मित्र गया और उसने कहा कि हम दोनों का जो तीसरा मित्र है उसके बारे में मेरे पास बहुत अच्छे समाचार है, तुमको सुनाऊं? तो सुकरात ने कहा नहीं ठहरो, पहले हम ट्रिपल फिल्टर टेस्ट करेंगे, और तीन फिल्टर्स में से एक फिल्टर में से भी तुम्हारी बात पहुंच जाए तो जरूर सुनाना। का क्या? कहते पहला फिल्टर है कि तुम्हारे पास जो समाचार है वो सत्य है? उसने कहा नहीं पता, मुझे भी किसी ने सुनाए हैं, तो एक फिल्टर से तो आपकी बात नहीं पहुंची। जो दूसरा फिल्टर है कि आपके पास जो समाचार है कुछ अच्छे समाचार है? कहा नहीं नहीं साहब, तो बहुत बुरे समाचार है, तो दूसरे फिल्टर से भी नहीं पहुंची। तीसरे फिल्टर से भी निकल जाए तो ठीक है। कहा तीसरा फिल्टर है, क्या कोई काम की बात है? कहा नहीं, ये तो बेकार की बात है। तो सुकरात ने कहा मुझे नहीं सुनाओ, देखो तीनों फिल्टर से ये बात नहीं पास हुई।
0: सही बात है, सच की बात, सच्चाई का फिल्टर, और आपने कहा कि यूज़फुल
1: और अच्छी बात,
0: तो ये हमने आई थिंक वो फिल्टर्स लगाने बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो हम बात रही डॉक्टर पटेल वेस्ट थॉट्स की, अब हम आते हैं आपने कहा नेसेसरी थॉट्स एंड देन वी मूव ओवर टू राइट एंड
1: पॉजिटिव थॉट्स आल्सो। हां, नेसेसरी थॉट है कि भी कहीं काम आपको करने, स्नान करना है, खाना करना है, आपको ऑफिस जाकर के काम करना है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उसके बारे में भी सजगता से करो, ज्यादा सोचो नहीं, से जो नेसेसरी थॉट्स है वो भी कम से कम हो तो अच्छा है। कार्य जरूर करो लेकिन ज्यादा सोचो नहीं, क्योंकि हर विचार आपकी एनर्जी को ले जाता है। तो इसके कारण अगर आप कम सोचेंगे नेसेसरी थॉट्स, जो नेसेसरी कार्य कर रहे उसमें भी, तो एनर्जी को सेव करेंगे और अल्टीमेटली आप थकेंगे नहीं।
2: मतलब उसमें अननेसेसरी कोई थॉट्स ना हो, दैट इज इम्पोर्टेंट।
0: नेसेसरी और
2: नेसेसरी हो लेकिन अननेसेसरी कोई थॉट्स ना हो,
1: तो बिल्कुल जीरो,
2: तो वेस्टिंग एनर्जी।
0: अच्छा, एक और अब हम आते हैं राइट एंड पॉजिटिव थॉट्स पे, उनमें क्या शामिल है?
1: हाँ, अब पहले हम पॉजिटिव थॉट्स को ले, क्योंकि पॉजिटिव लोगों को मुश्किल लगता है, जब पॉजिटिव नहीं पॉसिबल है तो फिर हम राइट थॉट को कर
0: लेंगे। लेकिन एक हमने सर्वे किया तब ज्यादातर लोगों ने बोला कि हम तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव, दे ऑलवेज फील दैट आई एम वेरी पॉजिटिव, व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव, यू नो मैं तो कभी बुरा नहीं सोचती, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहती हूँ, जिंदगी एक लड़ाई है जिसमें आगे लड़ना ही है, आगे बढ़ना ही है, तो व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय पॉजिटिव।
2: जिंदगी एक लड़ाई है भी एक नेगेटिव थॉट है, नो जिंदगी एक लड़ाई है, व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ द थॉट, तो आपको लड़ाई थॉट क्रिएट करते ही
0: आपको युद्ध दिखने लगता है
2: आएंगे, और फिर जैसे जिंदगी एक लड़ाई है तो फिर हार और जीत है, और अगर हार और जीत है तो फिर आप जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार है, पूरी चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स बन जाएगी उसके बाद। एवरी थॉट इज सो इम्पोर्टेंट,
1: सो देयर पॉजिटिव इज लाइफ इज अ गेम,
0: लाइफ इज अ
1: जर्नी, इस प्रकार के थॉट्स हो तो उस समय पॉजिटिव थॉट्स बनेंगे। और जो ये लोग कहते हैं ना कि हम सदैव पॉजिटिव सोचते, कई बार प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे, अगर वो अपनी एनालिसिस करें अच्छे से तो देखेंगे कि उसमें भी बहुत सारे उनके ऐसे थॉट्स हैं जिसमें अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो औरों पर डाउट कर रहे हैं, और कुछ ऐसी बात है, इनसिक्योरिटी की बात है, भले चलो थॉट लेवल पर नहीं भी पहुंची लेकिन वो अंदर में फीलिंग तो आ रही है।
0: डॉक्टर पटेल जिन्होंने कहा कि मैं जिंदगी में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बट ही डजंट वांट टू चेंज दिस,
1: एक लिमिटेशन उन्होंने क्रिएट करी, मतलब इतना ही है उनके लिए, आगे तो कुछ है ही नहीं, परंतु आगे तो बहुत कुछ है,
0: लेकिन वो ये सोचते हैं
1: ट्रस्ट नहीं करके भी वो कंफर्टेबली जी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रस्ट करने लगे तो इससे 10 गुना मिल सकता है।
2: और अगेन ये लोग जो ऐसा फील करते हैं कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, मतलब वो सब पे डाउट करते हैं, देयर इज नॉट अ जीरो थॉट, आई डोंट ट्रस्ट यू मींस आई डाउट यू, एंड अगर मैंने ये क्रिएट कर लिया है कि मैं ऑलमोस्ट सभी पर डाउट करते हूँ जो मेरे आसपास है, तो मैंने सभी को कौन सी एनर्जी भेजी है, सभी से रिटर्न भी अगर मैं आपको डाउट करूँ तो आप भी मेरे बारे में कैसा सोचेंगे, देन दिस पर्सन नीड्स टू चेक कि हाउ डज ही फील इनसाइड ही और शी। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इतने लोगों से मुझे उस तरह की एनर्जी मिलेगी मैं अच्छा फील नहीं कर सकता। ये फर्क है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा ये अच्छा फील नहीं करना ये एक्चुअली उस बात की वजह से है।
0: But he feels, he says that I feel safe.
2: वो इसलिए क्योंकि अगर हम ट्रस्ट करते हैं सब पे तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई मुझे एक धोखा देगा। अगर हम देखें लेट्स से कि मुझे बहुत क्लोज अपने जीवन में और वर्किंग एरिया में 50 लोगों से डील करना पड़ता है सारा दिन में, तो 50 लोगों पर डाउट करते हैं ताकि 50 में से कोई एक कभी धोखा ना दे दे, जस्ट लुक एट द लॉ ऑफ एवरेज, हम क्या कर रहे हैं। तो मैं 50 लोगों से नेगेटिव एनर्जी लेने के लिए रेडी हूँ, 50 लोगों के प्रति नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अपने आप को इतना स्टेबल नहीं कर सकता कि अगर किसी एक ने कुछ ऐसा कर भी दिया तो आई रिमेन स्टेबल एट दैट टाइम, एंड फिर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही जो मेरी लाइकिंग के विरुद्ध है, एंड इतना डाउट क्रिएट करने के बाद उसको फेस करने की मेरे अंदर वैसे भी ताकत नहीं होगी। ट्रस्ट करें, सब पे ट्रस्ट करें, बहुत एनर्जी अच्छी आप क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी आपको वापस मिलेगी। अगर वो 50 में से कोई एक कुछ और कर भी देता है, यू हैव इनफ पावर टू फेस द सिचुएशन,
0: बिकॉज़ यू आर वेरी फुल ऊर्जा और दुआएं,
2: यू आर वेरी फुल, यू विल बी एबल टू फेस द सिचुएशन, एंड फिर आपको जो आप जो उनको वो एनर्जी भेजेंगे दैट माइट इवन हेल्प देम टू चेंज द वे दे आर लीडिंग देयर लाइफ। इट्स पॉसिबल।
1: 98 तो अच्छा हुआ ना, 2% ही, अगर एक ने बुरा किया तो 2% ही आपको लॉस है, 98% तो बेनिफिट है कि जिसको आप रोक रहे हैं उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा।
2: इट्स लाइक सेइंग कि मैं रोड पे कभी भी नहीं जाऊंगा ताकि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए। इसका मतलब आप अपने जीवन को कितना रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे कि आप कभी सड़क पे बाहर निकलेंगे ही नहीं क्योंकि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए। इट्स लाइक दैट रिस्ट्रिक्टिंग योर लाइफ बिकॉज़ ऑफ द फियर ऑफ
0: वन पर्टिकुलर समबडी हू सेज
1: एक्सपीरियंस है, जो ऐसे लोग होते हैं ना उनको चाइल्डहुड में कहीं कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, समबडी हैज ब्रोकन देयर ट्रस्ट, और बस वो फिर अंदर में एक ब्लॉक बन गया।
0: तो पर वो दे फील कंफर्टेबल विद दैट,
1: नुपले कंफर्टेबल फील कर रहे हैं लेकिन वो अपना जो सचमुच हासिल करना चाहे वो नहीं कर रहे हैं।
0: तो वो क्या अपने आप कर सकते हैं या दे नीड समबडी एल्स टू हेल्प देम?
1: अपने आप भी कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं अगर इस चीज को वो समझे अच्छे से कि ये मेरे में ब्लॉक है, और उस ब्लॉक को मुझे रिमूव करना है.
0: इट ऑल कम्स बैक टू जो हमारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज
2: हैं. ऐसे व्यक्ति के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे ना कभी भी. और फिर वो आप शुरू वर्किंग लोगों से करोगे कि मैं अपने काम के क्षेत्र पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति घर पे भी नहीं ट्रस्ट कर पाएगा.
0: उन्होंने बोला मुझे, ही सेज कि नहीं है, तो तभी तो उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है.
2: अब जिसके रिश्ते, कोई भी रिश्ता ऐसे अच्छा ना हो, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट. अंदर हमेशा एक खालीपन मिलेगा.
0: तो ये हुआ कि हमने जो आपने कहा पॉजिटिव थॉट्स, वो जो आपको फील गुड कराए.
1: नहीं, उतना ही नहीं. पॉजिटिव तो एक तो सिंपल तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि भी हर परिस्थिति में कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है. तो हम एडवांटेज को ढूंढ निकाले और फिर उसे बार बार रिपीट करें. और कई परिस्थितियों में एडवांटेज छोटा होता है, डिसएडवांटेज बड़ा है. तो छोटा एडवांटेज भी ढूंढ निकाले. कई बार वो एडवांटेज इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो इनडायरेक्ट एडवांटेज को भी ढूंढ निकाले. और ऐसी परिस्थिति में तो मैं एडवाइस देता हूँ कि उसको लिखो. सोचने जाएंगे तो नेगेटिव में ही जाना है, क्योंकि सामने नेगेटिव है, फोर्स भी नेगेटिव का ज्यादा है. तो इसलिए पॉजिटिव को लिखो 20 बार 25 बार, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव की ओर ध्यान जाएगा.
0: हर सिचुएशन, हर व्यक्ति में हमें पॉजिटिविटी दिख सकती है, होती ही है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं
1: कर सकते हैं.
2: अगर टफेस्ट सिचुएशन भी हो ना, जिसमें आपको लगे कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, सपोज
0: किसी लव्ड वन की डेथ में क्या पॉजिटिविटी,
2: उसमें भी उस सिचुएशन को अगर मैं स्टेबिलिटी से हैंडल करके बाहर निकल आई, आई हैव कम आउट स्ट्रॉन्गर. उतना तो ध्यान रखना पड़ेगा. सी इट्स ऑलवेज कि मेरा इतना नुकसान हो गया है, चाहे वो नुकसान जो भी हो, लेकिन और कोई नुकसान मैं नहीं क्रिएट करूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है. उस टाइम पर अपनी स्टेट ऑफ माइंड पर ध्यान रखने से डेफिनेटली, जैसे आपने कहा किसी ने शरीर छोड़ा, इसमें किसी को कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा उसके प्रति भी अभी मुझे कैसी एनर्जी भेजनी है, वो आत्मा भी अभी कहीं और है, और जो मैं थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ वो उसको जा रहे हैं. मैं नुकसान तो नहीं कर सकती ना उसका, उसका अपना और जो परिवार के बाकी लोग हैं. आई कैन नॉट क्रिएट सो मच पेन फॉर सो मेनी पीपल. सो एवरी टाइम नेगेटिव सोचना कभी भी फायदे में नहीं हो सकता किसी के लिए भी.
1: और बहुत सारी बातें कि भाई इतना ही समय उस आत्मा का मेरे साथ पार्ट था, तो वह पार्ट पूरा हुआ, तो मैं पीसफुली अच्छे वाइब्रेशन दूं.
0: अच्छा, और इसमें राइट थॉट्स में क्या शामिल होगा?
1: पॉजिटिव थिंकिंग पर बहुत सारी किताबें भी है, लोगों ने पढ़ी भी है किताबें, लेकिन फिर भी लोग पॉजिटिव नहीं थॉट सोच पाते, क्योंकि उसमें एक जो मूल चीज में ही अगर वह पकड़ लो तो सब कुछ हो जाएगा. और उसका मूल यह है कि ये इस बात को पक्की कर लो कि हो सकता है कि वर्तमान में कोई अच्छी बात दिखाई दे नहीं रही है, इनडायरेक्ट भी नहीं दिखाई दे रही है, तो भी यह मान्यता बना लो कि भविष्य में कुछ फायदा होगा, और ये भी पॉजिटिव है. अगर एक बार पक्का व्यक्ति कर ले कि भी फ्यूचर में इससे कुछ बेनिफिट होगा, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी है कि जिसमें व्यक्ति को उस समय कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन आगे चल करके कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ.
0: लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में, तो वैसे भी अध्यात्म भी ये कहता है कि ना पास्ट के बारे में ना फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट के बारे में सोचो. तो फिर ये अगेन
1: प्रेजेंट में रह रहे हो, लेकिन ये मान्यता तो बना सकते हो, उनको जो डिस्टर्ब नहीं होना है
0: कि इसमें ही कुछ फ्यूचर
1: लॉस हुआ है ना, अभी बिजनेस में लॉस हुआ, तो भी मैं मन को पीसफुल रखूं कि भले इस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके कारण फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, तो वह भी एक प्रकार से पॉजिटिव हुआ.
2: उससे आप फ्यूचर में नहीं जा रहे, आप अपने प्रेजेंट को ठीक कर रहे हो.
0: सी व्हाट इज द एम, आपको हौसला दे रहे हो.
2: नहीं, एंड इट्स अ बिलीफ सिस्टम जिसको आपको अच्छी तरह से पक्का करना है, एंड थॉट्स विल ग्रेविटेट द सिचुएशन टुवर्ड्स यू. सी, ये परमात्मा हमेशा हमें कहते हैं ड्रामा की हर सीन, क्योंकि ये पूरा एक ड्रामा है ना, ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, परफेक्ट है, कल्याणकारी है. इसको इतना पक्का हम लोगों ने किया है, एंड एक्चुअली हर सीन में कुछ बेनिफिट होता है. कोई सीन्स ऐसी होती हैं जो उस टाइम तो बहुत ही अकल्याणकारी लगती हैं, लेकिन अगर रिपीटेडली आपने अपने आप को तैयार किया है इस बात के लिए, इसमें भी कल्याण है, तो पहले तो आप उस समय उस टाइम स्टेबल हो जाते हैं. थोड़े टाइम के बाद, चाहे वो टाइम कितना हो, 6 महीना 1 साल, कई बार उससे भी बहुत ज़्यादा, आपको वो कल्याण मिलता है, एंड फिर आप कहते हैं अच्छा हुआ वो हुआ, तो देखो अब कैसा हुआ. वो तो ठीक है, वो तो बाद में, लेकिन उस टाइम कैसा बीता आपका टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बाय क्रिएटिंग दिस थॉट कि इसमें भी कुछ कल्याण है, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, आप टोटली प्रेजेंट पर फोकस्ड हैं. एम इज के हर थॉट प्रेजेंट में हो और हर थॉट स्टेबिलिटी की तरफ हो, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस मैं क्रिएट नहीं करूं. डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से सिचुएशन मैग्नीफाई हो जाती है. यू नो, छोटी सी भी प्रॉब्लम है लेकिन मैं उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं ढूंढूं, नेगेटिव ही ढूंढूं, तो वो सिचुएशन और भी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी मेरे लिए. कई लोग ऐसे हैं कि सब चीज़ें भी पॉजिटिव हो रही होंगी
0: लेकिन नहीं एक्सेप्ट कर पाते.
2: नहीं, उसमें उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव मिल जाएगा. एक बहुत डीप रूटेड संस्कार है, ये संस्कार बन गया है नेगेटिव ढूंढने का. अब ग्रेजुअली संस्कार बनाना है पॉजिटिव ढूंढने का
1: और मान्यता बना लेने. कुदरत में भी देखो तो देखो, सुबह की सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, उससे पहले घोर अंधियारी रात होती है. तो जीवन में भी ऐसा ही है, जब घोर अंधियारी रात आ जाए तब सोचो कि अभी सुबह का सूरज उगने वाला है. बस ये मान्यता बना लो तो भी पॉजिटिव होंगे.
0: डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, सचमुच आप वक्त निकाल कर आए. आज भी बात हुई कि बहुत लोगों का जो है वो कल्याण है, तो ये पॉजिटिविटी का जो एस्पेक्ट आज आपने हमें बताया, थैंक यू सो मच. अब देखने की बात ये है कि जिसे मैं अभी तक मान रही थी कि ये तो नेचुरल है, लोगों के बीच बैठकर बात करते थे और हर रोज़ ही कहीं ना कहीं वक्त निकाल रहे थे, फ़ोन पर बात कर रहे थे, लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे, कितने हार्मफुल हो रहे थे. क्या वो किसी भी तरह से यूज हो रहे हैं? और हमने सोचा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फर्क पड़ रहा था. ना सिर्फ उन लोगों तक वो एनर्जी पहुंच रही थी, मेरे अपना जो संस्कार है, मेरी अपनी हैबिट बनती जा रही थी इस तरह की थॉट्स क्रिएट करने की. क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कि थॉट्स मैं खुद क्रिएट करता हूँ या करती हूँ. तो फिर अगर मैं ये वेस्ट, खासकर आज जो हमने वेस्ट थॉट्स की बात की है, और साथ ही व्हाट इज पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स हैं क्या, क्यों हम पॉजिटिव थॉट्स नहीं क्रिएट कर पाते, सिचुएशन कोई भी हो हमें कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी मिल जाएगी. जैसे हम पॉजिटिव सिचुएशंस में नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं, वैसे ही हंस की तरह हम क्यों ना हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढें और उसी के साथ स्टिक करें, वो हम खुद क्रिएट करें, ये प्रयास करके देखें. क्योंकि ये हम पूरी जो श्रृंखला है उन स्किल्स को सीख रहे हैं, लाइफ स्किल्स का हिस्सा है इस तरह से अपने थॉट्स के साथ जीना. कोई बात मन में है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999 3445, 9999 3446, 9873 666 555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे और बात करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
2: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज के विशेष मेहमान डॉक्टर जीत सर हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और आप लंबे समय से हिंदी के प्रोफेसर है और अभी भी पढ़ाते बच्चों को, तो हिंदी एक हमारा जो है विषय है जिसके माध्यम से हम सभी लोग जो है बहुत ज्यादा अपना जो है अच्छा करियर बना सकते हैं। स्काई इज द लिमिट है। तो कहाँ कहाँ पर हम हिंदी सब्जेक्ट को लेकर मास्टरी करने के बाद कौन कौन सी जगह पर अपनी जगह बना सकते हैं, इस विषय को लेकर बातें करेंगे। तो डॉक्टर जीत सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। नमस्ते जीत सर, कैसे हैं आप?
3: मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ।
2: जी जी,
3: हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और राष्ट्रभाषा बात है हिंदी। दरअसल जब हम यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें या राज्यों की बात करें तो कक्षा 12 तक तो हम हिंदी पढ़ते ही हैं, कंपलसरी है उत्तर प्रदेश में।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: हो सकता है मैं चीज नया हूँ, लेकिन सबसे पहले यदि हम रोजगार की बात करें हिंदी में, तो जितने भी मैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करूंगा विशेषकर, और जितने भी हिंदी क्षेत्र के राज्य हैं, वहाँ इंटर कॉलेज में TGT और PGT अध्यापकों की बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं। यानी जो भी कॉलेज खुलता है, इंटरमीडिएट कॉलेज जो भी खुल रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी कॉलेज जो हो, उनमें इस पद की आवश्यकता पड़ती ही है। और यदि हम देखें राष्ट्रीय स्तर पर, तो केंद्रीय विद्यालय भी राष्ट्रीय स्तर पर है, वहाँ भी हिंदी की अध्यापकों की अति आवश्यकता रहती है। और वहाँ प्राइमरी में और TGT और PGT में भी अध्यापकों की भर्ती निकलती है, तो हम हिंदी के माध्यम से वहाँ भी हम रोजगार से जुड़ रहे हैं। अब बात आती है हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में भी हिंदी की पोस्ट रहती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनते हैं लोग हिंदी के। ट्रांसलेटर, यदि हम ट्रांसलेटर हो जाए तो उसकी वैकेंसी पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय सरकार भी खाली पड़ी रहती है।
2: अच्छा,
3: असल बच्चों को बहुत सारी जानकारी नहीं प्राप्त होती कि MA हिंदी करने के पश्चात आप 1 साल का या 2 साल का ट्रांसलेटर का एक प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग है, यदि हम उसको कर लेते हैं तो हम अनुवादक की पोस्ट आराम से प्राप्त कर सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: इसके अतिरिक्त भी सबसे बड़ा जो जॉब का क्षेत्र है वो पत्रकारिता है। और इससे भी अधिक कहना चाहिए फिल्मी दुनिया है।
2: अच्छा,
3: फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा जॉब हमारे हिंदी क्षेत्र के हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हिंदी भाषी लोग हैं या हीरोइन है, जिन्हें हम हीरोइन की भूमिका में देख रहे हैं, उन्होंने पैसा कमाने के लिए और रोजगार से जुड़ने के लिए हिंदी सीखी और हिंदी की पिक्चर्स जो फिल्म है उनमें उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई और अच्छा पैसा भी कमाया।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही।
3: हिंदी के क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर, और क्योंकि हम देखिए विषय कोई कमजोर नहीं होता।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: बहुत लोगों की ऐसी भ्रांति है कि हिंदी विषय ऐसे ही पढ़ लिया जाता है या ऐसे ही कर लिया जाता है तो हिंदी में रोजगार नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं, मैं ऐसा मानता नहीं, हिंदी में बहुत रोजगार है। बस हमें परखने की जरूरत है कि हम हिंदी के पढ़ने के बाद, हिंदी को सीखने के बाद किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं।
2: बिल्कुल,
3: एक हिंदी में एक व्याकरण, जो भाषा के क्षेत्र में व्याकरण आता है, यदि हम लोग व्याकरण को अच्छी तरह से समझ सकें, तो पत्रकारिता के माध्यम से और फिल्मी दुनिया की पटकथा हुई या और बहुत सारे चीजें हैं जो कविता लेखन है, मंच पर आजकल कविता खूब पढ़ी जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से लोग नाम रोशन कर रहे हैं। कुमार विश्वास का नाम पूरा
2: सबसे पहले आता है, जानता है
3: सबसे पहले आता है, और कई करोड़ रुपए का मतलब वो अर्निंग करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: उनका सिर्फ काम कविता पढ़ाने सुनाने का है, लेकिन वो मतलब ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा है उनका, बहुत अच्छी GST देते हैं वो बेचारे।
2: बिल्कुल,
3: तो
2: बिल्कुल।
3: इसका मतलब ये है कि हिंदी सब्जेक्ट कोई कमजोर तो है नहीं सर, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें उसे अलग तरीके से तैयार करने की आवश्यकता है। हमारी रामायण हो, महाभारत हो और गीता हो, ये सब हिंदी में ही तो लिखे हुए हैं, और हिंदी के पाठक बहुत हैं, हिंदी को पढ़ने वाले बहुत हैं, हिंदी को समझने वाले बहुत हैं, पर जब तक हमारे मन में ये धारणा बनी रहती है कि हिंदी विषय जो है बहुत कमजोर है, तब तक हमारे इस समाज में बड़ी विकृति और बहुत मतलब परेशानी है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: तो मेरा कहना यह है कि हिंदी विषय में रोजगार के अवसर बहुत हैं।
2: जी सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को, आज जो लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन सभी को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि वह हिंदी जो है सिर्फ एक भाषा पढ़ना या भाषा सीखना नहीं है, बल्कि हिंदी के साथ जुड़कर हम अपने जीवन बना सकते हैं, अपना पूरा करियर जो है अच्छा फ्रेम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग, जैसे अभी सर ने बहुत अच्छी बात बताया, कुमार विश्वास सर का नाम लिया, जिन्होंने हिंदी के माध्यम से पूरी दुनिया में एक नई चेतना, एक नई जागृति लाई, और खुद अच्छे जो है वक्ता के साथ साथ बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे लिटरेचर है, फिल्मी दुनिया की बात करें, महाभारत कहे, रामायण करे, जितने भी हमारे शास्त्र हुए हैं, भारत के हिंदू शास्त्र जिसको कह सकते हैं हम लोग, वो सारी चीजें हिंदी में है और उसको हिंदी में लोग सुनना पसंद भी करते हैं। इसके साथ में आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि फिल्मी दुनिया एक बहुत बड़ा जो है करियर का ऑप्शन है, जहां पर हिंदी के साथ जुड़ी हुई कई गतिविधियां आप कर सकते हैं, हिंदी सिखाने के से लेकर जो है हिंदी लिखने, और फिर उसके साथ में बहुत सारी चीजें होती है जो आप फिल्मी दुनिया में काम कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारी ट्रांसलेशन वाले जो काम है, वो भी आप अगर हिंदी सीख लेते हो तो बहुत सारे विदेशी भाषाओं को हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों के बीच में उसको रख भी सकते हो। इवन अपने भारत में भी जितनी सारी भाषाएं हैं, उन सभी का जो है ट्रांसलेशन अगर हिंदी में करना हो तो उसमें आप महारत हासिल कर लेंगे तो वो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को एक और बात पूछना चाहूंगा सर को। डॉक्टर जी, सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होते हुए, और मैं चाहूंगा कि आप कैसे हिंदी से जुड़े, आपकी शुरुआत कैसे ली, आपने अपनी थोड़ी यात्रा बताइए बचपन के दिनों में, कि आपको ऐसा लग रहा था कि बड़ा होकर मैं हिंदी का ही मास्टरी करूंगा, हिंदी बच्चों को पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ था या फिर कुछ आप और सोचे थे और कुछ और हुआ, ऐसे क्या है जी?
3: दरअसल सर, हमारी जो जीवन पृष्ठभूमि रही वो गांव की रही सर।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो गांव में हिंदी में भी तीन प्रकार की शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे तत्सम तद्भव शब्द है, इसे हम यदि हम इस तरीके से मान लेंगे, आर्य भाषा परिवार के शब्दों का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। तो जैसे तत्सम तद्भव और शब्द आए, तो तत्सम तद्भव और एक देश शब्द है, ये तीन भाषाओं के हम शब्दों को, ये हिंदी के ही है, मूल से हिंदी ही है, तो ये तीन वर्गों में यदि हम इन शब्दों को बांटते हैं तो उसको समझ लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ बोल रहे हैं। जैसे बताने के लिए हम ये कह सकते हैं कि गांव में वो ताकत है जो शहरों का रोज निर्माण करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन शहरों में कोई ताकत नहीं है जो गांव का निर्माण कर सके, अर्थात जो देश शब्द है उनमें अपनी ताकत है, उनमें अपनी गति है। मतलब तत्सम शब्दों का निर्माण देश शब्द करते हैं, ना कि तत्सम शब्द देशज का निर्माण करते हैं, लेकिन देशज शब्द ही तत्सम शब्दों का निर्माण करते हैं, लेकिन तत्सम शब्दों से देशज नहीं बनते।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को, और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर जीत सर है, जिनसे हम बातें कर रहे हैं हिंदी को लेकर, हिंदी से कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद। और बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर जीत सर से हो रही हैं, करियर ऑप्शन को लेकर, करियर को लेकर, और हिंदी विषय में करियर कैसे कर सकते हैं इस विषय पर सर बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं, जहां पर उन्होंने ये बताया कि हिंदी को लेकर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट, बहुत सारे जगह पे आप अपना करियर जो है हिंदी के वजह से अच्छा कर सकते हैं, और हिंदी की वजह से आपकी एक जो है छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक आपकी पहचान बन जाती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर जीत सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, करियर को लेकर आप क्या सोचते थे 10th या 12th में या डिग्री हासिल करने के बाद? थोड़ा सा अपना निजी अनुभव सुनाइए।
1: सर, मैं ये मेरा अनुभव ये था, और मैं बचपन से ही अध्यापक बनना चाहता था।
0: अच्छा, अध्यापक बनना चाहते थे।
1: हाँ, दरअसल क्या हुआ कि बचपन में जब मैं 5th क्लास का स्टूडेंट था, तो जनपदीय स्तर पर एक नाटक खेला गया, जिसमें अच्छा, गुरुजी मतलब एक शिष्य और गुरु का उसमें रोल था, तो मुझे वहाँ अध्यापक बनाया गया। और 5वीं क्लास के स्टूडेंट को एक दाढ़ी वाड़ी सब बना के मतलब अध्यापक की भूमिका को मतलब बनाया गया। तो मुझे उस दिन से ये समझ में आया कि मुझे एक अच्छा आदर्श अध्यापक बनना चाहिए, और मैं उसी तरीके से फिर तैयारी करता रहा। NCERT अजमेर से मैंने BEd किया, और उसके बाद फिर मैं केंद्रीय विद्यालय में 16 ईयर्स की नौकरी की मैंने, और फिर मेरा लोक सेवा आयोग इलाहाबाद से मेरा सिलेक्शन ये हायर एजुकेशन के लिए हो गया, और अब मुझे 17 साल यहाँ भी हो गए हैं।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया।
1: हाँ, तो मेरी जैसे मैं सर सेवानिवृत्ति पा चुका हूँ जून में, इसी जून में 23 को, तो 33 साल 3 महीने मेरी ये जॉब रहा। और हिंदी को मैं आत्मा के रूप से मानता हूँ।
0: क्या बात,
1: हिंदी में सांस है, जीवन है, आत्मा है। हिंदी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते सर। और यदि कोई भी अध्यापक इस बात को या कोई भी स्टूडेंट ये मान ले कि भाषा कोई कमजोर नहीं होती सर, भाषा सब अच्छी है, सब बढ़िया है, सब स्तरीय है, लेकिन जिस भाषा में हम स्वप्न देख सकते हैं, जिस भाषा में हम व्याख्या आराम से कर सकते हैं, जिस भाषा से हम दूसरों को अपने पास तक बुला सकते हैं, रख सकते हैं, तो वह भाषा हिंदी ही है, और हिंदी ही होनी चाहिए।
0: सही बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बताया सर। और मैं चाहूंगा कि आपका जो पढ़ाई वगैरह जहाँ पर हुआ, उनसे कुछ ऐसे अनुभव सुनाइए स्कूल कॉलेज के आपको याद हो।
1: जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इंटर कॉलेज का एक अनुभव मुझे याद आ रहा है सर।
0: जी,
1: एक हमारे अध्यापक थे, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, वो शनिवार के दिन निबंध लिखने के लिए दिया करते थे हमको।
0: क्या बात है।
1: शनिवार के दिन केवल कि अच्छा, आपको अच्छा, एक किताब से निबंध लिख के लाना है, और अगले सोमवार को या अगले ही शनिवार को मैं उसे निबंध को देखूंगा।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: 50-40 बच्चे थे हम लोग। अच्छा, उन अध्यापकों से मैं डरता बहुत था। हालांकि इंटरेस्ट था मेरा सब्जेक्ट। एक बात और भी थी कि उनके जो उनका जो पुत्र था वो भी मेरे क्लासमेट था।
0: अच्छा।
1: दोनों हम क्लासमेट थे सर। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि शनिवार के दिन उन्होंने कोई निबंध बताया और मुझे याद था, क्योंकि वो पिटाई भी अच्छी किया करते थे उस जमाने में। अब तो पिटाई खैर,
0: अब तो पिटाई का बताना भी मुश्किल है।
1: अब तो शब्दों का भी मामला खराब हो गया है।
0: बिल्कुल।
1: तो अगले शनिवार को जैसे ही अगला शनिवार आया, तो सर ने खड़े कर दिए, निबंध लिखा है। तो मुझे याद था, मैं निबंध की कॉपी लेके गया था, क्योंकि 8 दिन में ना बच्चा वैसे ही भूल जाता है। शनिवार को बताया, शनिवार समझ ही नहीं आया, तो शनिवार को कॉपी नहीं ले जाएगा। वहाँ हाथ खड़े हुए तो निबंध की कॉपी हमने दिखाई सर। उस दिन से और सब बच्चों की पिटाई बहुत हुई। सिर्फ मैं एक ऐसा बच्चा था, मैं एक बच्चा था कि जो बचा, बचा, उन्होंने निबंध लिखा था, वो वेरी गुड दिया गया। और उस दिन के बाद तक मतलब जब तक हमारी मुलाकात उनसे होती रही, मतलब कॉलेज से बाहर आ जाने के बाद भी, वो मुझे अच्छे स्टूडेंट्स के रूप में मानने ही लगे। और मैंने मूक चुनौती स्वीकार की कि जो सर के पुत्र हैं उनसे मेरे हिंदी में अधिक नंबर आए, आने चाहिए कायदे में, और वो ऐसा ही हुआ। मेरे नंबर 75 आए उस समय इंटर कॉलेज, इंटर में होता था इंटर में, और उनके 65 आए, उस बच्चे के 65 आए। तो वो अध्यापक मुझसे कहने लगे कि दावत चाहिए मुझे आपसे। जब मैं टीसी कटाने लगा, तो कहने लगे मुझे दावत चाहिए। जो वहाँ क्लर्क थे, डिपिक थे, वो बहुत सज्जन आदमी थे, बड़े समझदार थे। कहने लगे सर आपने इस बच्चे ने तो जीत सिंह ने तो कॉलेज का रिकॉर्ड तोड़ा है, दावत इससे उल्टी दीजिए, आप इससे दावत क्यों मांग रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो एकदम गुरु जी तैयार हो गए, कहने लगे हाँ ठीक है मुझे दावत देनी चाहिए और चलो चलते हैं वहां मार्केट में और दावत खिलाते हैं, क्योंकि मैं तो शिष्य रहा। तो ये बड़ा उस दिन से मेरा मुझे लगा कि यार हिंदी में बहुत कुछ किया जा सकता है, करना चाहिए। उस दिन से मेरे अंदर ललक लगी कि एक सब्जेक्ट हिंदी जो सब्जेक्ट है उसे बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है, बढ़िया।

0: आपके माँ बाप उस समय अनपढ़ रहे होंगे तो बोल रहे होंगे, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो शुद्ध बोलिए। अब जैसे बोलते हैं कि मेरे जेब में 10 का नोट शेष बचा है, है ना, तो या तो शेष है या बचा है, एक ही बोलेंगे ना हम लोग।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन ऐसे ही चल रहा है, है ना। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। हिंदी भाषा बड़ी संवेदनशील है सर, बहुत ही संवेदनशील है। हम जरा सी गलती करने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हालांकि हर भाषा संवेदनशील है, जैसे हम हिंदी में सुख और सुख, अब कोई कहे कि मात्राएं तो गलत चढ़ाई है, लेकिन अर्थ तो अलग हो गया ना सर। दिन और दीन कितना अंतर है, शिव और शव, धरती और आसमान का फर्क है सर। जरा सी गलती करने पर भी बहुत कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है सर।
1: सही बात है।
0: हालांकि इंग्लिश में भी ऐसे ही है, उर्दू में भी ऐसी भाषा है कि जरा सी भी हम यदि हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है। तो हम हमारे विद्यार्थियों से कहना ये है कि यदि हम ध्यान पूर्वक और गंभीरता से अपने विषय को लें तो इस विषय में भी हमारा जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो सकता है और हम देश के लिए एक राष्ट्र निर्माण का काम कर सकते हैं सर। अब मोदी जी ने सबको नमस्ते करने सिखा दिया, ये हमारी राष्ट्रभाषा का या हिंदी भाषा का ही तो कमाल है सर। दूसरे देशों के लोग भी यहाँ हिंदी बोलने की बात करते हैं, और हमारे साहित्यकारों ने भी ऐसे कुछ काम किए हैं कि जो हिंदी क्षेत्र के लोग थे उन्होंने हिंदी सीखी। मधुशाला जो पुस्तक है सर, मधुशाला पुस्तक की 50-60 पैरोडी है उसमें केवल, और उसको सीखने के लिए मतलब उसको पढ़ने के लिए अंग्रेजों ने, बहुत सारे अंग्रेज जो थे उन्होंने हिंदी सीखी सर, तब उस किताब को पढ़ा, उसका आनंद उस हिंदी में ही आएगा। अंग्रेजी में रूपांतरण करने पर, अनुवादित करने पर वो आनंद नहीं आ सकता, वो गंभीरता नहीं आ सकती उन शब्दों की। तो ये है सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर आपको, और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो रही होगी आज के आपकी भाषा को सुनकर, आपकी भावनाओं को सुनकर। तो एक और बात पूछना चाहूंगा कि कई बार हिंदी हमें मुश्किल क्यों लगती है, कभी कभी क्या कारण हो सकता है?
0: हमारे ये शिक्षक वर्ग के क्षेत्र से गड़बड़ है सर।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो अध्यापक का सबसे पहला काम है उस विषय में रुचि पैदा करना, बच्चों को बच्चों के मन में एक जागृति पैदा करना, एक ऐसी चीज डालना कि भाई हिंदी तो हमारे दिल की भाषा है। यदि हम ये बात कहने सिखाएं बच्चों से और बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाए तो कहीं गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे अब तक हमें भी बचपन में सर मात्राओं को जब पढ़ाया तो मात्रा जैसे कहते हैं चंद्र बिंदु लगा दो, छोटी मात्रा चढ़ा दो, बड़ी मात्रा चढ़ा दीजिए, ये तीनों चीजें अशुद्ध है सर। हिंदी में मात्राएं नहीं है, हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियां हैं। किसी स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं तो मात्राएं कितनी होती है तो बताते हैं 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है। ये स्वर बता रहे हैं वो। पढ़ाने का यदि मेथड हम लोगों का बढ़िया हो जाए तो उसमें बच्चों को भी रुचि आती है सर, इसलिए भी बच्चे इससे भागते हैं। अब जैसे वर्णमाला सिखानी है, क्योंकि हमारे यहाँ 52-55 अक्षर है, है ना सर, इंग्लिश में 26 है तो वो कम है तो जल्दी याद हो जाते हैं बच्चों को। अब 52 अक्षर याद नहीं होते तो इस कारण से बच्चा भागता है, कारण उसको पढ़ाने का है गड़बड़। जैसे हम उसको यह कहें कि भाई तुम्हें 52 अक्षर याद नहीं करने, आपको तो कचट तप याद करना है सब, कचट तप, तो सीधा अर्थ इसका हो जाएगा कैवर्ग कैवर्ग कैवर्ग कैवर्ग कैवर्ग, 25 हो गए, यर एलेवे ध्वनि वो हो गई, है हो गया 25 और 8 33, ये हो गई। अब यदि हम स्वर पढ़ाते हैं तो स्वर क्या करके पढ़ाते हैं, जबकि बताना चाहिए कि स्वर 11 ही होते हैं। भोलानाथ तिवारी की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि स्वर 11 हैं, 12 और 13 नहीं है। अब 5 छोटे 5 लघु और 5 गुरु हैं सर, और ऋषि जो है, ऋषि जिसे बनता है वो संस्कृत से आया हुआ है। तो पढ़ाने का मेथड, पढ़ाने का जो ढंग यदि सरलीकरण है हम लोगों का और रुचिकर है तो बच्चे उस भाषा से, उस विषय से दूर नहीं भागते, बल्कि उस विषय को आत्मसात करते हैं और उस विषय में वो पारंगत भी हो जाते हैं सर।
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर जीत सर। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को, और हमारे साथ आज के विशेष मेहमान

बाद डॉक्टर जीत सर हैं जिनसे हिंदी के बारे में बातें हो रही है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और डॉक्टर अजीत सर हमारे साथ हैं, हिंदी के बारे में बड़ी ही गंभीर बातें और बहुत ही अच्छी बातें वो बता रहे हैं। और हिंदी को सीखने का अब आसान तरीका क्या हो सकता है, किस तरह से हम हिंदी के प्रति सजाग हो, आप इसके लिए डॉक्टर अजीत सर हमारे विद्यार्थी मित्रों को, बच्चों को क्या बताना चाहेंगे?
1: जी सर,
0: जी जी,
1: मैं यही बताना चाहूंगा कि हिंदी से जो व्याकरण है ना सर, व्याकरण को ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाना चाहिए और व्याकरण को आत्मसात करना चाहिए। हिंदी बड़ी संवेदनशील भी है और बहुत ही वैज्ञानिक है सर।
0: अच्छा।
1: देवनागरी लिपि की यदि हम बात करें तो वैज्ञानिक है। ए के बाद आ और क के बाद ख क्यों आता है, ये सब वैज्ञानिक रीति है सर, वैज्ञानिक स्थिति है। साइंस ही विज्ञान नहीं है, बल्कि हमारी हिंदी वर्णमाला जिसे हम कह रहे हैं वो भी वैज्ञानिक रीति है और वैज्ञानिकता के स्तर पर पूरी खरी उतरती है सर। जैसे अल्पप्राण महाप्राण ध्वनियां हैं, अल्पप्राण महाप्राण ध्वनि, अब सीधा सा अर्थ है, अल्पप्राण का मतलब है अल्प माने आधा, प्राण माने हवा, हवा। तो जिस जिन वर्णों में आधी हवा उच्चारित हो रही है वो अल्पप्राण हो गए, जिनमें उससे अधिक हो रही है वो महाप्राण ध्वनि हो गई। अब जैसे को कै बोलते हैं हम एक तो उच्चारण भी गलती करते हैं, कै बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, इस वर्ण को गलत बोलते हैं, वर्णमाला सारी ही मतलब उसका उच्चारण गलत तरीके से करते हैं, जबकि बोला चाहिए हमने को। अब ये अल्पप्राण है, अब मैं अंग्रेजी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अल्पप्राण वो ध्वनि है जिनमें स्पेलिंग में एच नहीं आता सर। जैसे क को हम कै लिखते हैं, के लिखते हैं, और ख के एच। अब ये महाप्राण हो गया क्योंकि इसमें ध्वनि अधिक निकल रही है, को खो गो, फिर अल्पप्राण आ गया जी बनेगा, और जी एच घो, इसका मतलब ये महाप्राण है, यानी पहला और तीसरा अल्पप्राण, बाकी के सब महाप्राण ध्वनि है सर। तो एक समझाने का जो तरीका है वो यदि अच्छा हो तो बच्चे अपने आप उस तरह से अच्छा सीख पाते हैं और एक अच्छे मतलब एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं सर, विश्व स्तर पर भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूंगा कि एक करियर की बात अगर हम लोग करें, जैसे कि शुरुआत में आपने बताया बहुत सारी चीजें बच्चों में, जैसे कि हम लोग हिंदी को लेकर सिर्फ अध्यापक या ट्रांसलेटर छोड़ के सरकारी नौकरियां कौन कौन सी मिल सकती हैं, सरकारी दफ्तर में कौन कौन सी जगह हम हिंदी के वजह से शिरकत कर सकते हैं, वो बताइए सर।
1: हाँ, सरकारी सर शिक्षक जो है, चाहे वो प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक, शिक्षकों की भर्तियां और शिक्षक इस भारतवर्ष में बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा रिक्तियां भी निकलती हैं। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र शिक्षकों के क्षेत्र में है, यदि हम कार्यालय को छोड़ दें, इन बातों को छोड़ दें, तो शिक्षक की नौकरियां जो है बहुत अधिक है और वो निकलती भी रहती है। और उसमें जब भी आप आंकड़ा उठा के देखें तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि शिक्षकों की जो भर्ती है वो पूरी नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं क्षेत्रों में कमी है, वो अध्यापक वर्ग ही है जो पूर्ति कर सकता है सर। और आजकल तो सी टेट बीएड वगैरह वगैरह करके तभी तो योग्यता पूरी करके तभी आदमी, मतलब एक सरकार ने भी थोड़ा सा बाधा सी डाल रखी है, ताकि पहले क्या था, पहले बीएड की और नौकरी लग जाया करती थी, अब उसमें सी टेट और यूपी टेट और सी टेट लगा रखे हैं सर। तो ये भी एक थोड़ी सी जनसंख्या को लेकर समझिए, या और नौकरियां कम होती जा रही हैं और जनसंख्या ज्यादा है, पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा है, तो इसमें भी थोड़ा सा अंतराल आ रहा है सर।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि और कहाँ कहाँ हम लोग जो हैं इन सारी चीजों को देखते हुए कैसे हम लोग सरकारी ऑफिस में भी अच्छा जो है काम कर सकते हैं, ये आपने बताया है। और जाते जाते सर मैं चाहूंगा कि आपको विद्यार्थी मित्र सुन रहे हैं उन सभी को क्या बताना चाहेंगे, एक संदेश के रूप में, एक मैसेज के रूप में या एक मोटिवेशन के रूप में।
1: जी जी, मैं संदेश के विषय में ये बतानी चाहूंगा अपने सारे विद्यार्थियों को कि विषय कोई कमजोर नहीं होता, और ये हमारे मन में ये आत्मग्लानी नहीं होती होनी चाहिए कि हम हिंदी भाषा के हिंदी क्षेत्र के लोग हैं तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी बोलने वालों से हम कहीं पीछे नहीं है, जिन शब्दों की हिंदी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी अंग्रेजी बनाई नहीं जा सकती सर। तो लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम शुरू से ही उसके लिए प्रेरित रहें और अच्छी तरह से मतलब बोल सकें, पढ़ सकें, पढ़ा सकें, अच्छी तरह से उनका अध्ययन किया जाए, तो तभी हम अच्छे विद्यार्थी के रूप में भी होंगे। शोध कार्य भी हम उस तरीके से इस तरीके करेंगे तो हम पूरे विश्व में नाम होगा हमारा। शोध कार्य से बच्चों को जुड़ना चाहिए सर। छोटे छोटे शोध कार्य भी करेंगे हम, चाहे किसी शब्द का ही शोध कार्य करें, चाहे हम किसी विषय पर शोध कार्य करें, क्षेत्र का शोध कार्य करें, तो यदि हम इन चीजों से जुड़े रहेंगे तो बच्चे भी इससे प्रेरित होंगे और आने वाले समय बच्चों के लिए भी उज्जवल भविष्य का काम करेगा।
0: डॉक्टर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताया और विद्यार्थी मित्रों को आपने अपने अनुभव के साथ साथ हिंदी में कैसे हम अपना करियर कर सकते हैं इस विषय को बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल शब्दों में अपने अनुभव के साथ साझा किया, हमें बड़ा अच्छा लगा और बहुत बहुत साधुवाद आपको। और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह रेडियो से बने रहे हमारे साथ में। और चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और मैं चाहूंगा कि सर ने जो जो बातें आपको बताई है उस पर गौर कीजिए और हिंदी के साथ प्यार से उसको सीखे, उसको पढ़े, उसके साथ आप जिए और अपने करियर को अच्छा बनाए। इसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद सर।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
3: अश्विनी ये ना, ये ना।
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
5: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल। अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
6: पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो। प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन।
7: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आज मैं आपके सामने मौन इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुई हूं। मौन यानी चुप्पी, शांत रहना। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। हमारा जीवन शोर से भरा हुआ है, बाहरी शोर जैसे गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें, और आंतरिक शोर जैसे हमारे विचारों की हलचल। इन सब के बीच मौन एक ऐसी जगह है जब हम खुद को पा सकते हैं, जहां हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। मौन सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, यह एक शक्ति है। यह हमें आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। मौन हमें धैर्य सिखाता है, हमें सोचने की क्षमता देता है और हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मौन के महत्व को सदियों पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने ध्यान और योग के माध्यम से मौन की शक्ति को अनुभव किया। आज के तनावपूर्ण जीवन में मौन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। यह हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है। मौन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संवाद। जब हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं बिना बीच में बोले तो हम उसे सम्मान देते हैं। यह एक प्रकार का मौन संवाद है जहां हम शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कह पाते हैं। अक्सर हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बातें बिना शब्दों के समझी जाती है। एक माँ का अपनी संतान को देखना, एक मित्र का दूसरे मित्र को सहानुभूति से देखना, यह मौन की शक्ति है जो शब्दों से परे है। मौन का दुरुपयोग भी हो सकता है। जब हम अन्याय के खिलाफ चुप रहते हैं या जब हम अपनी बात नहीं रखते तो मौन कमजोरी का प्रतीक बन जाता है। हमें यह समझना होगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। सही समय पर सही बात कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही समय पर मौन रहना। मौन और वाणी के बीच संतुलन बनाना एक कला है और ये कला हमें अपने जीवन में सफलता और शांति दोनों प्रदान कर सकती है। मौन हमें प्रकृति से भी जोड़ता है। जब हम प्रकृति के बीच शांत बैठते हैं तो हम उसकी सुंदरता और शांति महसूस करते हैं। पक्षियों का चहचहाना, हवा की सरसराहट और नदियों का कलकल, यह सब मौन में ही सुनाई देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मौन एक अनमोल उपहार है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और इसकी शक्ति को महसूस करें। यह आपको शांति, स्थिरता और आत्मज्ञान प्रदान करेगा। हमें मौन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और समृद्ध बना सके। मौन में छिपी शक्ति को पहचाने और अपने जीवन को एक नई दिशा दे। धन्यवाद।
6: रेडियो श्रोतागण, अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
8: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा? वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी? पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी? स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांति.
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
3: थैंक यू.
2: बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन करके, सोच के कि आई एम अ सोल, और कुछ देर के लिए इतना एक मैं बता नहीं सकता, आंखों में एकदम शांति सी फील हुई, जैसे कि नॉर्मल आदमी अच्छी नींद सो के उठता है ना, 7-8 घंटे, वैसे एक 2 मिनट में लगा. एंड आई द सोल वॉज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग.
3: नाउ जस्ट लुक एट दिस एक्सपीरियंस, कि बहुत पीसफुल लगा, बहुत अच्छा लगा, जैसे हम नींद करके उठे हैं. बॉडी और माइंड को बहुत अच्छी एनर्जी मिली थी, क्वालिटी ऑफ थॉट बहुत ब्यूटिफुल थी. एवरी थॉट वी क्रिएट, ये आज हमें मंत्र की तरह पक्का करना है. हर थॉट जो हम क्रिएट करते हैं उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है. एक रैंडम थॉट है ना, सपोज मैं एक थॉट क्रिएट करूं, क्या बेकार जगह है, ये एक थॉट है, ये मुझे ऐसा लगेगा कि ये तो थॉट है ना, क्या हुआ, है ही बेकार जगह, तो आई ऑब्वियसली आई विल क्रिएट अ थॉट कि बेकार जगह है. तो मैंने एक थॉट क्रिएट कर दी, क्या बेकार जगह है. ये एक थॉट का असर कहाँ
2: क्यों पड़ेगा, थॉट आई चली गई.
3: थॉट आई चली गई, अगर थॉट आके चली जाती तो प्रॉब्लम ही नहीं थी.
2: क्यों
3: थॉट आई चली गई, नहीं ना, थॉट आई अपना प्रभाव छोड़ गई.
2: किसके ऊपर?
3: किस किस के ऊपर छोड़ गई? जैसी थॉट वैसी फीलिंग. साइकिल था क्लियर, थॉट से फीलिंग. तो जैसे यहाँ पर मैंने एक थॉट क्रिएट की, आई विल फील लाइक दैट, दैट क्वालिटी. आई विल फील, इफ आई क्रिएट अ थॉट क्या बेकार जगह है, तो आई डोंट फील नाइस. अब अगर मैंने थॉट क्रिएट की, व्हाट अ ब्यूटिफुल प्लेस, आई फील नाइस.
2: हाँ, बट ये तो एक्चुअल भी तो होता ही है ना, कभी बहुत हार्श सन है, कितना तेज धूप है, अच्छी नहीं लग रही. सुबह सन, अरे व्हाट अ ब्यूटिफुल सनराइज.
3: थॉट
2: आती है ना, तो उसको कैसे रोक लेंगे?
3: थॉट आती नहीं है,
2: वो तो दिख रहा है, एक सनराइज को
3: दिखने के बाद थॉट,
2: आंख में चुभ रही है.
3: दिखने के बाद थॉट कौन क्रिएट कर रहा है? सनलाइट है, चुभ रही है, आई हैव टू टेक केयर. और एक है, क्या बेकार लाइट है, सीधा मुंह पर आ रही है. क्वालिटी ऑफ थॉट. हम ये नहीं कह रहे कि सनलाइट है, मुंह पे चुभ रही है, हम कह रहे सो ब्यूटिफुल. नो, आई हैव टू टेक केयर. ओके, गेट अप, टेक केयर. लेकिन वहां खड़े होकर उसके बारे में इरिटेटिंग थॉट्स क्रिएट करना, जैसी थॉट वैसी फीलिंग. तो यहां की क्रिएट की हुई थॉट सबसे पहला प्रभाव यहां डालेगी. आई विल फील दैट वे, फर्स्ट असर. अब हमें लगता है कि ये इतनी छोटी सी थॉट थी, तो एक थॉट के बाद एक और थॉट, एक और थॉट, एक और थॉट. लेकिन ड्यूरिंग दिस होल सीरीज ऑफ थॉट्स, जैसी क्वालिटी ऑफ थॉट वैसी फीलिंग.
2: ओके,
3: तो फर्स्ट असर. सेकेंड, एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी. एवरी थॉट, नॉट सम थॉट्स, एवरी थॉट. हर थॉट, हर सोच मेरे शरीर पर प्रभाव डालते हैं. तो जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की, क्या बेकार जगह है, गई एनर्जी, यहां भी गई. सेकेंड असर. अब मैंने थॉट क्रिएट की, क्या बेकार जगह है, एनर्जी क्रिएट हुई, यहां नहीं ब्लॉक होती, रेडिएट होके वाइब्रेट हो जाती है, यहां आप तक पहुंचेगी, ये आपके मन पर असर डालेगी. और जो आपका मन क्रिएट करेगा वो आपके शरीर पर भी असर डालेगी. और ये थॉट इस यूनिवर्स में, यहां प्रकृति में चली गई. ये एक थॉट, कितनी पावर है. मुझे आत्मा के पास
2: मिलियंस ऑफ लोग और मिलियंस ऑफ थॉट्स और मिलियंस ऑफ
3: मिलियंस ऑफ सोल्स, मिलियंस ऑफ थॉट्स पुट टुगेदर क्रिएट द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड. जो अंदर चलेगा एक के, वो रेडिएट होके वाइब्रेट होता है और लोग भी उसको कैच कर लेते हैं, वो भी वैसा ही सोचने लग जाते हैं. बहुत जल्दी 10 लोग वैसा सोच रहे होते हैं.
2: नहीं, वैसे जाने अनजाने बोलने भी लग जाते हैं, एंडोर्स भी करते हैं, कितनी गंदी धूप है यार, ऐसे चुपती है. दूसरा भी हाँ हाँ हाँ, धूप इतनी गंदी है यहाँ की, वापरी यहाँ की हेट तो बर्दाश्त नहीं. तीसरा भी, चौथा भी.
3: 5 लोग जब सेम बोलना शुरू करते हैं बात, तो वो हमें दिखता है.
2: अच्छा.
3: लेकिन 5 लोग जब सेम चीज सोचना शुरू करते हैं, वो इमिजिएटली नहीं दिखता है. पीपल आर नॉट कैचिंग ईच अदर्स वर्ड्स, दे आर फर्स्ट कैचिंग ईच अदर्स थॉट्स.
2: ओके, दैट इज व्हाई वी फील नाइस इन टेंपल्स.
3: यस.
2: अच्छा अच्छा.
3: ऑफ कोर्स वी विल फील नाइस इन टेंपल्स, क्योंकि कलेक्टिवली
2: ज्वाइंट टूगेदर कम्बाइंड
3: वहां की कॉन्शियसनेस बन जाती है. वो
2: कलेक्टिव कॉन्शियसनेस,
3: दिस इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ना. अब ये कैसे हो रहा है वर्क? एक ने थॉट क्रिएट किया, उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, दूसरे ने भी सिमिलर किया, 2 का प्रभाव तीसरे पर पड़ेगा, 5 लोगों पर पड़ेगा, 5 लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनेगी. अब उस कॉन्शियसनेस में जो आएगा, जैसे आपने कहा मंदिर, अब उस कॉन्शियसनेस में जो आएगा, उस एनर्जी फील्ड में जो आएगा, उसके ऊपर उस स्थान की एनर्जी फील्ड का प्रभाव पड़ेगा. एंड वेरी सून उस मंदिर में जो जाएगा, वो कहेगा यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है. वो शांति का परफ्यूम वहां फैला कैसे? जिसने बनाया, उसने तो मंदिर बनाया ना. मंदिर बनाया मतलब आर्किटेक्चर बनाया. आर्किटेक्चर बनाकर वहां पर एक मूर्ति स्थापन की. शांति स्थापित कैसे हुई वहां पर?
2: लोगों से.
3: आर्किटेक्चर में शांति नहीं है.
2: फिर हम घर को ऐसा नहीं बना सकते अपने?
3: घर को ऐसा ही बना सकते हैं.
2: अच्छा.
3: हर घर के वाइब्रेशन अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग ऑन उस घर में रहने वाले लोगों की सोच कैसी है. हर ऑफिस के वाइब्रेशन अलग अलग होते हैं, हर मंदिर के भी वाइब्रेशन अलग अलग होते हैं, हर स्थान के वाइब्रेशन अलग है, डिपेंडिंग ऑन द पीपल स्टेइंग देयर, पीपल वर्किंग देयर.
2: किसी मतलब रिलीजियस प्लेस पे लोग बोलते हैं आज कितना चढ़ावा आया, यही गिनते रहते हैं पैसे के हिसाब से. और किसी में कितने लोग आए, कितने लोग दर्शन किए, कितनों ने प्रसाद खाया, कितनी मतलब
3: प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन है ना,
2: ऑफ अ फ्यू पीपल,
3: ऑफ अ फ्यू पीपल. लेकिन फ्यू पीपल बिकम इंस्ट्रूमेंटल टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द वाइब्रेशन ऑफ दैट प्लेस. सपोज आपके घर का जो वाइब्रेशन है, वो किसके द्वारा बना? उस घर में रहने वाले सब लोगों के से बना. ठीक है. अब आपके घर में 6 फैमिली मेंबर हो सकते हैं, साथ में 3-4 स्टाफ भी हैं. दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द वाइब्रेशन ऑफ द हाउस, राइट? क्योंकि दे आर लिविंग देयर. तो 10 लोग उस घर में रह रहे हैं, 10 लोगों की सोच, हर थॉट उस घर में वाइब्रेट हो रही है सारा दिन.
2: सिस्टर, मैं आपको रोकूंगा. मुझे इतनी ज्यादा बातों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपकी सिंपल सिंपल लैंग्वेज से, कि जब हमारे घर में हवन हो रहा था, तो हमारे यहाँ हवन है, मुझे मीनिंग नहीं मालूम है, फिर भी हम लोग करते हैं, भाई शुद्धि हो जाती है और वाइब्रेशन घर के अच्छे हो जाते हैं. तो आई बिलीव इन दैट, कि और मैं अपनी नेगेटिविटी भी उस अग्नि में डाल देता हूँ. तो पंडित बोल रहा था कि लास्ट में रुक गया, मैंने बोला चलिए खत्म करिए. तो नहीं, स्टाफ को भी बुलाइए. पूरे घर के लोगों को बुलाया, स्टाफ को बुलाया, बाहर से ड्राइवर्स को बुलवाया, गेट के बाहर से ढूंढ के बोले सब लोग आइए. एवरी तो मतलब ये आपका पॉइंट यहाँ अब समझ में आ रहा है.
3: इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ना, क्योंकि वो आत्माएं उस घर में रहती है ना.
2: सबको बुलवाया और सबको बोला कि एक एक आहुति आखिरी में सब डालो, मतलब पूरों को इक्वल किया, मालिक को भी सर्वेंट को भी, एक ही जगह पे एक ही स्थान पे, कोई वहाँ उपचार नहीं, बड़ा नहीं, सबने वही किया जो मैंने किया अपने
3: घर की वाइब्रेशन में कोई मालिक और नौकर नहीं होता. नहीं, है
2: उस आदमी ने
3: एनर्जीज जो उस घर में रहती हैं, 10 आत्माएं उस घर में रहती हैं, वो रोल कोई भी प्ले कर रही है. अब उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग कि हम 10 लोग जो आहुति डाल रहे हैं, उससे इस घर की एनर्जी बनती है. हम कौन सी आहुति सारा दिन डालते हैं इस घर के अंदर? हमारी हर थॉट, हमारी हर थॉट जो क्रिएट होगी इस घर में चली जाएगी, फिर क्रिएट होगी इस घर में. जस्ट इमेजिन द एनर्जी फील्ड ऑफ द हाउस. अब अगर आप अपने स्टाफ को डांटेंगे तो देखो नुकसान किसको होगा?
2: पूरे घर को होगा, और सबसे पहले जो छोटे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको होगा.
3: कैसे कैसे नुकसान होगा? आपने गुस्से की एनर्जी क्रिएट की क्योंकि डांट दिया किसी को, तो आपकी वाइब्रेशन रेडिएट हो गई घर के अंदर पहले क्रोध की. ओके, जब हम गुस्सा करते हैं तो क्रोध की अग्नि कहा जाता है, वो वाइब्रेशन घर में पहुंच गई. फिर जिसको डांट मिली वो डरा, सहमा, उदास हुआ, नाराज हुआ, जो भी हुआ, उसकी वाइब्रेशन
2: नहीं बोल सकते तो अंदर ही अंदर सप्रेस तो
3: हुआ ना. हाँ, नाराज हुआ,
2: और रोटी भी ऐसे करके
3: वो तो किया है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन पूरे घर में फैली. फिर उसने दो लोगों से बात की, मन तो हल्का करेगा. उन दो लोगों ने भी कोई थॉट क्रिएट की. उस दो में से एक ने कहा पिछली बार मेरे को भी डांटा था. वैसे बहुत अच्छे हैं लेकिन डांट देते हैं जोर से. उसने भी एक आहुति डाली. ये आहुति ये डल रही है ना सारे दिन. फिर सामने वाले ने कहा क्या करे, लेकिन काम तो यही करना पड़ता है. उसने मजबूरी की आहुति डाली. ये सारी जब आहुतियां डल जाती हैं तो वो घर का वाइब्रेशन बनता है. तो हमारी एक डांट का रेपरकशन हमें पता होना चाहिए. हम जो इतना इजीली कह देते हैं ये नेचुरल था, ये नॉर्मल था, ये गुस्सा करना था, उसने गलती कर दी थी, उसका रेपरकशन क्या है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है हमारी लाइफ के अंदर? आपने वो थॉट क्रिएट की, वो बोला, आपके शरीर पर उसका असर पड़ा, घर में वातावरण में गया, किसी और ने वो डांट खाई, उसके मन पर असर पड़ा, उसके शरीर पर असर पड़ा, घर में वातावरण में फैला. फिर उस वातावरण में जो लोग रहते हैं उनके मन ने उस एनर्जी को कंज्यूम किया, उनके शरीर पर भी असर पड़ा. अब ये सारा आपके घर की एनर्जी फील्ड है. अब मैं आपके घर आई, विच मीन्स एनी पर्सन हु विल वॉक इन टू दिस एनर्जी फील्ड नाउ, ठीक है, इफ आई डोंट टेक केयर, तो बहुत जल्दी ये सारे वाइब्रेशन का असर मेरे ऊपर पड़ जाएगा और मेरी थॉट्स में भी वैसी वाली एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी. इसीलिए हम कौन से स्थान पर जाते हैं, कौन सी एनर्जी फील्ड में जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एनर्जी फील्ड फिर वो जगह की नहीं, थोड़ी देर के बाद वो एनर्जी फील्ड हमारी एनर्जी का हिस्सा बन जाती है. कितना इम्पोर्टेंट है.
2: हमारे घर एक आदमी आया था, वो एक कुछ एक अजीब से मशीन लेके आया था, बोला जर्मनी से लेके आया है. तो मशीन ऐसे ऐसे ऐसे
3: वो एनर्जी फील्ड के हिसाब से ऐसे जाएगी
2: जितनी अच्छी. तो उस वो बता रहा था कि मैं आपके घर की देखता हूँ. तो मैंने ठीक है देखो. तो एक जगह इतनी ज्यादा खुल रही थी, कहीं कम खुल रही, कहीं ज्यादा. तो मैंने बोला आप घर की एनर्जी देख रहे हैं, आप मेरी देख सकते हो क्या?
3: हाँ.
2: तो मैंने क्या किया, वो आपने जो सिखाया था ना आई एम अ सोल वाला टू कनेक्टिंग, तो मैंने क्या किया बैठ गया, मैंने गिव यू 10 सेकंड्स. तो मैं 10 सेकंड्स में आग बंद करके ऐसा सीधा यहाँ ध्यान करके आई एम अ सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम पवित्र, और मैं जो जो सोल के सब एज एन एक्टर जो करना होता है मैंने पूरा रिहर्स करके मतलब अभी देखो. तो उसने इतनी अच्छी एनर्जी फील्ड दिखाया. फिर मैंने एक बहुत वर्स्ट सीन को रिहर्स किया. तो फिर बोला अब देखो. तो उल्टा बताया. तो ही वो शॉक. तो आपने क्या किया दोनों बार? मैंने बोला मैं फिर से कर सकता हूँ. तो बोला फिर से करो.
3: राइट.
2: ही डिड नॉट बिलीव मी. तो फिर वापस मैं सोल पे गया. फिर वो बोला आप ये कैसे कर रहे हो? मैं बोला बताऊंगा आपको.
3: इस अनुभव को पकड़ के रखना है जीवन में. कितनी जल्दी एनर्जी फील्ड में फर्क आ रहा था?
2: 1 सेकंड में. It
3: doesn't, था. एक सेकंड. अब आपने थोड़ी देर पहले कहा वो तो 1 सेकंड की थॉट है सिर्फ.
2: हाँ.
3: 1 सेकंड में ही तो फर्क दिखाई दे रहा है.
2: और मशीन देख सकती है जड़.
3: मशीन क्या होती है?
2: मशीन देख सकती तो इंसान तो कितना फास्टर सुपीरियर
3: है. फास्ट कंज्यूम करेगा उसको. ये जो मशीन होती है ये पॉजिटिव एनर्जी में ऐसे रहती है, पोल्स उसके वैसे बने, और जहां उसको सामने नेगेटिव एनर्जी मिलेगी वो रिपेल हो जाएगी. एक थोड़े दिन पहले वी सॉ इन एन एक्सपेरिमेंट कि वही मशीन सिमिलर जो आप ये मशीन कह रहे हैं ना, सिमिलर मशीन होगी जो एनर्जी फील्ड को सेंस करती है बेसिकली. तो ऑडियंस में से किसी को बुलाया गया और उनको कहा आप खड़े रहें ऐसे सामने, और उनकी एनर्जी को चेक किया, सारे जो बॉडी की एनर्जी को चेक करते हैं वो, और ऑरा को चेक करते हैं, तो उस व्यक्ति की एनर्जी बहुत अच्छी थी, तो पूरा पॉजिटिव आ रहा था और उसका ऑरा भी 10 फीट का आ रहा था, विच इज अ वेरी गुड ऑरा, वेरी गुड ऑरा। तो पूरा देखा 10 फीट तक वाइड ऑरा आया, इट वॉज वेरी गुड। फिर उन्होंने जो वो करा रहे थे डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने उनको कहा आप आंख बंद कीजिए और लास्ट आपने जब गुस्सा किया था उसको याद कीजिए।
2: ओके।
3: गुस्सा करना है अभी नहीं बोला,
2: उसको याद करिए,
3: उसको बोलो लास्ट। तो उसने कहा 10 दिन पहले आई थी कोई बहुत बड़ी बात, तो कोई बात नहीं आप जस्ट आंख बंद कीजिए और वो 10 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसको यहाँ पर जैसे हम याद करते हैं पास्ट की बातों को, उसको करिए। उस व्यक्ति ने एक आधा मिनट भी नहीं लगाया होगा, 1 मिनट उसने याद किया, उसने आंख खोली और कहा मैंने याद कर लिया। सेम मशीन, सेम स्टेज, एवरीथिंग इज सेम, दैट पर्सन इज सेम। वहां आए एवरीथिंग वॉज नेगेटिव, फुल बॉडी की एनर्जी फील्ड। तो जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे ही सर आपके सारे चक्रा ब्लॉक्ड हो गए, अब पहले सारे चक्रा ओपन्ड थे और ऑरा जो 10 फीट का था वो 3 फीट हो गया। सिर्फ वन एंड हाफ मिनट ऑफ रिमेम्बरिंग समथिंग ऑफ द पास्ट, ये है प्रभाव हमारी हर सोच का, यहां पर शरीर पर, हमारी ऑरा पर, प्रकृति पर। क्या हम ऐसे ही कुछ भी सोच सकते हैं? कितना अटेंशन रखने की जरूरत है?
2: हाँ, लेकिन अभी मेरा मन भी इतना चालाक है, अभी ये सोच रहा है इस वक्त कि फिर जब मैं गुस्सा करता होऊंगा तो किसी और ने किया होगा, उसका मुझ पे असर हुआ होगा, तो मुझे ट्रांसफर हुआ। अब देखो कैसे मन मेरे सोच रहा
3: है। कोई बात नहीं, ये पर ये हो सकता है।
2: अब मेरी थिंकिंग कहाँ जा रही है? देखो कि ब्लेम गेम खेलने के लिए इतनी आदत है,
3: लेकिन हमारे पास अब नॉलेज है, हमारे पास अब नॉलेज है कि हो सकता है कि किसी और ने क्रिएट किया अंदर, वहां से यहाँ आई, मतलब एनर्जी आई, लेकिन मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। एनर्जी के साथ हम 3 चीजें कर सकते हैं, कोई भी एनर्जी, या तो हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं, या हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन ईदर बी अब्सॉर्ब्ड
2: विदाउट योर नॉलेज, भी तो अब्सॉर्ब हो सकती है।
3: हाँ, हो रही है ना, विदाउट नॉलेज तो अब्सॉर्ब ही हो रही है, लेकिन एनर्जी के साथ कर तो 3 चीजें सकते हैं ना, या तो अब्सॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड।
2: क्या ये 3 जरा समझाएंगे
3: आप? चेक करिए, आप बताइए। एनर्जी कैन बी अब्सॉर्ब्ड, किसी ने कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की, हमने अब्सॉर्ब कर ली, अब वो हमारी नेगेटिविटी का हिस्सा।
2: बोल दिया बहुत बुरा, तो
3: बोल में तो बहुत ही विजिबल हो गया। थॉट्स में भी
2: किसी की एक नेगेटिव थॉट है और मैंने अब्सॉर्ब कर ली,
3: अगर हमने सिमिलर क्रिएट करनी शुरू कर दी तो हमने अब्सॉर्ब नहीं कर ली।
2: आपका गुस्सा कहाँ से शुरू हुई ना?
3: वी डोंट नो, वी कांट फाइंड द सोर्स।
2: मैंने शुरू किया, उसने पिंग पोंग जो पहला बॉल किसने मारा मालूम,
3: बट हमें नहीं मालूम।
2: तो मिडल ऑफ द गेम से शुरू करते हैं।
3: देखो, मैंने एक बॉल मारा, आपने वहां से बॉल मारना है। आप जब मार रहे हैं तो आपके पास 2 चॉइस हैं। एक, आप कहें इन्होंने इतना बेकार बॉल फेंका तो मैं कैसे अच्छा मारूं, ब्लेम गेम। लेकिन एक है, मेरा कैसे भी आया हो, यू विल प्ले वेल। करेंगे या नहीं करेंगे?
2: अगला रॉन्ग शॉट्स मार रहा है तो मैं क्यों मारूंगा, मैं तो जीतना है मुझे।
3: सी,
2: मैं तो अच्छा करेंट मारूंगा,
3: तो फिर सेम थिंग,
2: गेम टू विन द गेम।
3: गेम होती ही तो यही है, अगर सामने वाला गलत मारे हम भी गलत मारे तो फिर हु इज गोइंग टू विन द गेम?
2: आई वांट टू विन, लेट हिम मेक एनी मिस्टेक्स, मैं तो आई विल बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड।
3: सेम थिंग, लेट हिम सेंड एनी एनर्जी, आई विल प्ले वेल।
2: तो कभी थॉट आए तो या तो मेरी और मेरे से ओरिजिन मैं हूँ या बाहर से आया,
3: हमें नहीं मालूम।
2: चलो, वी डोंट लेकिन आई
3: क्रिएट हुई
2: नहीं। हाँ, क्रिएट हुई नहीं करना तो क्या करना?
3: अब्सॉर्ब नहीं करना मतलब इमिजिएटली उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर देना। सपोज आपको मेरे बारे में अभी एक नेगेटिव थॉट आती है, ठीक है, या मेरे से रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट आती है तो वो आपकी तरफ से ओरिजिन हो सकता है या मेरे यहाँ चल रही है इसलिए वहां जा रही है. ओके, तीन ऑप्शन. अब्सॉर्ब, मतलब खुद भी नाराज या उदास हो जाए. अब्सॉर्ब. सेकेंड,
2: सोच से चले जाए.
3: हाँ, तो वो तो अब्सॉर्ब हो गया, ब्लॉटिंग पेपर के अंदर वो सोख हो गया. सेकेंड, रिफ्लेक्ट, आपने मेरे लिए भी नेगेटिव थॉट क्रिएट कर दिए.
2: ओके, रिफ्लेक्ट इन द सेम वे.
3: रिफ्लेक्ट तो वही है ना, लाइट ऐसे जाती है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही आती है ना वापस.
2: सेम
3: एनर्जी. रिफ्लेक्ट.
2: रिफ्लेक्ट कैन बी ऑल्सो, कैन आई रिफ्लेक्ट इन अ गुड वे?
3: दैट्स ट्रांसफॉर्म.
2: ओके,
3: अगर आपने वैसे के वैसे भेज दी देन दैट्स रिफ्लेक्ट.
2: मैंने थप्पड़ मारा तो भी मारा.
3: हाँ, रिफ्लेक्ट. मैंने थप्पड़ मारा, आप अंदर सिर्फ उदास हो गए, रोने लगे, सप्रेस कर लिया. अब्सॉर्ब. मैंने थप्पड़ मारा, आपने भी वापस मारा. रिफ्लेक्ट. मैंने थप्पड़ मारा, आपने आशीर्वाद दिया. ट्रांसफॉर्म.
2: सो सिंपल.
3: सो सिंपल है. सिंपल है, मतलब वहां से जो एनर्जी आई या तो हमने अब्सॉर्ब की, रिफ्लेक्ट की, ट्रांसफॉर्म की. तो अब जो आपका माइंड गेम खेल रहा था कि ये जो गुस्सा मैंने किया ये मैंने नहीं, कहीं और से आया, तो माइंड को कहो भले कहीं और से आया हो
2: लेकिन तेरा काम क्या है. यू द सोल हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म.
3: सिंपल है ना. तो उसको हम परमिशन नहीं देते हैं टू गो बैक टू एनीथिंग विच इज नॉट कंफर्टेबल. आई हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म. कई बार ऐसे फील होगा कि बैठे बैठे रैंडम थॉट्स किसी के लिए आ रही है नेगेटिव, हमें लग रहा है क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं, कहीं और से भी एनर्जी आती है. लेकिन हमारे पास पावर है कि हमें क्या क्रिएट करना है. तो अब हमें ये पता चल गया कि एक एक थॉट का प्रभाव जो आपने ये मशीन से अनुभव किया है, इससे एक चीज ये पक्की करनी है कि बहुत समय की सोच का प्रभाव नहीं, हर सोच का प्रभाव हो रहा है.
2: बहुत समय की सोच का भी कभी कभी एकदम ब्लास्ट होकर निकलता है.
3: हाँ, वो तो है, लेकिन हर सोच से कैसे एनर्जी फील्ड इमिजिएटली चेंज हो रही है, ये तो एक्सपेरिमेंट किया ना. पॉजिटिव सोचा, एनर्जी फील्ड दिखी. नेक्स्ट मिनट बैठे, नेगेटिव सोचा, फिर एनर्जी फील्ड दिखी. नेक्स्ट मिनट फिर बैठे, फिर पॉजिटिव सोचा, फिर. हाउ फास्ट इट्स चेंजिंग, हाउ फास्ट इट्स चेंजिंग. अब इसका असर यहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है. क्यों आज शरीर बीमार हो रहे हैं? क्यों शरीर बीमार हो रहे हैं? हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, शरीर क्यों बीमार हो रहे हैं? क्योंकि हम सोच पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. द माइंड, आई द बीइंग, क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट. अब अगर देखो कि सारा दिन में 80-85,000 थॉट्स अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, और अगर मुझ आत्मा को ये जिम्मेवारी याद हो कि मेरी हर थॉट का असर पहले यहां, फिर शरीर पर, फिर लोगों पर, और फिर प्रकृति पर, यूनिवर्स पर.
2: आपका ये वर्ड जो बार बार इतने सालों से बोलो या इतने एपिसोड से, मुझे कभी ये क्रिएट पसंद नहीं आया था वर्ड. मैंने सोचा था कि मैं क्रिएट क्रिएट क्रिएट क्यों बोल रहा हूं, मतलब हो जाता है, थॉट्स तो आ रही, जैसे सांस. Am I creating my breathing in and out, you know, मैं बहुत आर्ग्यू करता था मन ही मन. लेकिन आज मुझे क्रिएशन समझ में आया कि मैं एक, हमारे यहाँ ग्रुप आती रही है और मैं बड़े बड़े दिल से कि मेरे घर को यूज कर लो आप, किचन भी यूज कर लो, अच्छे काम के लिए करो. तो कुछ दिनों पहले से कर रहे, सालों से आ रहे हैं, सडनली मेरा ध्यान गया कि लोग बाथरूम भी नंगे पैर जाते हैं, फिर मेरे गद्दे के ऊपर नंगे पांव रखते हैं. मतलब ऐसी ऐसी थॉट्स मैं क्रिएट करता गया करता गया करता गया, तो कुछ भी नहीं हुआ, रोज मुलाकात अच्छी हो रही थी. तो ये क्रिएशन जो आपका शब्द है, मुझे कब क्लियर हुआ कि मेरे छोटे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन जब भी आते थे, ये लोग भी खेलते थे उनके साथ. तो बच्चों के खेलने पे नाराजगी मेरी वाइफ को आ गई. क्या बच्चों को अंदर ले जाओ ना, खेल रहे हो एंड ऑल दैट. छोटे से बच्चे को जिनको गोदी में लेके लड़ते थे, तू मेरे को दे मेरे को दे मेरे को, बोले अंदर ले जाओ. पूरी बच्चों को रूम में. तो मैं भी लड़ पड़ा, ये भी लड़ पड़े, तो सब उठ के मैं बोले ये बच्चों को आपने ऐसे कैसे बोल दिया. एक बोला, दूसरे का माइंड खराब हुआ, तीसरे का हुआ, सब कोई भी मेरी तरफ साइड नहीं लिया. सब लोग एक तरफ हो गए क्योंकि मेरी क्रिएशन ऐसी थी थॉट्स की. मेरा क्रिएशन क्रिएशन में मांग रहा था मीनिंग, इतना ब्यूटीफुली क्लियर हुआ ये मेरे लिए कि

0: लेकिन उनको थॉट्स बहुत दिनों से भेज रहे थे। हमें क्या करना था, बाहर जो ठीक करना था ना, कि यहाँ नंगे पैर नहीं रखना, ये ऐसे करना, ये सब कर लेना चाहिए था, अंदर नहीं क्रिएट करना चाहिए था।
1: कई बार सोचा था सिस्टर की दो चार चप्पल खरीद के ला के रखूंगा, लेकिन हुआ नहीं।
0: तो वो सब अगर कर लेते तो यहाँ कुछ ना क्रिएट होता, तो वो सीन ना क्रिएट होता।
1: मैं भी तो डिस्टर्ब ज्यादा ही हो रहा था, छोटी सी बात।
0: रेपरकशन ऑफ ऑल दैट हैज हैपेंड,
1: माय रिएक्शन वाज मोर, ठीक है गद्दियों पे धुलवा लेंगे।
0: नो नो, दिस इज ऑल्सो नॉट द वे, कि ठीक है फिर कुछ भी करने दो, जो करना है उसको भी ठीक करना है, लेकिन अंदर अक्यूमुलेट नहीं करना थॉट्स क्रिएट करके। आपने भेजी, उन्होंने अब्सॉर्ब की।
1: और कब से भेज रहा था?
0: हाँ, कई दिनों से अब्सॉर्ब की। स्टिमुलस आया, एक ने रिएक्ट किया उनमें से, उसका सबने कैच किया, और बहुत जल्दी सबने सेम वे रिएक्ट किया
1: और सब उड़ गए और चले गए।
0: एक ने भी डिफरेंट एनर्जी नहीं क्रिएट की ना, कोई एक भी उस सीन को क्या कर सकता था, सॉफ्टन करके, मेलो डाउन।
1: और स्टिमुलस भी क्या,
0: बच्चे
1: चाइल्ड,
0: जिसको स्टिमुलस हम नहीं कह सकते, लेकिन वो इसीलिए तो हम कहते हैं स्टिमुलस की तो गलती नहीं, स्टिमुलस तो जिम्मेवार ही नहीं, स्टिमुलस को तो हम ऐसे ही ब्लेम करते हैं। इट इज आवर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स व्हिच वाज गोइंग ऑन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज से अपनी हर थॉट पर अटेंशन, मैं मालिक, मैं आत्मा क्रिएटर हूँ।
1: चलिए सिस्टर, थैंक यू सो मच, आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब समझ में आ गई। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।
2: एवरी थॉट वी क्रिएट हैज अ डीप इम्पैक्ट। फर्स्ट, इट इन्फ्लुएंसेस द वे वी फील। सेकंड, इट इन्फ्लुएंसेस द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। थर्ड, इट रेडिएट्स टू द पर्सन अबाउट होम it was created. Fourth, it radiates to people around us and into the universe. Every place has an energy field based on the collective consciousness of the people there. Vibrations of a temple are different from the vibrations of a shopping mall because of the thoughts created by souls there. Everyone who visits there gets influenced by the energy field. Our thoughts and behavior with souls where we live or work trigger thoughts and feelings in them. Together, all these vibrations create the energy field of our house or office. We are responsible for creating a peaceful and pure energy field of the place in which we have to live daily. When we receive negative energy from another soul, we have three options. We can absorb that energy, that is, create pain and hurt and suppress it within. We can reflect that energy, that is, radiate the same quality to them. We can transform it into positive energy and radiate to them.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 669.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

भारत की गाथा हमने कितने गीतों, कितने काव्यों और कितने ही लेखों में पढ़ी है, पर हम अपने इस देश के अनेक हिस्सों की खूबसूरती से ठीक से वाकिफ नहीं हो पाते। इसलिए इस बार हम आपको ले जा रहे हैं मिलाने उन संस्कृतियों से जो हमारे भारत को और सुंदर बनाती हैं। स्वागत है आपका भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की अगली कड़ी में, जहां सबसे पहले हम आपको ले जा रहे हैं प्रकृति के अति धनी प्रदेश मेघालय। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में एक राज्य है। मेघालय का निर्माण असम के अंतर्गत 2 अप्रैल 1970 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किया गया। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। पूर्ण राज्य मेघालय 21 जनवरी 1972 को बना। इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है मेघों का आलय, अर्थात बादलों का घर। मेघालय मूलतः एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ खासी, जैंतिया और गोरों आदिवासी समुदाय के लोग मुख्यतः रहते हैं। मेघालय के मध्य और पूर्वी भाग में खासी और जैतिया पहाड़ियाँ और एक विशाल पठारी क्षेत्र है। यहाँ विस्तृत मैदान, पहाड़ियाँ, नदी और घाटियाँ हैं। पहाड़ की तलहटी पर समतल भूमि की संकरी पट्टी बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी है। जब भारत अंग्रेजों के गिरफ्त में था तो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा मेघालय भी बना। यहाँ के अनेकों नामों में से एक नाम जिसने ब्रिटिशर्स को मुंह तोड़ जवाब देने का दम दिखाया, वे थे पा तोगन नेंगमिन्सा, जो एक बेहद हिम्मतवान योद्धा

मेघालय प्रधानतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या मुख्य रूप से खेती पर ही निर्भर है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल और मक्का हैं। इनके अतिरिक्त संतरे, अनानास, केला, कटहल और आलू बुखारा, नाशपाती तथा आड़ू जैसे शीतोष्ण फलों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। संस्कृति ही हर प्रदेश की सुंदरता का वर्णन करती है। चलिए आपको कुछ बताते हैं यहाँ की संस्कृति के बारे में। ये क्षेत्र जनजातीय संस्कृति और लोक परंपरा से समृद्ध है। घूमने के लिहाज से मेघालय राज्य में अनेक गुफाएं, पर्वत शिखा, बाग, झील, रिजॉर्ट स्थल, खूबसूरत दृश्यावलियाँ, गर्म पानी के सोते और जलप्रपात है। यहाँ प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल हैं शिलोंग, उमियाम झील, चेरापूंजी, जाक्रियम, मैरोंग, जोवाई, नार्तियांग, तुरा, सीजू और बलपाक्रम राष्ट्रीय उद्यान।

चलिए अब चलते हैं लेने आनंद यहाँ के त्योहारों का। मेघालय का पोंबलांग नोंगक्रेम खासियों का एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है जो 5 दिन तक मनाया जाता है। ये शिलोंग से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्मित नामक गांव में मनाया जाता है। शाद सुन मिनसीव खासियों का एक और महत्वपूर्ण पर्व है। ये त्योहार हर साल अप्रैल के दूसरे हफ्ते में शिलोंग में मनाया जाता है। गोरो आदिवासी सलजोंग नामक देवता के सम्मान में अक्टूबर नवंबर में वांगला नामक त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार लगभग 1 हफ्ते तक मनाया जाता है। अगर वक्त आपके पास है तो देखने के लिए मेघालय में बहुत कुछ है। यहाँ पर प्रकृति अपने भव्य रूप में उपस्थित है। राजधानी शिलोंग में भी अनेक सुंदर स्थल हैं, जिसमें वॉट्स लेक, उमियाम झील, लेडी हैदरी उद्यान, पोलो ग्राउंड, मिनी चिड़ियाघर, हाथी झरना और शिलोंग की पर्वत चोटी प्रमुख है। शिलोंग की पर्वत चोटी से पूरे नगर का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ का गोल्फ कोर्स देश के अच्छे गोल्फ कोर्स मैदानों में से एक है। मेघालय स्थित शिलोंग का मनोरम प्राकृतिक परिवेश पूरे वर्ष अवकाश बिताने के लिए उत्तम है। गाड़ी से जाने योग्य पर्वतीय स्थानों में से एक

माने जाने वाला शिलांग में ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां इतना अधिक पैदल नहीं चलना होता। शिलांग की उपयुक्त सुविधाएं, मनोरम दृश्य, खुशहाल लोग, बादल और लंबे पाइन के पेड़, पर्वत, घाटियां, दलदल और एक शानदार गोल्फ कोर्स शिलांग को एक अच्छा गंतव्य बनाते हैं। इसके अलावा घूमने के लिए पश्चिमी गारो पहाड़ी जिले में स्थित नोकरेक नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व तूरा भी है। नोकरेक गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु है और यहाँ हाथी तथा हूलॉक गिब्बन सहित अनेक प्रकार की वन्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस पार्क में सिट्रस इंडिका की अत्यंत दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है मेमोंग नारंग। नोकरेक को जंगली मनुष्य का घर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ स्थित है बालपकराम नेशनल पार्क जो दुनिया में सबसे अधिक दुर्लभ लाल पांडा का घर माना जाता है। इसका सामान्य रूप से नाम लेसर पांडा है। ऐसे और कई दार्शनिक स्थल मौजूद है मेघालय में जहाँ की खूबसूरती हर किसी का दिल लुभाने में

अब बढ़ते हैं एक और सुंदर मंजिल की ओर और आपको ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का शाब्दिक अर्थ है उगते सूर्य की भूमि। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न राज्य है, किंतु चीन राज्य के एक भाग पर अपना अधिकार दक्षिणी तिब्बत के रूप में जताता है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी और असमिया है, साथ ही यहाँ अंग्रेजी भाषा भी लोकप्रिय है। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और आसाम से भी मिलती है और इस राज्य में पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भागों की ओर है। कोमेंग, सुबनसिरी, सियोंग, लोहित और तिरप आदि नदियाँ इन्हें अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देती हैं। अगर बात करें इतिहास की तो अरुणाचल प्रदेश का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा साहित्य और ऐतिहासिक खंडर है जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है। इन स्थानों की खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईसवी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यंडाबू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता है। संवैधानिक रूप से ये असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इन सब के बाद 20 फरवरी 1987 को ये भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। ब्रिटिश काल के दौरान अरुणाचल के लोगों ने भी उनसे लोहा लिया, जिसमें से एक थे ताजी मिद्रेन। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ी तथा 1955 में 3 ऑफिसर्स को मार गिराया। उन्होंने ब्रिटिश राज के विस्तार को रोकने के लिए अपने साथी मिश्मी आदिवासियों को एकत्रित करके काम किया, पर दिसंबर 1917 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा 1918 में वे अपना कर्तव्य निभाते शहीद हो गए।

भौगोलिक आधार से देखें तो अरुणाचल का अधिकतर भाग हिमालय से ढका है, लेकिन लोहित, चांगलांग और तिरप पतकई पहाड़ियों में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करता है। ये पर्वतमाला आगे नागालैंड की ओर मुड़ जाती है और भारत और म्यांमार के मध्य चांगलांग और तिरप जिले में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और एक सीमा का कार्य करती है। अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ ऑर्चिड फूल भी पाए जाते हैं और कई हरी भरी घाटियाँ हैं। चलिए बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक जीवन की ओर। यहाँ के लोकगीत, संगीत, हस्तशिल्प सभी कुछ मन लुभावना है। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातियों के लोगों की अपनी अलग अलग पगड़ी एवं परिधान है। बुनाई कला का यहाँ अपना महत्व है एवं हर जनजाति की अपनी विशिष्ट शैली है। नृत्य यहाँ के सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है तथा लोसर, मेपिन एवं सोलुंग यहाँ के प्रमुख जनजातीय पर्व हैं। अरुणाचल के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में अदी समुदाय का मापिन और सोलंगू, मोनपा समुदाय के त्योहार दुसार, अपनानी समुदाय का द्री, तगिनो समुदाय का सी दियोंगे, दोन्याई आदि भी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश भी अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह पर्यटन का एक केंद्र है तथा राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थानों में त्वांग, दिरांग, बोमटिला, ईटानगर तथा जगहों में पापुर पेड़, त्वांग मठ आदि हैं। अरुणाचल स्थित एक दार्शनिक स्थल ईटा किला भी है जिसका निर्माण 14-15वीं शताब्दी में कराया गया था। इसके नाम पर ही इस जगह का नाम ईटानगर है। इस किले से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। किले को देखने के बाद सैलानी पौराणिक गंगा झील भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर भी है। बौद्ध गुरु दलाई लामा भी यहाँ की यात्रा कर चुके हैं। इस मंदिर की छत पीले रंग की है और इस मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। मंदिर में एक संग्रहालय भी है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है, जहाँ पूरे अरुणाचल प्रदेश की झांकी देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे लकड़ियों से बनी खूबसूरत वस्तुएं, वाद्य यंत्र, सुंदर कपड़े, हस्त निर्मित वस्तुएं और केन की बनी सुंदर कलाकृतियों का संग्रह देखा जा सकता है। संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी है। अन्य स्थानों में दोन्य पोलो विद्या भवन, विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी उद्यान और अभियांत्रिकी संस्थान प्रमुख हैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के पश्चात अब हम आ पहुंचे हैं हमारी अगली मंजिल की ओर, यानी मिजोरम। मिजोरम भारत गणराज्य में एक पर्वतीय प्रदेश है। मिजोरम के पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश है। पश्चिमोत्तर में त्रिपुरा, उत्तर में असम तथा पूर्वोत्तर में मणिपुर है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य बना। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ये आसाम का एक जिला था। मिजोरम में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है और इस क्षेत्र में प्रकृति की विभिन्न छटाएं देखने को मिलती हैं। ये क्षेत्र विभिन्न प्रजाति के प्राणियों तथा वनस्पतियों से संपन्न है। चलिए पढ़ते हैं मिजोरम के निपुण इतिहास की ओर। 1891 तक उत्तर का लुशाई पर्वतीय क्षेत्र असम के और आधा दक्षिणी भाग पश्चिम बंगाल के अधीन रहा। 1858 में दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया, जिसका नाम लुशाई हिल्स जिला रखा गया। ये असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया। 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने पर मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में हुए ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत में चले स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा मिजोरम भी बना। यहाँ के रोपुल्लानी मिजोरम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण नाम है। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ समझौता नहीं किया। सन 1993 में उन्हें जेल में डाल दिया गया था, जहाँ एक साल बाद उनकी मृत्यु हो गई।

मिजोरम की पहाड़ियाँ घने सदाबहार वनों से ढकी हैं, जिसमें चंपक, आयरनवुड और गुर्जुम जैसे मूल्यवान इमारती लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। इन जंगलों में हाथी, बाघ, भालू, हिरन और जंगली भैंसों समेत कई जंतुओं का पर्यावास है। कृषि यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। मिजोरम प्रदेश के लगभग 80% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ सीढ़ीदार खेती और झूम खेती का प्रचलन है। अनुमानतः 21 लाख हेक्टेयर भूमि में 6.3 लाख हेक्टेयर भूमि बागवानी के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ एंथूरियम, बर्ड ऑफ पैराडाइज, आर्चिड, गुलाब तथा कई अन्य मौसमी फूलों की खेती भी होती है। मसालों में अदरक, हल्दी, काली मिर्च भी यहाँ उगाई जाती हैं। यहाँ के लोग पाम ऑयल, जड़ी बूटियाँ तथा सुगंधित पौधों की खेती भी बड़े पैमाने पर करते हैं। चलिए अब सांस्कृतिक रूप से जानते हैं मिजोरम को। यहाँ के सांस्कृतिक जीवन में नृत्य और संगीत मूल तत्व हैं। यहाँ के त्योहारों में ईसाई धर्म के पर्व और स्थानीय कृषि त्योहार जैसे चपचारकुट, पालकुट और मिमकुट शामिल हैं। आइजोल में पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय का परिसर स्थित है। मिजो और अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख व राजकीय भाषाएं हैं। अपनी लिपि न होने के कारण मिजो भाषा के लिए रोमन लिपि का उपयोग होता है। चलिए अब मनाते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख त्योहार। मिजो नागरिक मूलतः किसान हैं, अतः उनकी तमाम गतिविधियाँ तथा त्योहार भी जंगल की कटाई करके जाने वाली झूम खेती से ही जुड़े हुए हैं। त्योहार के लिए मिजो में कुट शब्द का प्रयोग होता है। मिजो लोगों के विभिन्न त्योहारों में से ज्यादातर तीन प्रमुख त्योहार चपचार, मिमकुट और थालफोंग कुट मनाए जाते हैं। पर्यटन के लिहाज से मिजोरम एक अत्यंत सुंदर जगह है। समुद्र तट से लगभग 4000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय नगर आइजोल मिजोरम का एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। म्यांमार की सीमा के निकट चम्फाई एक सुंदर पर्यटक स्थल है। यहाँ तामदिल एक प्राकृतिक झील भी है, जहाँ मनोहारी वन है। ये आइजोल से 80 किलोमीटर और पर्यटक स्थल सैतुअल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वानतांग जलप्रपात मिजोरम में सबसे ऊंचा और अति सुंदर जलप्रपात है, जो बॉक के निकट जिला पार्क में अल्पाइन पिकनिक हट तथा बेरो तुलांग में मनोरंजन केंद्र भी बनाए गए हैं। और भी अनेक स्थलों की मौजूदगी में आपका समय मिजोरम में कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा।

चलिए अब आपको लिए चलते हैं हमारी अगली मंजिल की ओर, जिसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यानी कि नागालैंड, जहां आपको सभी अन्य पूर्वी प्रदेशों की भांति खूबसूरत प्रकृति और अनेक सांस्कृतिक रंग मिलेंगे। आइए जानते हैं कुछ यहाँ के बारे में। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत संघ का 16वां राज्य बना था। इस राज्य के पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर है। इसकी राजधानी कोहिमा है। असम घाटी की सीमा से लगे क्षेत्र के अलावा इस राज्य का क्षेत्र अधिकांशतः पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम सरमती है, जिसकी ऊंचाई 3840 मीटर है। ये पर्वत श्रृंखला नागालैंड और म्यांमार के मध्य एक प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्माण करती है। 12वीं-13वीं शताब्दी में यहाँ के निवासियों का असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ, लेकिन इससे इन लोगों के रहन सहन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 19वीं शताब्दी में

उद्घाटन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। भूगोलिक नजर से देखें तो नागालैंड का लगभग समूचा हिस्सा पर्वतीय है। उत्तर में नागा पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र घाटी से अचानक 610 मीटर की ऊंचाई तक उठती हैं और इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में इनकी ऊंचाई 1800 मीटर तक हो जाती है। म्यांमार सीमा के पास ये पहाड़ियाँ पटकुई पर्वत श्रृंखला से मिल जाती हैं और यहाँ इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बिना भारत के किसी भी प्रदेश की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर बात करें नागालैंड की तो ये भी मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। राज्य में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। चावल यहाँ का प्रमुख भोजन है। कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 70% में धान की खेती होती है। यहाँ मुख्यतः स्लेश और बर्न खेती प्रचलित है जिसे स्थानीय तौर पर झूम के नाम से जाना जाता है। नागालैंड राज्य की लगभग 90% जनता कृषि में लगी है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन, गन्ना और आलू हैं।

0: चलिए अब भविष्य को संवारने वाले क्षेत्र यानी शिक्षा जगत की बात करते हैं और जानते हैं नागालैंड में शिक्षा के बारे में। यहाँ कई प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ कई स्नातक स्तर के महाविद्यालय भी हैं, जिनमें सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, कोहिमा साइंस कॉलेज, कोहिमा लॉ कॉलेज, नागालैंड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पब्लिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स आदि शामिल है। कोहिमा में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का परिसर भी स्थित है तथा नागालैंड में नागालैंड विश्वविद्यालय है। इसके पश्चात आपको अब लिए चलते हैं अनोखे नागालैंड की अनोखी संस्कृति के समीप। नागालैंड में जनजातीय संगठन में कोलियाक के निरंकुश अंग और सेमा व चांग के आनुवंशिक मुखिया से लेकर अंगामी, आओ, लोहोरा और रिंगमा की लोकतांत्रिक संरचनाओं जैसी भिन्नताएं पाई जाती हैं। नागा समाज में महिलाओं को अपेक्षाकृत ऊंचा और सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। वे खेतों में पुरुषों के ही समान शर्तों पर काम करती हैं तथा जनजातीय परिषदों में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है। प्रत्येक जनजाति के अपने त्योहार होते हैं। यहाँ नागा नृत्य, संगीत, गीत और लोकगीतों में जीवन के उल्लास की झलक मिलती है। नागा भाषा एक जनजाति से दूसरी जनजाति और कभी कभी तो एक गांव से दूसरे गांव में भी अलग हो जाती है, तथापि इन्हें तिब्बत बर्मा भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया है। संगीत और नृत्य नागा जीवन के मूलभूत अंग हैं। वीरता, सुंदरता, प्रेम और उदारता का गुणगान करने वाले लोकगीत और लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इसी तरह नृत्य हर उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर त्योहार पर दावत, नाच गाना और उल्लास होता है। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं सेक्रनई, मुआत्सु, तोकुए मोंगा और तुलनी। चलिए अब चलते हैं नागालैंड का थोड़ा भ्रमण करने, यानी कि यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में जानने। नागालैंड में देशी विदेशी लोग प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आते हैं। पर्यटन स्थलों में द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान, राज्य संग्रहालय कोहिमा व दीमापुर के चिड़ियाघर तथा कछारी शासकों की पुरानी राजधानी शामिल है। घूमने के लिए आप दीमापुर, किफरे, कोहिमा, मोकुकंचुंग, मोन, वोखा आदि जगहों पर प्रकृति के सुंदर रूप का लुत्फ उठा सकते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, जिसमें नागालैंड की सभी जनजातियां एक स्थान पर आकर उत्सव मनाती हैं और अपनी पारंपरिक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और शिल्पगत चीजों का प्रदर्शन करती और बेचती हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग समय पर यहाँ तीन पारंपरिक उत्सव मनाए जाते हैं, जो है कोहिमा जिले के तोफेमा में मनाए जाने वाला सिक्रनई, लोंगलेंग उपमंडल के पोगो में मोन्यू तथा मोकोकचुंग जिले के चुचुयिमलाग में मुआत्सु। रंग बिरंगे त्योहारों से, ऊंचे नीचे पहाड़ों से, झरनों से, गलियारों से होते हुए हम आ पहुंचे हैं इस खूबसूरत सफर के अंत की ओर। उत्तर पूर्वी प्रदेश कई महान व्यक्तियों जैसे कि मोजेरेबा, संती पादा रॉय, सुभाष चंद्र पाऊ, रूपवेल नानी आदि की जन्मभूमि भी है। हम सलाम करते हैं इन सभी को और अपने भारतवर्ष को भी, और साथ ही साथ लेते हैं आपसे अलविदा। सुनते रहिए 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी। जय हिंद।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी। और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी, दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो,

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
3: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है टाल मटोल भी एक विकार है। टाल मटोल अर्थात टालना, अगर मगर, आनाकानी, अनसुना, बहानेबाजी, डरकाना आदि। टालने का दोष समय की पाबंदी के गुण के ठीक विपरीत है। वर्तमान समय ज्यादातर लोग अति आवश्यक कार्य को टालने वाले रवैये को के शिकार हैं। समय आने पर कर लेंगे या तो बाद में भी हो सकता है, चिंता मत करो, हो जाएगा, अभी तो वक्त है। ये सब फिक्रें टालने की प्रीति को दर्शाते हैं। कुछ समय के बाद यह टालना भी व्यक्ति की आदत बन जाती है। चिंता, उदासी, बेचैनी और साथ झुंझलाहट आदि की वजह से भी व्यक्ति विलंब की स्थिति में आ जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर हम टाल मटोल के कारण क्या है। जैसे कुछ व्यक्ति इसलिए मन को टाल देते हैं कि उन्हें लगता है कि अभी तो उस कार्य को करने का समय ही नहीं आया है, बहुत समय पड़ा है, इसे तो बाद में भी कर लेंगे। और यह प्रतिक्रिया अंत तक बनी रहती है। फिर व्यक्ति आलस्य के कारण उस कार्य को टालता ही रहता है। कुछ लोग इसलिए टालमटोल करते हैं कि उन्हें यह लगता है कि यह क्या कार्य तो बहुत बड़ा है, इसके लिए अलग से एक निश्चित समय की आवश्यकता है, समय रहते बाद में ही इसे करेंगे वरना दूसरे जरूरी कार्य रह जाएंगे। कुछ लोगों को कार्य में विफल होने का डर सताता रहता है, अर्थात हिम्मत हीनता का शिकार बन जाते हैं और कार्य को टाल देते हैं कि देखेंगे हम कर पाएंगे या नहीं। ऐसे व्यक्ति डर के कारण किसी भी कार्य में कभी भी सहयोगी नहीं बनते। कई व्यक्ति यह कार्य करना चाहिए या नहीं इस बात का फैसला ही नहीं कर पाते और उस कार्य को टाल देते हैं। कुछ लोग इसलिए भी कार्य को टाल देते हैं कि क्योंकि उन्हें अंत समय में होने वाली भागदौड़ में रस मिलता है और उत्तेजित होकर कार्य करने का आनंद लेते हैं। इससे हो सकता है कि कार्य समय पर पूरा ना हो, मेहनत की भी उनको लगातार अधिक करनी पड़ती है

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है टालमटोल भी एक विकार है। टालमटोल के नुकसान क्या है? आत्मविश्वास डगमगाता है। इससे आत्मविश्वास कैसे डगमगाता है? यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक टालमटोल करता रहेगा तो एक दिन कोई भी व्यक्ति उससे काम करवाना पसंद नहीं करेगा। समय पर कोई भी कार्य नहीं करने की इस आदत के कारण व्यक्ति हमेशा परेशान, दुखी और भागते हुए दिखाई देगा। कार्य को लेकर उसके मन में डर इस कदर बैठ जाएगा कि वह कोई भी कार्य आगे के लिए अपने हाथ में लेने से बचता नजर आएगा। यह टालने की आदत दिलो दिमाग में इस कदर बैठ जाएगी कि हम अनेक प्रकार के बहाने खोज निकालेंगे। टालमटोल की प्रक्रिया यदि लंबे समय तक चलती रहे तो शारीरिक और मानसिक शक्ति कमजोर हो सकती है। इसके बाद चिंता, तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, चिल्लाना, अनेक संगी आ जाते हैं। अर्थात आत्मविश्वास डगमगा जाता है तथा जीवन अस्त व्यस्त रहता है। एक तरफ हम देखते हैं आत्मसम्मान भी कम होता है। काम टालने वाले को अक्सर अपनी इस आदत पर गर्व होता है, लेकिन काम टालना एक बुरा विचार है।

टाल मटोल करने वाले लोग तनाव से भरे हो सकते हैं, वह यह आदत उनको बीमार भी बना सकती है। अहम कार्यों को टाल देने की आदत की गहरी मनोवैज्ञानिक जड़े हो सकती है, परंतु जो टाल मटोल करते हैं उनका आत्मसम्मान भी कम होता है। एक तरफ हम देखते हैं कार्य की जो गुणवत्ता भी उनमें नहीं रहती। कोई काम सामने आता है तो लोग कहते हैं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, फिर कहते हैं कल सुबह कर लेंगे या दोपहर में कर लेंगे। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और काम वहीं का वहीं रह जाता है। आज का कार्य जुड़कर वह काम और अधिक बड़ा हो जाता है। इससे कार्यों की संख्या दिन ब दिन बढ़ जाती है। फिर यदि वह कार्य जल्दी कर लेते हैं तो उसकी गुणवत्ता नहीं रहती। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर से आपसे आकर मिलते हैं। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, विज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है टाल मटोल भी एक विकार है। जैसा कि हम देखते हैं, टाल मटोल का नियम है इंतजार करो। टाल मटोल करने वाले का जो है प्रिय वाक्य होता है, इसे करने वाला हूं, किसी दिन तो अवश्य करूंगा। और इसका जाप करते हुए अपने वर्तमान अवसरों के प्रति अंधे, बहरे और गूंगे हो जाते हैं। टाल मटोल का तो नियम है इंतजार करो, अभी नहीं, किसी और वक्त। टाल मटोल बीज है और इसे करने वाला हूं, वह पेड़ है जिससे यह कल का जुनून उत्पन्न होता है। टाल मटोल के संस्कार को कैसे बदले? कल का काम आज, आज का काम अभी, यही है इसका मूल मंत्र, इस संस्कार को बदलने का। यदि किसी व्यक्ति के मन में विचार आया कि यह काम 2 सेकंड बात करूंगा, तो यह आलस्य, अलबेलेपन और टालमटोल की निशानी है। काम से जुड़ी मनोवृत्ति यह होनी चाहिए कि कल का काम आज, आज का काम अभी, तभी हम महान कार्य कर पाएंगे। दुनिया के महान लोगों की आत्मकथा से भी यही सार निकल कर आया है। निश्चय से कहे मुझे अवश्य करना है। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो एकाएक ही आदर्श बनकर प्रकट होता हो। हम जो भी करना चाहते हैं, हाँ, पाना या बनना चाहते हो, उसे साकार करने और उसका फल पाने से पहले हमें उसे शुरू करना होता है। हम अगर आशा, सपने और इच्छाएं छुपा कर रखते हैं, तो उन्हें आजमाने के साहस के बिना दिन, महीने, साल गवा देते हैं, तो वे एक दिन नाकामयाब हो जाते हैं। अतः जिस काम से हम जुड़े हैं, उसे, उसके लिए निश्चय से कहें मुझे अवश्य करना है, मुझे ही करना है, यह कार्य मैंने ही चुना है, तब कोई और क्यों करेगा। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ ख्वाबों का सफर। जहाँ आइए आज के इस ख्वाबों के सफर को बनाते हैं यादगार और कुछ नई बातें, नए गाने, 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो साथियों, आप दिल थाप के बैठिए और पूरे दिल से बैठिए और कार्यक्रम को सुनिए। और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह विभा जी भी कनेक्ट हो गए हैं। और विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सनी, आपको भी स्वागत है साथ देने के लिए।
1: जी जी, शुक्रिया। कहते हैं जिसने दी है जिंदगी और चलना सिखाया है, माँ मेरी उस भगवान का साया है, वो माँ मेरी उस भगवान का साया है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको ले चलता हूँ विभा जी। आज के इस एपिसोड में सबसे पहला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं, गाना या गजल?
2: सनी, सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार कहूंगी जी। और साथ ही मैं आपके लिए एक गजल लेके आई हूँ। ये जो एपिसोड है इसमें गजल है, जुदाई का गीत है, देशभक्ति है और मिक्सचर गाने हैं, और आपको बहुत मजा आने वाला है ये सुनने के लिए। आप तैयार हो जाएं। पहली गजल है, सादगी सिंगार हो गई, आईनों की हार हो गई। बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत गजल है और ये सादगी पर है और ब्यूटी पर गाई गई है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: तो ये गजल अपने आप में मुकम्मल गजल है। दोस्तों का कारमा तो है, दोस्ती गुबार हो गई।
1: जी विभा जी, बहुत ही प्यारी सी गजल आपने याद कराई है कार्यक्रम की शुरुआत में, और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। तो आइए, बेकल उत्साही का लिखा ये खूबसूरत गीत अहमद हुसैन साहब का गाया, मोहम्मद हुसैन साहब और अहमद हुसैन दोनों ने मिलकर इस गजल को गाया है। तो चलिए सीधे गजल की तरफ चलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। और गीत गजल में एक जो डिफरेंस है वो ये है कि गजल आपको जो है बांध के रखता है और गीत जो है आपको बहला देते हैं, नृत्य करा देते हैं, हंसना सिखा देते हैं। तो गजल जो है हमारी जिंदगी की कुछ मुद्दे पर जो है बात होती है उसमें, और वो कहीं ना कहीं एक जो है बात पर होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये गजल सुनकर कहीं ना कहीं अपनी निजी जिंदगी की कुछ बातें याद आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं विभाजी से जोड़ना चाहूंगा। कहते हैं जिंदगी का सच, जिंदगी से परेशान होने पर कुछ बातें हमें याद आती हैं, लेकिन जैसे ही हम उस सच को समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो जिंदगी आसान हो जाती है, जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: सनी, अगला गाना है ये जुदाई का गाना है। जैसे कि ये पहली गजल भी इस बड़ी आपके दिल को छूने वाली है, ये जुदाई का गाना भी ऐसे ही दिल को छूता है। साथियों की गलियां छोड़ चले, दिल रोया आंसू बह ना सके। तो इसमें प्रेमिका प्रेमी के जुदाई में अपने हाले दिल बयान कर रही है। साजन से दूर जाती हुई सजनी ये कह रही है, लब कांपे आंखें भराई, कुछ कहना था और कह ना सके।
1: जी जी जी जी, विभा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और ये जो गाना है साजन की गलियां छोड़ चले, कमर जलालाबादी साहब का लिखा हुआ है, लता मंगेशकर का गाया हुआ है, श्याम सुंदर जी का बहुत ही खूबसूरत संगीत है। एक फिल्म आई थी 1949 में बाजार नाम से, तो उस फिल्म का ये गाना आपने याद कराया है। और ये फिल्म जो है एक इंग्लिश फिल्म का कॉपीराइट है, यानी इंग्लिश फिल्म को हिंदी में बनाया था, रीमेक किया था हिंदी में। तो आइए इस फिल्म के कलाकार जैसे कि गोपी, श्याम, याकूब खान, सुल्ताना, इन पर पिक्चराइज किया गया था। तो चलिए मैं सीधे गाने की तरफ ले चलता हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत गाना बाजार इस एल्बम का आपने सुना, आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है। और कहते हैं जिसके होने से रिश्तों में अलग एक जान होती है, मुश्किलें भी जिंदगी की बड़ी आसान होती है, वही परिवार करता है मुकम्मल इस जहां को भी, उसी परिवार से इंसान की पहचान होती है। विभा जी कैसे हैं आप?
1: जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके शायरी का मजा लेती रहती हूँ साथ साथ में। आप बहुत ही अच्छे बीच में जो ये शायरी के लफ्ज़ बोलते हैं, तो उनमें भी मैं खो जाती हूँ कि उसका मतलब जोड़ते हुए अपने ये अगले गाने के साथ में जा रही हूँ।
0: जी।
1: तो देशभक्ति का गाना है, देशभक्ति, और ये मेरा फेवरेट गाना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप भी टिक के नहीं बैठ पाएंगे, आप को सारा हिंदुस्तान घुमा दे गया ये गाना, इतना प्यारा गाना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। ये बहुत ही उत्साह भरा गाना है और इसकी महानता का गुणगान है, देश की महानता का गुणगान है इसमें, प्रेम की भावना है। और हम कहीं भी रहें, अपनी मिट्टी से हम जुड़े रहते हैं, कहीं भी रहें
0: सही बात है, सही
1: तो
0: बात।
1: वो जो एक मिट्टी की खुशबू है ना, तो वो हमें ऐसे बोल के साथ ऐसे जोड़ती है कि हमारे पैर भी थिरकने लगते हैं और देशभक्ति की भावना पैदा होती है। और इस गाने में जैसे प्रेम की भावना है और साथ में सीख भी है।
0: जी।
1: मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
0: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ आपने इशारा किया है, और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी ये गीत बहुत बार सुना होगा। तो फिर से एक बार हम लोग उसी जज्बे, उसी भावनाओं को लेकर हम इस गाने को सुनेंगे। और ये जो गाना आपने बताया, ये भाई बहन एक एल्बम आई थी 1959 में शायद, और उस समय ये फिल्म रिलीज हुई थी। और इसमें एक छोटी सी कहानी है भाई बहन की बताई गई है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक अमीर लड़की जो है एक गरीब परिवार के लड़के को अपना भाई मानती है, और वो उसे अपने घर बुलाती है, तो लड़के के पिता जो है उसे घर से फिर भगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, एक भाई बहन का जो प्यार है, उन चीजों को मजबूती से इसमें बताने की कोशिश की है डायरेक्टर साहब ने। जीपी सिप्पी के निर्देशन में बनी ये फिल्म भाई बहन 1959 का अगला गाना आपके लिए, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। आशा भोसले का गाया, एम दत्ता का संगीत सजा, ये गाना आपने अभी सुना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी के इस सफर में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार हम लोग अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं और कई बार भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कहते हैं, बुरा साया उनके रहते हमें छू तक नहीं सकता, दुआएं जिनकी बन साया हमारे साथ रहती हैं, दुआएं जिनकी बन साया हमारे साथ रहती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूं और अगले गाने की तैयारी में हूं, क्योंकि ये गाना जैसे हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है कि उसको दुनिया की परवाह नहीं होती, उसको बस अपना एक महबूब चाहिए अपने पास। तो इस गाने के बोल में आपको यही सुनने को मिलने वाला है। साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहां। इस गाने में शरारत है, प्यार है और प्यार हो जाने का इशारा है। दो प्रेमी हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं और गा रहे हैं, मेरे साज की आवाज तुम, मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे बिना।
1: वाह जी, आशा भोसले का गाया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। कांच की गुड़िया इस एल्बम से है। तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर, और मैं हूं आपका हम सफर सनी। और हमारे हम सफर साथी हैं विभा जी, जिनसे बहुत ही खूबसूरत कलेक्शंस ओल्ड मेलोडीज हम सुन रहे हैं। और अभी जो गाना आपने सुना आशा भोसले का, कांच की गुड़िया, इस एल्बम से था जो 1961 में रिलीज हुई थी। और एक मजेदार बात यह है कि कांच की गुड़िया इसके एपिसोड्स भी बने, टीवी सीरियल भी इस नाम से बना था जो आपने शायद देखा होगा। आशा भोसले मुकेश का गाया गीत जो है अभी आपने सुना, साथ हो तुम और रात जवा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि इस तरह के जो खूबसूरत गाने होते हैं कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाते हैं। और शैलेंद्र साहब के बहुत ही खूबसूरत कलम से लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, कांच की गुड़िया का। तो विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना अगेन मेरे पास एक मोटिवेशनल सॉन्ग है और अपने टाइम की सुपर हिट फिल्म का गाना है का, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। और उसमें मोटिवेट किया गया है मजदूर पुल बनाते हुए इसको गा और एक दूसरे का हाथ बढ़ा रहे हैं।
1: सही बात।
2: और गाने के बोल एक एक लाइन बहुत ही मोटिवेट करने वाली है। आप तो इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों से रहे।
1: क्या बात, तो क्या बात। जी विभा जी, बहुत ही अच्छा जो गीत है आपने याद कराया है, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, जीवन अजीत खान पर पिक्चराइज किया गया, नया दौर इस एल्बम का है। और बहुत ही एक मोटिवेशनल सॉन्ग है ये, और ओपी नैयर का बहुत ही खूबसूरत संगीत है इसमें, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है, सुनते सुनते मजा भी आता है। और ये हेल्पिंग नेचर के बारे में इसमें बताया गया है। आशा भोसले, मोहम्मद रफी साहब का गाया, साहिर लुधियानवी साहब का लिखा ये गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: वो दिन भर टूट कर दो वक्त की रोटी कमाता है, वो दिन भर टूट कर दो वक्त की रोटी कमाता है। पिता का साथ ही परिवार की बुनियाद होती है, पिता का साथ ही परिवार का बुनियाद होता है। आप सुना है रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM। चलिए, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। कहीं ना कहीं ये गीत सुनकर आपके पैर थिरकने लगे होंगे और मन में एक शुद्ध पवित्र भावना भी आ गया होगा कि हम एक दूसरे को कैसे मदद करें। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि आप अगले गाने की तरफ, विभा जी, कौन सा सुनाने वाले हैं आप?
1: जी सनी, जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यहाँ खुशी होती है, साथ साथ कुछ ना कुछ उदासी भी चलती है। अगला गाना मैं लेके आई हूँ, साथी ना कोई मंजिल दिया है ना कोई महफिल, चला मुझको है दिल लेके कहाँ, लेके अकेला कहाँ। इस गाने में उदासी है, अकेलापन है और दुनिया से खूब सारी शिकायतें हैं, और भगवान से भी शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं, नसीब को कोस रहे हैं और कह रहे हैं, पत्थर की आस ना मिले, पत्थर के देवता मिले, शीशे का दिल लिए जाऊं
0: जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी जो भावना है आपने व्यक्त किया है। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये गाना है, बम्बई का बाबू, जो 1960 में रिलीज हुई थी। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी। दो दोस्तों की कहानी इसमें बताया गया है, एक नाम है बाबू और दूसरा है भगत, और दोनों का बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन भगत बीच में जो है भटक जाता है और किसी एक व्यक्ति का खून करा के उसे कहता है, बाबू को जबरदस्ती खून कराने लगा देता है। खून होने के बाद जो है तुझे बहुत माल मिलेगा, ऐसा वैसा करके एक बहुत बड़े आदमी शाहजी क्या वारिस आप बनेंगे, ऐसा करके उसको फंसा देता है। तो भगत ब्लैकमेल करता है बाबू को, और ब्लैकमेल करने के बाद होता है ऐसे कि जिस व्यक्ति के साथ इनकी जो उत्तराधिकारी के बारे में बात होती है, उनकी ही लड़की से बाबू का प्यार हो जाता है। तो राज खोसला साहब का ये निर्देशन में बनी फिल्म, उनके ही डायरेक्शन में बनी ये फिल्म, बम्बई का बाबू, जो 1960 में रिलीज हुई थी। तो आइए इस खूबसूरत फिल्म का गीत सुनते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार। बम्बई का बाबू इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, देवानंद सुचित्रा सेन धुमाल और नाजिर हुसैन पर पिक्चराइज किया गया था इस फिल्म का गीत आपने सुना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
1: अगला गाना है मेरे पास, ये दो प्रेमी फिल्म मिल रहे हैं और डिफरेंट तरह के गाने गा रहे हैं। साजे दिल छेड़ दे क्या हंसी रात है, कुछ नहीं चाहिए तो अगर साथ है। हंसी रात में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ लिए अपने प्रेम में गुम है। ये आई थिंक मधुबाला है, इसमें प्रदीप कुमार है।
0: अच्छा,
1: और उनको सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कह रहे हैं तेरे दर पे सर झुक जाए, यही जिंदगी रुक जाए।
0: क्या बात, क्या बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आइए, पासपोर्ट इस एल्बम का ये गाना है, 1961 में रिलीज हुई थी। तो सीधे मैं गाने की तरफ ले चलता हूँ। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: तो आशा करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड़ पे आ गए हैं, अब गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। तो बहुत ही खूबसूरत गाना विवा जी आपने पासपोर्ट इस एल्बम से सुना है, साजे दिल छोड़ दे। क्या हसी रात थी। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर का गाया बहुत ही खूबसूरत गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सजा ये गीत आपने सुनाया, और मैं कहूँगा कि आज के इस एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत गाने आपने सुनाए, तो इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: थैंक यू सनी, मैंने बहुत इंजॉय किया इन गानों को, और जब चुन रही थी तो उसमें भी आप सबकी पसंद को नजर में रखते हुए तो इन गानों को चुना। इसमें देशभक्ति भी थी, मतवालापन भी था, मोटिवेशन था, तो मैंने खूब इंजॉय किया इस एपिसोड को, और आगे भी ऐसे ही आप सबके लिए चुन चुन के गाने लाने वाली हूँ। आप अपना तैयारी रखें और आप सबको बहुत प्यार के साथ प्यार भरा नमस्कार और गुड बाय।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया विभाजी। और चलिए श्रोताओं, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मेरा तो शादी का कोई इरादा नहीं था सर। मैं तो सोच रहा था कि मार्च में एमएससी का एग्जाम देकर किसी नौकरी पे लग जाऊंगा, कहीं एस्टेब्लिश हो जाऊंगा, कमाने लगूंगा, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन ये सब
1: इसका मतलब है कि फिलहाल तुम उससे शादी नहीं कर सकते और ना ये चाहते हो कि सावित्री की शादी सागर या किसी दूसरे के साथ हो।
0: मैं तो यही चाहता हूं सर, लेकिन उधर मां का दबाव, सागर के एहसान, मुझे तो डर लगता है सर। सर मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप मेरे गॉडफादर हैं, आप मेरे फादर।

0: बनकर उनसे बात कीजिए ना, आप हम दोनों को बचा सकते हैं।
1: डोंट वरी माय सन, सावित्री की शादी तुम्हारे साथ ही होगी, मैं उनसे जाकर रिश्ते की बात करूंगा।
0: थैंक यू सर।

काबू। वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना। आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

0: नागा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाँच आने का दसाना, पाँच आने का दसाना, पाँच आने का दसाना।
0: अरे वापस नहीं जाना,

0: है कुछ है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख आज पहली तारीख है।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई, तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: वेलकम बैक श्रोतेहो। श्रोतेहो आपण समजूत या शब्दाच्या अनुषंगाने बोलत आहोत आणि त्या श्रृंखलेमधल्या आपण पुढच्या चारोळीकडे वळूया, ज्यामध्ये सौ वृंदा दीपक राव मॅडम यांनी धुळेतून लिहिले। सौ वृंदा दीपक राव मॅडम लिहित आहेत धुळेतून की प्रतिबिंब जळी पाहुनी करी हट्ट, प्रतिबिंब जळी पाहुनी करी हट्ट, चंद्रनभीचा मागे राम खेळायला, चंद्रनभीचा मागे राम खेळायला, कौशल्या दशरथ आणि दरबारी, कौशल्या दशरथ आणि दरबारी, हतबुद्ध ते समजूत घालायला, हतबुद्ध ते समजूत घालायला।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आपने अब तक जाना कि नरेंद्रनाथ की बीए की परीक्षा खत्म होते ही उनके पिता का असामयिक निधन हो गया था। पिता के श्राद्ध के उपरांत उन्हें पता चला कि उनकी आर्थिक स्थिति भयावह है। पिताजी कुछ भी संचय नहीं कर गए थे और काफी कर्ज छोड़ गए थे। अच्छे दिनों के मित्रगण एवं पिता के अन्न से प्रतिपालित स्वजन वृंद इन दुर्दिनों में अलग हो गए। गृहहीन, संबलहीन, मित्रहीन, अन्नहीन नरेंद्रनाथ की आंखों के आगे अंधकार छा गया। वे अपना मार्ग ढूंढ नहीं पा रहे थे। अपनी अवस्था का वर्णन उन्होंने खुद इस प्रकार से किया।

0: सूतक की समाप्ति के पूर्व से ही मुझे काम की तलाश में घूमना पड़ा था। अनाहार, नंगे पांव, नौकरी का प्रार्थना पत्र हाथ में लेकर दोपहर की धूप दफ्तर घूमना पड़ता था। घनिष्ठ मित्रों में से कोई मेरे दुखित होकर किसी दिन साथ रहता था और किसी दिन मुझे अकेले ही घूमना पड़ता था, परंतु सर्वत्र ही विफलता होती थी। ये प्रथम अवसर था जब मुझे संसार के साथ विशेष रूप से परिचित होना पड़ा था। स्वार्थ रहित सहानुभूति यहां बहुत ही विरल है। यहां दुर्बल और दुखी का कोई स्थान नहीं है। मैं देखता था दो दिन पहले जो लोग मुझे कुछ भी सहायता देने का मौका पाने पर अपने को धन्य समझते थे, अब इस समय मुझे देखते ही मुंह फेर लेते थे। सामर्थ्य रहते हुए भी थोड़ी बहुत सहायता भी नहीं देना चाहते थे। देख सुनकर कभी कभी ऐसा लगता था मानो ये संसार दानवों का बनाया हुआ है। स्मरण है इस दिन एक दिन धूप में घूमते हुए पैर के तलवे में छाला पड़ गया था और बहुत थककर मैदान के पेड़ की छाया में बैठ गया था। संभवतः दो एक मित्र उस दिन थे जो मुझे सांत्वना देने लगे। मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो कोई मेरे मस्तक पर जोरों से आघात कर रहा है। माता और भ्राताओं की असहाय अवस्था की बात मन में उदित होने पर मैं दुख, निराशा और ग्लानि से बोल उठता था, ठहर, चुप भी रह। भूख की ज्वाला से दुखित परिजनों का कष्ट जिन्हें सहना नहीं पड़ता, अन्न वस्त्र का भाव जिन्हें कभी नहीं सताता, पंखे की हवा खाते हुए उन्हें वैसी कल्पना सुनकर प्रतीत भी हो सकती है। मुझे भी एक दिन प्रतीत होती थी, परंतु कठोर सत्य के सामने वो अब विकृत परिहास मालूम होती है। मेरी उस बात से संभवतः मेरे मित्र को कुछ दुख हुआ होगा, परंतु निर्धनता से पिस जाने के कारण मेरी भूख से उस दिन वो बात निकल पड़ी थी। उसे वो कैसे समझेगा? प्रातः काल उठकर गुप्त रूप से पता लगाकर जिस दिन मैं जान पाता था कि घर में सबके लिए पर्याप्त खाद्य नहीं है और हाथ में पैसा भी नहीं है, उस दिन मां से मुझे निमंत्रण है कहकर मैं बाहर निकल जाता था और किसी दिन थोड़ा बहुत खाकर और किसी दिन वैसे ही रहकर बिता देता था। आत्माभिमान के कारण मैं उस बात को किसी से कह भी नहीं सकता था। धनी मित्रों में कोई कोई पहले की तरह मुझे अपने घर या बगीचे में ले जाकर संगीत आदि के द्वारा उनका आनंद वर्धन करने का अनुरोध करते थे। लाचार होकर कभी कभी मैं उनके साथ जाकर उनका मनोरंजन करने में प्रवृत्त होता था, किंतु मन की बात उनसे कहने की इच्छा नहीं होती थी। वे भी स्वतः प्रवृत्त हो उस विषय को जानने की चेष्टा नहीं करते थे। उनमें कदाचित कभी कोई कह देता था, तुझे आज बहुत ही उदास और दुर्बल क्यों देखता हूं, बता दो। केवल एक मित्र ने मेरे अनजाने में दूसरे से हमारी आर्थिक स्थिति की बात जानकर गुमनाम पत्र द्वारा मेरी माता को समय समय पर रुपया भेजकर मुझे चिर ऋणी किया था।
1: उन्हीं दिनों नरेंद्रनाथ को कई तरह के अच्छे और बुरे अनुभव हुए, पर इतने परेशान रहने के बाद भी उन्होंने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने उन कठिन दिनों को याद करके कहा था,
0: यौवन में जो बाल्य बंधु चरित्रहीन होकर असत उपाय से कुछ धन कमा रहे थे, उनमें से कोई कोई मेरी निर्धनता का हाल जानकर मुझे अपने दल में खींचने की चेष्टा कर रहे थे। उनमें जो लोग उससे पहले मेरी तरह एकाएक अवस्था के परिवर्तन से हीन वृत्ति का आलंबन करने के लिए बाध्य हुए थे, मैंने देखा कि वे यथार्थ में ही मेरे लिए दुखित हुए थे। मौका पाकर अविद्या रूपिणी महामाया ने भी मेरे पीछे पड़ने में कसर नहीं की। एक धनी महिला की दृष्टि मेरे ऊपर पहले से ही पड़ गई थी। इसी मौके पर उसने प्रस्ताव भेजा कि मैं चाहूं तो उसकी संपत्ति के साथ उसे अपनाकर अपने दुख क्लेश को दूर कर सकता हूं। तीव्र अवज्ञा और कठोरता दिखाकर मैंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। एक दूसरी महिला जब मुझे लालच दिखाने आई तो मैंने कहा था, देखो बच्ची, इस मिट्टी के शरीर से सुख के लिए तुमने अब तक न जाने क्या क्या किया है। अब तो मृत्यु सामने है, उस पार जाने का क्या कुछ संबल भी ग्रहण किया है। हीन बुद्धि छोड़कर भगवान को पुकारो।

0: व्यक्तिगत मित्रों से उन्होंने पूरे तौर पर मुक्ति नहीं पाई। एक संध्या को उनके कुछ मित्रों ने गाड़ी ठीक कर उन लोगों को कलकत्ते के समीप स्थित एक उद्यान भवन ले जाना चाहा। इस सांध्य भ्रमण के स्वरूप के संबंध में नरेंद्रनाथ को कोई ज्ञान नहीं रहने के कारण वे सहमत हो गए तथा उपयुक्त समय में सबके साथ आनंद पूर्वक गाड़ी से आकर एक उद्यान भवन के फाटक पर उतरे।
1: भीतर प्रवेश कर उन्होंने देखा कि वहाँ एक सांध्य उत्सव का आयोजन हुआ है। आनंद भोग करने के लिए ही वहाँ आगमन हुआ था, अतएव काफी गाना बजाना हुआ। नरेंद्र ने भी यथारीति उसमें योगदान दिया। थोड़ी देर बाद उनके थकान अनुभव करने पर मित्रों ने एक बगल का घर दिखाकर कहा कि वे वहां जाकर विश्राम कर सकते हैं। वे उस कमरे में अकेले सोए थे, तभी मित्रों द्वारा प्रेरित एक युवती उस कमरे में उपस्थित हुई। इसके पीछे कोई षड्यंत्र है ऐसा नरेंद्रनाथ समझ नहीं पाए और उन्होंने इस आगमन को सरल भाव से ही ग्रहण किया और युवती इसी घर की कोई होगी ऐसा सोचकर उसके साथ बातचीत करने लगे।
0: वो युवती भी अपने दुख विपद से ग्रस्त जीवन की कई घटनाएं सुनाने लगी। इस प्रकार नरेंद्रनाथ के समग्र मन और सहानुभूति पर उसने अधिकार कर लिया है सोचकर क्रमशः उसने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया तथा उस घर में आने का अभिप्राय भी खुलकर कह दिया। इस प्रकार उपस्थित विपत्ति का परिचय पाकर नरेंद्र झट उठ खड़े हुए और बाहर जाने के लिए पांव बढ़ाकर बोले,
2: क्षमा कीजिएगा, मुझे अभी जाना होगा। आपके प्रति मेरी आंतरिक सहानुभूति है और आपका कल्याण हो यही मैं चाहता हूं। आप समझ लें कि इस प्रकार जीवन व्यतीत करना पाप है, तो एक न एक दिन आप इससे निश्चित ही उद्धार पा जाएंगे।
1: नरेंद्रनाथ चले गए। वो युवती भी हत बुद्धि होकर उन मित्रों के निकट लौट कर बोली, एक साधु को लुभाने के लिए भेजकर आप लोगों ने खूब मजाक किया। ये घटना एक ओर जिस प्रकार नरेंद्रनाथ के चरित्र की दृढ़ता दिखाती है, उसी प्रकार दूसरी ओर प्रमाणित करती है कि उनका गुरु बल कितना अमोघ था।
0: इतना दुख झेलने के बावजूद नरेंद्र की ईश्वर भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे ईश्वर का नाम लेकर हर प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ते रहे। एक दिन सुबह होते ही भगवान का नाम लेकर वे जागे।
3: नारायण नारायण, शिव शिव, हर हर महादेव।
4: चुप रहे बिले, बचपन से ही रटता रहता है भगवान भगवान। तेरे भगवान ने तेरे लिए किया ही क्या? क्या यही दिन देखने के लिए हमने उनकी पूजा अर्चना की, उन्हें सिर आंखों पर बिठाया? खबरदार खबरदार जो उनका नाम लिया। छोटे छोटे बच्चों को मैं 2 जून खाना तक नहीं दे पा रही हूँ। तेरे भगवान क्या अंधे हैं, बहरे हैं, कुछ नहीं दिखता उन्हें?

0: ये शब्द नरेंद्र को लग गए और उनका अभिमान प्रचंड रूप से जाग उठा। वे सोचने लगे,
1: तो क्या सचमुच में भगवान निर्धन का कातर क्रंदन नहीं सुनते या सुनना नहीं चाहते? क्या वे निश्चल निर्विकार होकर हाथ समेट कर इस निष्ठुर सृष्टि की दानवी लीला देख रहे हैं? जो भगवान इस लोक में शुद्धार्थों को एक टुकड़ा रोटी देखकर जीवित नहीं रख सकते, वे ही अंत में अक्षय स्वर्ग में अनंत सुख का अधिकारी बनाएंगे, ये कैसे संभव है? तो क्या ईश्वर का नाम कुछ भी नहीं है? हाँ है, पर वो मंगलमय या दयामय नहीं है, वो निर्विकार है। दुख के क्रंदन से उसका हृदय नहीं पिघलता, वो हृदयहीन है।
2: नरेंद्र हताश होकर कभी कभी अपनी ईश्वर संबंधी इस नवीन धारणा की बात अपने दोस्तों से कह देते। इससे कई लोगों को यह धारणा हो गई कि नरेंद्रनाथ नास्तिक हो गए हैं। ये चर्चा श्री रामकृष्ण के कानों तक पहुंची, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उल्टे निंदकों को फटकारा।
3: चुप रहो मूर्खों, वो कभी ऐसा नास्तिक नहीं बन सकता। फिर कभी ऐसी बात करोगे तो मैं तुम लोगों का मुंह तक नहीं देखूंगा।
4: पर गुरुजी,
3: कहा ना चुप रहो, तुम लोग उसे क्या समझ पाओगे? वो बहुत महान व्यक्ति है। वो जिस विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, कोई और होता तो पागल हो जाता या आत्महत्या कर लेता, पर वो लड़े जा रहा है। उसे तो अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। भगवान तो उसकी परीक्षा ले रहे हैं।
0: उन दिनों नरेंद्र हताशा की चरम सीमा पर पहुंच गए थे। एक दिन वे दक्षिणेश्वर गए। रात भर रामकृष्ण देव और नरेंद्र में बातचीत होती रही। सुबह जब नरेंद्र घर लौटे तो उनका मन काफी शांत हो चुका था। इन दिनों वे संन्यास लेने के बाद भी गंभीरता से सोच रहे थे, पर गुरु ने न जाने क्या क्या बातें समझाई कि शिष्य ने एक बार फिर उठ खड़े होने का निश्चय किया और हार नहीं मानने की ठान ली।
2: देखा गया है कि हमारे देश में बहुधा नाबालिग और विधवा की संपत्ति को हड़पने के प्रयत्न होते रहते हैं। खानदान वालों के षड्यंत्रपूर्ण मुकदमे के लिए नरेंद्रनाथ तैयार होने लगे। दावेदारों ने मकान का बंटवारा कर लेने के लिए अदालत से सहायता मांगी। उनका उद्देश्य था मकान के अच्छे हिस्से पर अधिकार प्राप्त करना। माता भुवनेश्वरी निरुपाय हो गई। विपत्ति पर विपत्ति के आघात से मर्माहत सिंह की तरह नरेंद्रनाथ अंतिम शक्ति के साथ विपक्ष पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। उनका प्रण था अन्याय के सामने, असत्य के सामने कभी सर न झुकाएंगे। अदालत में मुकदमा चलने लगा। नरेंद्र के स्वर्गीय पिताजी के मित्र प्रसिद्ध बैरिस्टर उमेश चंद्र बंदोपाध्याय ने स्वयं प्रवृत्त होकर मुकदमा चलाने का भार ले लिया। इस मुकदमे से संबंधित कुछ घटनाओं में नरेंद्र की तीक्ष्ण बुद्धि, चरित्र की दृढ़ता आदि का परिचय मिला था।
0: जब विपक्ष के वकील नरेंद्रनाथ से जिरह कर रहे थे, उस समय नरेंद्रनाथ के निर्भीक, स्पष्ट, धीर और गंभीर उत्तर सुनकर, ये जानकर कि वे कानून पढ़ रहे हैं, जज साहब हर्ष से बोल उठे, युवक, समय आने पर तुम एक अच्छे वकील बनोगे। जज साहब ने सारी स्थिति समझकर नरेंद्र के पक्ष में ही राय दी। मुकदमे में जीत का समाचार पाते ही नरेंद्रनाथ आनंद के साथ अदालत से माँ के पास दौड़े जा रहे थे कि विपक्ष के अटर्नी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका और आनंद के साथ कहा, जज साहब से मैं भी सहमत हूँ। कानून ही आपका योग्य क्षेत्र है, मैं आपका उज्जवल भविष्य चाहता हूँ। नरेंद्र दौड़ते हुए घर वापस चले गए।

0: माँ, माँ कहाँ हो? जल्दी आओ।
1: क्या हुआ?
0: जल्दी आओ।
1: बड़ा खुश दिख रहा है।
0: माँ माँ, मुझे पहले प्रणाम कर लेने दो।
1: अरे पागल, ये क्या कर रहा है? कुछ बताएगा भी या?
0: माँ, तुम्हारा मकान हमारा मकान हमारा ही रह गया।
1: सच? हे भगवान, तुमने मेरी लाज रख ली।
0: भगवान, अब कौन ले रहा भगवान का नाम? मेहनत वकीलों ने की और श्रेय भगवान को दे दिया।
1: बेटा, हर काम के लिए भगवान खुद थोड़े ही आते हैं, किसी किसी के द्वारा करवा लेते हैं।
0: और उस दिन भगवान का नाम लेने पर जो मुझे सुबह सुबह डांट दिया था, उसका क्या?
1: मुझे माफ करना बेटा, बच्चों को भूख से तड़पते देख मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। लेकिन भगवान तो दयालु है नरे, अब अपने दुख के दिन जल्द ही कट जाएंगे। देखना, आज ही से उसकी शुरुआत हो गई।
0: माँ, बाकी सब लोग कहाँ हैं? उन्हें भी तो शुभ समाचार दे दो।
1: हाँ, चल, सब अंदर है।

0: दिन बीतने लगे, पर नरेंद्र की सांसारिक परिस्थिति में कुछ विशेष सुधार न हुआ। लोग उन दिनों भुवनेश्वरी देवी की प्रशंसा करते थे कि एक दिन इस महिला को 1000 रुपए घर के खर्च के लिए मिला करते थे और आज सिर्फ 30 रुपए में वे बच्चों का पेट भरती हैं, घर चलाती हैं और उस पर भी कभी विचलित नहीं होती थी। बड़े बेटे नरेंद्र को नौकरी नहीं मिल रही थी, हालांकि वे जी जान से नौकरी ढूंढ रहे थे।
1: एक दिन नरेंद्र ने सोचा शायद रामकृष्ण देव कुछ उपाय बता दें। ये सोचकर वे दक्षिणेश्वर गए। रामकृष्ण उन्हें देख आनंद विभोर हो उठे। नरेंद्र ने कहा,
2: महाराज, मेरी माँ और भाई बहनों को 2 आना अन्न खाने का मिल सके, इसके लिए आप अपनी काली माता से कहिए ना।
3: मैं कभी काली माँ से कुछ नहीं मांगता, तुम लोगों का भला हो इसीलिए एक बार अनुरोध किया था, परंतु तू तो माँ को मानता ही नहीं, इसीलिए माँ तेरी बातों पर ध्यान नहीं देती।
1: घोर निराकारवादी नरेंद्र की साकार में जरा भी निष्ठा न थी। मूर्ति पूजा विरोधी नरेंद्रनाथ इस परिस्थिति में क्या करेंगे? अविश्वास? अब तो अविश्वास के दिन चले गए थे, तो फिर क्या विश्वास? पर क्या बिना प्रमाण के ही साकार में विश्वास कर लेंगे? ये कैसे संभव है? नरेंद्रनाथ सिर झुकाकर रह गए।
0: पर श्री रामकृष्ण उनके लिए क्या नहीं कर सकते थे? उन्होंने जिसके दुख को जानकर स्वयं भिक्षा के लिए निकल पड़ने का संकल्प किया था, क्या वे उसी नरेंद्र के अनुरोध की उपेक्षा कर सकते थे? परंतु श्री रामकृष्ण भी छोड़ने वाले न थे। वे शिष्य की परीक्षा लेने के लिए बार बार कहने लगे,
2: माँ विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, माता तुम्हारी कृपा से सदा ही तुम्हें देख सकूं।
0: नरेंद्र लौट आए। श्री रामकृष्ण ने पूछा,
3: क्या मांगा?
0: तब कहीं उन्हें अपने पूर्व संकल्प की याद आई। अरे, उन्होंने ये क्या किया? श्री रामकृष्ण के आदेश पर वे पुनः मंदिर में गए। दूसरी और तीसरी बार भी वे मुंह खोलकर मां के चरणों में

0: सांसारिक सुख के लिए प्रार्थना न कर सके। जन्म से ही वैरागी की ओर झुका हुआ उनका मन बीच बीच में सांसारिक दुख कष्टों से विचलित होने पर भी पार्थिव भोग सुख की कामना से क्षुब्ध नहीं हुआ था। वे कैसे अन्न वस्त्र के लिए प्रार्थना करते? ऐसा कौन मूर्ख है जो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर अमृत फल को छोड़ कुम्हड़े के लिए प्रार्थना करेगा?
1: अंत में रामकृष्ण देव ने हंसकर नरेंद्र से कहा,
2: तू जब 3 बार में भी काली माता से मांग ना सका तो तेरे भाग में सांसारिक सुख है ही नहीं, फिर भी तुम लोगों को सूखी रोटी और मोटे वस्त्रों की कमी कभी नहीं होगी।
0: नरेंद्र को आश्वासन मिला। उन्हें अपने स्वयं के लिए तो सांसारिक सुख की आवश्यकता थी ही नहीं।
1: उसी दिन से नरेंद्र के जीवन में एक नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ। नरेंद्रनाथ के परिवार का अभाव अनेकांश में दूर हुआ। अटर्नी ऑफिस में काम करके और कुछ पुस्तकों का अनुवाद करके नरेंद्र जीविका चलाने लगे। अंत में स्थायी रूप से विद्यासागर महाशय के स्कूल में वे अध्यापन कार्य करने लगे।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। Lifestyle is not only about what we are eating, drinking, wearing. Lifestyle is about what we are thinking, speaking, behaving. That's my lifestyle.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आला आला आला,
3: अहो काय आला
2: आला आला, आवाज रेडियो चा

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: मेक इन इंडिया। पात्र परिचय: वेदांत, यश, आदित्य प्रकाश, आकाश, आदित्य, पंकज, सैंडी, उन्नति। लेखिका: सुधा पुरी।

0: जरा उसे तो देखो कितना सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है।
1: अरे भाई अभी छुट्टियां चल रही है, मजे करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
2: पर अब थोड़ा ही तो समय रह गया है, काम भी तो शुरू करना है जो टीचर्स ने दिया हुआ था।
3: हमारी टीचर ने तो बहुत ही अजीब काम दिया है।
4: क्या
3: कहा है? मेक इन इंडिया क्या है इसकी जानकारी हासिल करो और क्लास को समझाओ।
5: ये अच्छा तरीका है, बजाय डायरेक्टली कोई टॉपिक समझाने के हमें ही इसकी तैयारी करके क्लास में समझाने को कहा है। हमें भी तो नीरू मैम पढ़ाती है, हमें भी यही काम दिया है।
1: लेकिन आइडिया बुरा नहीं है।
4: क्या मतलब?
1: अरे भाई कहते हैं ना सबसे अच्छा

0: तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। ऐसा करते हैं, इस टॉपिक के कुछ कुछ हिस्से बांट लो, फिर एक दूसरे को अपनी अपनी बात समझा दो।
1: वाह, क्या आइडिया है दीदी। इससे तो हमारी कुछ पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी
2: और एक दूसरे से समझेंगे तो बात जल्दी समझ भी आ जाएगी।
3: बल्कि अगर हम सब लोग कुछ कुछ बताएं तो गेम का गेम और ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा।
1: कैसे?
0: देखो, हम 8 लोग हैं ना।
2: 8।
0: एक जना टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा।
3: अच्छा।
0: दूसरा उसका मतलब डिटेल में बताएगा।
4: हाँ ठीक है, जैसे एक बताएगा कि इस प्रोग्राम के लक्ष्य क्या है।
0: राइट।
3: और एक बताएगा उन लक्ष्यों तक पहुँचने के साधन क्या है।
2: समझ गया।
5: और एक की रास्ते में रुकावटें क्या हैं?
1: और फिर एक ये बता सकता है कि उनको दूर करने के लिए किन किन स्टेप्स को लेना पड़ेगा।
6: काफी मुश्किल काम लग रहा है।
0: अरे सब मिलके करो ना, सबके हिस्से थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है।
2: पर जितना भी हिस्से में आए, जरूरी बात ये है कि सभी को इसके बारे में जानकारी तो पूरी रखनी होगी।
6: सिवाय उसके जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो इंट्रो देख कर सीट पर जाकर सो सकता है।
0: अच्छा ये तो बताओ, बिना कुछ ज्यादा पढ़े इसके बारे में जस्ट लाइक दैट हमें इसकी कितनी जानकारी है?
4: भाई पहली बात तो मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाओ।
3: किसे?
2: ए स्टॉप जोकिंग, मतलब भारत में निर्माण करो, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना।
1: तो भारत में ही तो बन रहा है ना अपनी जरूरत की चीजें।
0: सॉरी बच्चों, आपकी जानकारी काफी लिमिटेड है, तो आपके लिए आज का होमवर्क यह भी है कि अपने घर के कई इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, आप पाएंगे कुछ मेड इन चाइना है तो कुछ मेड इन कोरिया।
5: हाँ और दूर क्यों जाना, दीदी के हाथ के इस मोबाइल के पीछे ही देख लो।
2: हाँ हम तो ये कभी नोटिस ही नहीं करते।
6: ऐसे तो कई बच्चों के खिलौने और स्टेशनरी आइटम्स,
3: स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब बाहर के देशों से हमारे देश में आया है।
0: अरे यही नहीं, साइकिल, कार, ट्रक।
3: ओह गॉड, ध्यान से देखो तो, यू आर राइट, कितनी चीजें अभी भी हमारे देश में बाहर से आती हैं।
4: क्यों भाई क्यों, हम दूसरे देशों से क्यों खरीदें, अपने देश में क्यों ना बनाएं?
2: और क्या, अब क्या नहीं है हमारे देश में, सब तरह की शिक्षा, जानकारी, कच्चा सामान, मशीनें।
5: फिर ऐसा क्यों हो रहा है?
3: क्या? यही कि हम दूसरे देशों से इतना कुछ निर्यात करते हैं।
0: देखा नहीं, सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने जरूरत की चीजों के लिए मार्केट को कैप्चर किया है तो वो है चाइना।
2: उन्होंने तो हमारे भगवानों की मूर्तियों, त्योहारों में काम आने वाली चीजों तक को नहीं छोड़ा।
3: हाँ मजेदार बात तो ये है कि दिवाली के दिनों में हमारी गणपति चाइनीज लोगों की तरह के नए नक्श वाले होते हैं।
1: हाँ देखा है मैंने भी बाजार में चाइनीज गणपति।
5: पर कहते हैं कि चाइना जिस चीज को जितने भी घंटों में बनाता है, भारत उसे दुगने से भी ज्यादा समय में बनाता है।
2: एक नंबर के आलसी हैं हम।
0: हाँ तो चाइनीज माल की गारंटी भी तो नहीं होती।
5: तो हमारी चीजें खराब नहीं होती क्या?
4: चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सब लाइब्रेरी में जाकर कुछ मटेरियल ले आते हैं, कल चलेंगे। प्रिंसिपल ने कहा था कि छुट्टियों में लाइब्रेरी खुली रहेगी बच्चों के लिए।
3: पर जरा सुनो तो, ये रेडियो पर क्या खबरें आ रही हैं?
7: ये आकाशवाणी है, सुनिए आज की ताज़ा खबरें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मेक इन इंडिया अभियान एक नई योजना है, जिसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनियों के साथ ही बहुउद्देश्य कंपनियों को भी प्रसन्न करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा एक शुरुआती अभियान चलाया जा रहा है। भारत में रोजगार लाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया ये एक प्रयास है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा इस मुहिम की शुरुआत की गई थी और अब कुछ देश विदेश के।
1: ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, जो भी मैं सोचता रहता हूँ वही सामने आ जाता है किसी भी रूप में।
5: हाँ मेरे साथ भी होता है, कभी कभी तो लगता है जैसे कोई मेरे विचार पढ़ रहा हो।
1: कहीं इसीलिए तो नहीं कहा जाता
3: क्या
0: कि केवल शब्दों पर ही नहीं अपने विचारों पर भी ध्यान दो?
4: बल्कि मेरी मम्मी कहती हैं कि विचारों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही कभी न कभी शब्द बन जाते हैं।
2: कहते हैं कोई भी प्रश्न अगर मन में हो और हम किसी भी अच्छी पुस्तक को उठाकर बीच में से पढ़ने लगे तो हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है।
6: ये बात तो तुम ही कह सकते हो, तुम्हें पुस्तकें पढ़ने का इतना शौक जो है।
0: चलो तुम सबको काफी कुछ पता चल गया है मेक इन इंडिया पर।
4: हाँ आप कोई पूछे तो सिर्फ इतना नहीं कहेंगे, भारत में बनाओ।
3: तो क्या कहोगे?

0: ये कहेगा भारत में बनाकर और देशों में बेचो, देश को और धनी बनाओ।
1: पक्का व्यापारी बनोगे?
2: व्यापारी तो बाद में बनेंगे, अभी तो हम सब ने घर में ही पाठशाला खोल ली है और बन गए हैं झूठ मूठ के शिक्षक।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो,

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुन ही लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: ओम शांति। अब एक नई ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हमने जहाँ बात की लाइफ स्किल्स की, यानी कि जीवन की वो कौशल, वो कलाएं जो शायद हम नहीं जान पाए थे, और तभी जीवन जो था वो ऐसा नीरस लग रहा था, वैक्यूम लगता था, खाली खाली लगता था, दुख दर्द हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसमें एक बात, एक ऐसी स्किल जो हमने समझी कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार वो बहुत पावरफुल हैं, हम उनके थ्रू, उस ऊर्जा के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। बात एक और जो हमने समझी, उन्हें क्रिएट करने का मादा की शक्ति मेरे पास है, यानी अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स मैं खुद क्रिएट करता हूँ, सिचुएशन कोई भी हो। हमने कई तरह के थॉट्स के बारे में बात की, किस तरह के थॉट्स हैं, 7 types of thoughts जो हम क्रिएट करते हैं, जिसमें सबसे पावरफुल थे टॉक्सिक थॉट्स, यानी कि पॉइजनस थॉट्स, वो थॉट्स जो मुझे साफ नज़र आते हैं। कई और तरह के थॉट्स थे, उन पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, नेगेटिव थॉट्स, आपने कहा टॉक्सिक थॉट्स, और उसके बाद बात की थी नेगेटिव थॉट्स की। टॉक्सिक थॉट्स, अगर हम एक बार और उसको क्लियर कर लें, कि वो जो बहुत पावरफुल होते हैं, चाहे वो गुस्से के थे, नफरत के थे, कई बार देखा जाए तो हर्ट के थे, और थोड़ा सा जो हमें दिख रहे थे एक्सप्रेशंस, उसके बाद नेगेटिव में आपने कहा था इरिटेशन भी शामिल है, डर, एंग्जाइटी, घबराहट, और ना सिर्फ ये कि वो दूसरा कुछ गलत कर रहा है, बल्कि ये सारी चीज़ें भी उनमें शामिल हो रही थी। डॉक्टर पटेल, लेकिन कहा जाता है जिन्हें हम नेगेटिव थॉट्स कह रहे हैं अभी, कि थोड़ी सी घबराहट, कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ यू नो एग्ज़ाम है, उससे पहले की थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा स्ट्रेस, वो ज़रूरी है, नहीं तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती।
2: लेकिन फिर भी वह नेगेटिव थॉट अगर है तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट है। एक्चुअली जो हम नाम देते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, उसको घबराहट नहीं कहो, एंग्जाइटी नहीं कहो, उसे मोटिवेशन कहो। एक डोरोथॉन्स ग्राफ माना गया है जो कहता है कि जब व्यक्ति में मोटिवेशन है, प्रेरणा है, तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है, लेकिन जब वो नेगेटिविटी का रूप ले लेता है तो उसका परफॉर्मेंस भी नीचे आ जाता है। जैसे थोड़ा सा उससे अगर कंसर्न है, एग्जाम के बारे में कंसर्न है, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन अगर वो डर का रूप ले ले तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसलिए क्या होना चाहिए कि भले एग्जाम है तो भी पॉजिटिव विचार आए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है। कहते हैं आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन आई क्यू, तो मैं कर सकता हूँ, वह थॉट होना चाहिए, तब परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर एंग्जाइटी का रूप ले लिया तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव थॉट्स ही जरूरी।
1: हाउ विल आई नो वेदर माय कंसर्न और माय एंग्जाइटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कैसे पता चल पाएगा?
3: डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर फीलिंग।
2: या
3: हाउ आर यू फीलिंग, इमीडिएटली पता चलता है कि अगर वो नेगेटिव है, डाउट वाली है, फियर ऑफ फेलियर की है, फियर ऑफ नॉट एक्सेप्टेंस,
1: वो जो वो स्टमक में कुछ होना शुरू हो जाता है,
2: वो दिमाग में भी होगा।
3: ये तो फिजिकल लेवल पर है, बट अदरवाइज इमोशनल लेवल पर भी तो फीलिंग आ जाती है ना। यू कैन मेक आउट वेदर यू आर फीलिंग नाइस और यू आर नॉट फीलिंग वेरी नाइस, वो पता चल जाएगा।
1: कॉन्फिडेंट, अगर एग्जाम में या परफॉर्मेंस से पहले मन अच्छा है, मजा आने वाला है या मजा आ रहा है, देन इट इज लाइक पॉजिटिव, और अगर लग रहा है कि नहीं, मैं से नहीं हो पा रहा, घबराहट है या हो पाएगा या नहीं, तब नेगेटिव।
3: एंड दूसरा भी होगा कि अगर पॉजिटिव है, दे आर स्लोअर द थॉट्स, दे आर फ्यूअर इन नंबर एंड दे आर स्लोअर, तो आपको यहाँ पर काफ़ी साइलेंस या स्टेबिलिटी जैसा लगेगा। लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो बहुत फास्ट चलते हैं, कि उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको वो प्रेशर एक्सपीरियंस होगा, सर भारी जैसी फीलिंग आएगी, आप थिंकिंग टू मच, पता चलेगा। रिलैक्स्ड फील करेंगे इफ इट्स पॉजिटिव, डिस्टर्ब्ड फील करेंगे इफ इट्स नेगेटिव, तुरंत पता चल जाता है। जस्ट उस समय परिस्थिति को ना ब्लेम करें, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि दिस इज व्हाट आई एम क्रिएटिंग, और अगर मैं नेगेटिव क्रिएट कर रहा हूँ उसका मेरी बॉडी पर भी असर आएगा, उसका फिर मेरे परफॉर्मेंस पर असर आएगा, सो लेट मी सिट बैक, चेंज माई थॉट्स, चेंज, क्योंकि थॉट क्या होगी, जैसे आपने कहा स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जाम है, इट्स नॉर्मली फियर ऑफ फेलियर, कि अगर नहीं हुआ ठीक तो, अगर पब्लिक को या जो वॉच कर रहे हैं उनको नहीं पसंद आया तो,
1: बहुत लोग डिपेंड कर रहे हैं इस पे, you know, बहुत चीजें होती हैं।
3: तो ये सारी तो फियर ऑफ फेलियर की है ना, फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो ये सारी थॉट्स पॉजिटिव कैसे हो सकती हैं? एंड क्योंकि फिर मैंने परफॉर्मेंस करने से पहले जो भी, इवन फाइल गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आज हमें इंटरव्यू पे जाना है, प्रेजेंटेशन करनी है कॉलेज में, कोलीग्स के सामने, क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन करनी है, ये सारी थॉट्स अगर नेगेटिव होंगी तो मैं ऑलरेडी यू नो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एक्चुअली मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एंड फिर उसका मेरी बॉडी लैंग्वेज पर, मेरे फेस पर, एंड फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइब्रेशंस जो सामने जाएंगे, अगर मैं पहले ही आपको ये वाइब्रेशंस भेजूँ, आप मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपको नहीं अच्छा लगने वाला है जो मैं करने वाली हूँ आज, ऑलरेडी आई एम सेंडिंग दैट एनर्जी एंड ऑलरेडी आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि आज नहीं पसंद आने वाला है जो मैं करूँगी, तो एज आई थिंक सो विल हैपन, वो हो जाता है फिर।
1: तो डॉक्टर पटेल, ये तो रही बात नेगेटिव थॉट्स की, हमने और कई तरह के थॉट्स की बात की थी, वेस्ट थॉट्स थे, उनमें क्या क्या शामिल है?
2: वेस्ट थॉट जो है वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो टाइम वेस्टर है। कई बार आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो और एडवर्टाइजमेंट को पढ़ रहे हो, तो इट इज योर वेस्ट ऑफ टाइम, भले वो कंपनी को फायदा होगा आपको तो लॉस होना है, तो इसलिए इस प्रकार के विचार भी टाइम वेस्ट
1: है। हम क्या करें, मतलब आप सड़क पे जा रहे हैं, वो दिख रही है चीजें, तो हम पढ़ेंगे
2: नहीं, लेकिन तो आप और कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग करिए।
1: अच्छा, पर वो फिर एंग्जाइटी नहीं होगी, वो फिर बार बार फ्यूचर के बारे में सोचते जाना
2: है। प्लानिंग आप कर रहे हैं कि अब जाकर के मुझे क्या करना है, और कोई काम करना है उसके बारे में कुछ सोचिए, तो वो एक्चुअली प्रोडक्टिव थॉट होगा, नहीं तो सिर्फ एड को पढ़ना हो तो वेस्ट थॉट हो गया। और भी एक बात भी, लोग आपस में बैठ के गॉसिपिंग करते हैं एक दूसरे के बारे में कुछ सोते, बोलो नेचुरल करो, नेगेटिव नहीं भी है, नहीं ऐसे ही कुछ चर्चा कर।
1: Why do we enjoy it so much? I wanted to talk about it. It means waste जब हम क्रिएट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आनंद क्यों प्राप्त कर रहे होते हैं?
2: There's a spice in it, in fact. और ये भी कहेंगे, इसको एक प्रकार से तो नेगेटिव भी कह सकते कि भी किसके बारे में सोच करके हम आनंद ले रहे हैं, उसके अवगुण के बारे में कोई डिस्कशन करते हमको अच्छा लग रहा है, तो वेस्ट तो है ही है, साथ साथ कहेंगे वो नेगेटिव भी है।
1: नहीं, आई अंडरस्टैंड कि दीज आर वेस्ट थॉट्स, खासकर गॉसिप पे तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, अननेसेसरी इतना टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, बट हम उसमें सक्ड इन क्यों होते हैं? व्हाट इज इट दैट मेक्स अस टॉक अबाउट अदर पीपल एंड यू नो लाइक कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम को मजा
3: मेक्स मी फील सुपीरियर। जितना मैं अपने आसपास के लोगों के लिए उनकी निंदा कर रही हूँ, एंड फिर सब लोग भी उसमें जुड़ रहे हैं, और हम क्या गॉसिप मतलब क्या, कमजोरियाँ, व्यर्थ चिंतन, उसमें कभी भी विशेषताएं नहीं डिस्कस हो रही हैं। गॉसिप मीन्स कि इट्स अ नेगेटिव थिंकिंग, तो दूसरों की नेगेटिव कहीं ना कहीं हम जानबूझ के नहीं कर रहे कि हाँ ये मुझे अच्छा फील करा रहा है, बट एक्चुअली सटल वे में दूसरे को नीचे खींचना, मुझे फील होता है कि हाँ आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, आई एम बेटर देन दिस पर्सन, सो आई एम अ नाइस पर्सन, तो दिस इज ट्राइंग टू यू नो स्टिम्युलेट माई सेल्फ टू फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, दिस इज अ वेरी सटल वे ऑफ मेकिंग योर सेल्फ सुपीरियर टू अदर पीपल।
1: लेकिन हम तो पहले जो बात की कि फील गुड, यू नो जो थॉट्स आपको गुड फील कराएं, दे आर ओके,
2: नॉट एट समवन्स कॉज,
1: नहीं पर उसको तो पता नहीं चल रहा ना,
3: एनर्जी तो गई ना,
2: वो एनर्जी भी जाएगी वहां तक।
3: हाँ, बात तो जाएगी, लेकिन एनर्जी कितनी गई, और मैं इंस्ट्रूमेंट बनी, अगर मेरे अंदर आपके प्रति कोई नेगेटिव थॉट चल भी रहा है, अगर मैंने उनको पांच लोगों के साथ शेयर किया, फिर पांच लोगों ने भी उस तरह की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, ये सारी अगर मैं निमित्त बनी आप तक भेजने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा कार्मिक अकाउंट क्या क्रिएट हो रहा है? पांच लोग अगर आपको इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, रिटर्न भी मैंने क्रिएट किया था, वो जो बीज एंड द एप्पल, दिस इज दैट, कि वो जो बीज बोया वो मैंने बोया नेगेटिव, एप्पल सारे कैसे निकले, ये सारे सड़े हुए निकले, जिम्मेवार कौन? आई हैव टू कीप चेकिंग द सीड एट एवरी पॉइंट कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। फिर आप बैठे होंगे कभी एंड आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ आज, पता नहीं लेकिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा, I'm not feeling very nice today.
1: लेकिन मैंने कोई उनकी कोई ऐसी बुराई ना की हो, I'm actually going to the psychology of the gossip also. I'm just having fun.
2: इसलिए तो waste thought का ना, हम negative नहीं कह रहे हैं, बोलो नेगेटिव एक सटल डिमार्केशन लाइन है, वो नेगेटिव हो जाता है इमीडिएटली, लेकिन फिर भी आइडियली एज यू आर सेइंग कि भी कोई बुराई नहीं कर रहे, सिर्फ बस ऐसे ही हम टाइम पास कर रहे हैं, तो भी तो टाइम वेस्टर हुआ। एक्चुअली तो हमें कुछ प्रोडक्टिव थॉट होना चाहिए, कि जिससे स्वयं का सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, समाज में कोई फायदा हो, औरों को कुछ बेनिफिट हो,
1: वो बातें इतनी बोर क्यों लगती हैं? ये बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो बातें बोर लगती हैं। अगर कोई अब ये सब बातें हो रही हैं और कोई आके कहे कि नहीं आप, हम समाज के लिए कुछ क्यों नहीं सोचते, हम अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए क्यों नहीं सोचते, वी डोंट लाइक दैट
3: बिकॉज देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपके बारे में बैठकर एक घंटा बात कर सकती हूँ, एक पूरा दिन भी बात कर सकती हूँ, उसमें मुझे थोड़ी कुछ करना पड़ता है, सिर्फ आपके बारे में बात करना एंड इट्स मेकिंग मी फील गुड। लेकिन जैसे ही अपने बारे में, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, विच मीन्स देन आई विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो दैट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन रेडी है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? इट्स ईजी बैठ कर ये इनसे, इनको ऐसे करना चाहिए। इवन अगर समाज के बारे में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं आजकल? देखो समाज में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, इट्स ऑलवेज अबाउट दूसरों को क्या क्या करना चाहिए,
1: क्रिकेट,
3: एक्टर्स,
1: फिल्म, तो इट मीन्स ये सब उस कैटेगरी में।
2: हाँ, सब वेस्ट हुआ क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है,
3: क्योंकि और मैं उन बातों पर चिंतन कर रही हूँ जो मेरे कंट्रोल में भी नहीं
1: है। पर कई बार कहा जाता है कि फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसी ये सारी बातें करते हैं आप तो आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है।
3: तो फिर उसके बाद सिर्फ ये चेक करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद रिजल्ट क्या निकला, इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी क्या थी। वही जैसे गिरीश भाई ने कहा, नेगेटिव पढ़ रहे हैं, नेगेटिव भर रहे हैं, थॉट भी नेगेटिव होगा। इससे अच्छा थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्म करें, अभी भी बातें करें बैठकर, चाहे औरों की भी बातें करें, एक दूसरे की भी करें, अपने भी करें, क्वालिटी विशेषताओं पर भी तो फोकस हो सकती है, उन्होंने जो अचीव किया उस पर भी फोकस हो सकती है, उसके लिए उन्होंने कौन सी स्किल या कौन सी क्वालिटी यूज़ की उस पर भी तो फोकस हो सकती है। जैसे ही अपने आप को जो इन्फॉर्मेशन है उसमें चेंज करेंगे, थॉट्स भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी सटल, लेकिन ये बहुत सटल रूप में हो रहा होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपना ही कितना नुकसान कर रहे हैं, हम अपना ही कितना फ़ायदा कर सकते हैं। हम लोग खुद देखते हैं पर्सनली कि पहले हम लोग बैठते तो पता नहीं इसकी उसकी कितनी बातें कर लेते, अब जनरली हम बात करेंगे कि ये सिचुएशन आई, मैंने ना इसको इस तरह से हैंडल किया, यहाँ पर आई फेल्ड टुडे, यहाँ पर आई कुड डू इट। नाउ दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन इज़ यूजफुल फॉर मी ऑल्सो एंड इट्स यूजफुल फॉर इवन द अदर पर्सन विद हुम आई एम टॉकिंग। तो कॉन्वर्सेशन चेंज हो गया, ऐसे नहीं बोरिंग हो गए, हमने बात बात करना बंद कर दिया, हम एकदम चुप हो गए, कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी चेंज हो गई एंड वो मोर रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई, वो प्रोडक्टिव हो गई, तो फिर वो वेस्ट में नहीं जाएगी,
1: वो लर्निंग में आ जाएगी,
3: लर्निंग में आ जाएगी। तो वो आपका अपना फायदा, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसको भी इंस्पिरेशन।
2: और जो इन्फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो अगर उस क्षेत्र में है तो आपको जरूरत है। वैसे मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है, और क्रिकेटर की आप कमियां निकाल रहे हैं, बोले आनंद आता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज आई डोंट नीड इट। और भी कई चीजें हैं कि जिसका मेरा कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर ऐसी बातें क्यों मैं अपने अंदर फीड कर रहा हूँ, मेरे लिए वेस्ट थॉट है।
3: एक बहुत सटल संस्कार बनता है जब आप टीवी देखते हैं या आप मूवी देखते हैं, वो लोग वहां है उस तरफ, यू कांट सी देम, यू कांट टॉक टू देम, लेकिन आप उनको यू नो जजमेंटल होते जाते हैं। संस्कार किसका बन रहा है जजमेंटल होने का? वो संस्कार मेरा बन रहा है। तो अभी मैं वो क्रिकेटर्स और एक्टर्स के प्रति जजमेंटल होती, धीरे धीरे मेरे आसपास जो लोग होते उनके प्रति मैं जजमेंटल होने लग जाती हूँ। दैट इज नॉट समथिंग विच पीपल आर गोइंग टू टेक फ्रॉम मी।
1: क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना कि उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि मेरी हैबिट वही बन जाएगी,
2: इसलिए कई बातें तो सुनो भी नहीं, वहां भी ना कहना।
1: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि मैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे आसपास लोग बातें कर रहे हैं, विल इट अफेक्ट मी?
2: यू डोंट लिसन, क्योंकि सुना तो है ना आपने। कई लोग कहते एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, ऐसा नहीं होता, दोनों कानों से सुन रहे हो, अंदर जाता है
1: इन्फॉर्मेशन, जा रही है अंदर,
3: जा रही है, और जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी वो सोर्स ऑफ थॉट्स है। बहुत फिर जो आजकल हम कहते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझ में अभी आ गई है, क्रिएट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं भरी, इन्फॉर्मेशन नेगेटिव, थॉट्स भी फिर नेगेटिव या वेस्ट की डायरेक्शन में ही जाएंगे।
2: सुकरात के लिए बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं, कहते सुकरात के पास उसका एक मित्र गया और उसने कहा कि हम दोनों का जो तीसरा मित्र है उसके बारे में मेरे पास बहुत अच्छे समाचार है, तुमको सुनाऊं? तो सुकरात ने कहा नहीं ठहरो, पहले हम ट्रिपल फिल्टर टेस्ट करेंगे, और तीन फिल्टर्स में से एक फिल्टर में से भी तुम्हारी बात पहुँच जाए तो जरूर सुनाना। का क्या? कहते पहला फिल्टर है कि तुम्हारे पास जो समाचार है वो सत्य है? उसने कहा नहीं पता, मुझे भी किसी ने सुनाए हैं, तो एक फिल्टर से तो आपकी बात नहीं पहुंची। जो दूसरा फिल्टर है कि आपके पास जो समाचार है कुछ अच्छे समाचार है? कहा नहीं नहीं साहब, ये तो बहुत बुरे समाचार है। तो दूसरे फिल्टर से भी नहीं पहुंची, तीसरे फिल्टर से भी निकल जाए तो ठीक है, और तीसरा फिल्टर है क्या कोई काम की बात है का नहीं, ये तो बेकार की बात है। तो सुकरात ने कहा मुझे नहीं सुनाओ, देखो तीनों फिल्टर से ये बात नहीं पास हुई।
1: सही बात है, सच की फिल्टर, सच्चाई का फिल्टर, और आपने कहा कि
2: यूज़फुल और अच्छी बात,
1: तो ये हमने आई थिंक वो फिल्टर्स लगाने बहुत जरूरी हैं। अच्छा, ये तो हम बात रही डॉक्टर पटेल वेस्ट थॉट्स की, अब हम आते हैं आपने कहा नेसेसरी थॉट्स एंड देन वी मूव ओवर टू राइट एंड
2: पॉजिटिव थॉट्स आल्सो। हां, नेसेसरी थॉट है कि भी कहीं काम आपको करने, स्नान करना है, खाना करना है, आपको ऑफिस जा करके काम करना है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उसके बारे में भी सजगता से करो, ज्यादा सोचो नहीं, से जो नेसेसरी थॉट्स है वो भी कम से कम हो तो अच्छा है। कार्य जरूर करो लेकिन ज्यादा सोचो नहीं, क्योंकि हर विचार आपकी एनर्जी को ले जाता है। तो इसके कारण अगर आप कम सोचेंगे नेसेसरी थॉट्स, जो नेसेसरी कार्य कर रहे उसमें भी, तो एनर्जी को सेव करेंगे और अल्टीमेटली आप थकेंगे नहीं।
3: मतलब उसमें अननेसेसरी कोई थॉट्स ना हो, दैट इज इंपॉर्टेंट।
1: नेसेसरी
3: हो लेकिन अननेसेसरी कोई थॉट्स
2: तो बिल्कुल जीरो हो,
3: वेस्टिंग एनर्जी।
1: अच्छा, एक और अब हम आते हैं राइट एंड पॉजिटिव थॉट्स पे, उनमें क्या शामिल है?
2: हाँ, अब पहले हम पॉजिटिव थॉट्स को ले, क्योंकि पॉजिटिव लोगों को मुश्किल लगता है, जब पॉजिटिव नहीं पॉसिबल है तो फिर हम राइट थॉट को कर लेंगे।
1: लेकिन एक हमने सर्वे किया तब ज्यादातर लोगों ने बोला कि हम तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आई एम वेरी पॉजिटिव, दे ऑलवेज फील दैट आई एम वेरी पॉजिटिव, व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव, यू नो, मैं तो कभी बुरा नहीं सोचती, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहती हूँ, जिंदगी एक लड़ाई है जिसमें आगे लड़ना ही है, आगे बढ़ना ही है, तो व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय पॉजिटिव?
3: जिंदगी एक लड़ाई है भी एक नेगेटिव थॉट है, नो, जिंदगी एक लड़ाई है, व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ द थॉट? तो आपको लड़ाई थॉट क्रिएट करते ही
1: आपको युद्ध दिखने लगता है
3: आएंगे, और फिर जैसे जिंदगी एक लड़ाई है तो फिर हार और जीत है, और अगर हार और जीत है तो फिर आप जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार है, पूरी चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स बन जाएगी उसके बाद। एवरी थॉट इज सो इम्पोर्टेंट,
2: सो देयर पॉजिटिव इज लाइफ इज अ गेम,
1: लाइफ इज अ
2: जर्नी, इस प्रकार के थॉट्स हो तो उस समय पॉजिटिव थॉट्स बनेंगे। और जो ये लोग कहते हैं ना कि हम सदैव पॉजिटिव सोचते, कई बार प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे, अगर वो अपनी एनालिसिस करें अच्छे से तो देखेंगे कि उसमें भी बहुत सारे उनके ऐसे थॉट्स है जिसमें अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो औरों पर डाउट कर रहे हैं, और कुछ ऐसी बात है, इनसिक्योरिटी की बात है, भल चलो थॉट लेवल पर नहीं भी पहुंची लेकिन वो अंदर में फीलिंग तो आ रही है।
1: So I met somebody, Dr. Patel, जिन्होंने कहा कि मैं जिंदगी में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ।
2: Then what?
1: But he doesn't want to change this.
2: एक लिमिटेशन उन्होंने क्रिएट करी, मतलब इतना ही है, उनके लिए आगे तो कुछ है ही नहीं, परंतु आगे तो बहुत कुछ है।
1: लेकिन वो ये सोचते
2: हैं, ट्रस्ट नहीं करके भी वो कंफर्टेबली जी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रस्ट करने लगे तो इससे 10 गुना मिल सकता है।
3: और अगेन ये लोग जो ऐसा फील करते हैं कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, मतलब वो सब पे डाउट करते हैं। देयर इज नॉट अ जीरो थॉट, आई डोंट ट्रस्ट यू मींस आई डाउट यू, एंड अगर मैंने ये क्रिएट कर लिया है कि मैं ऑलमोस्ट सभी पर डाउट करते हूँ जो मेरे आसपास है, तो मैंने सभी को कौन सी एनर्जी भेजी है, सभी से रिटर्न भी अगर मैं आपको डाउट करूँ तो आप भी मेरे बारे में कैसा सोचेंगे, देन दिस पर्सन नीड्स टू चेक कि हाउ डज ही फील इनसाइड ही और शी। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इतने लोगों से मुझे उस तरह की एनर्जी मिलेगी मैं अच्छा फील नहीं कर सकता। ये फर्क है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा ये अच्छा फील नहीं करना ये एक्चुअली उस बात की वजह से है।
1: But he feels, he said that I feel safe.
3: वो इसलिए क्योंकि अगर हम ट्रस्ट करते हैं सब पे तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई मुझे एक धोखा देगा। अगर हम देखें लेट्स से कि मुझे बहुत क्लोज अपने जीवन में और वर्किंग एरिया में 50 लोगों से डील करना पड़ता है सारा दिन में, तो 50 लोगों पर डाउट करते हैं ताकि 50 में से कोई एक कभी धोखा ना दे दे। जस्ट लुक एट द लॉ ऑफ एवरेज, हम क्या कर रहे हैं। तो मैं 50 लोगों से नेगेटिव एनर्जी लेने के लिए रेडी हूँ, 50 लोगों के प्रति नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अपने आप को इतना स्टेबल नहीं कर सकता कि अगर किसी एक ने कुछ ऐसा कर भी दिया तो आई रिमेन स्टेबल एट दैट टाइम, एंड फिर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा जो मेरी लाइकिंग के विरुद्ध है, एंड इतना डाउट क्रिएट करने के बाद उसको फेस करने की मेरे अंदर वैसे भी ताकत नहीं होगी। ट्रस्ट करें, सब पे ट्रस्ट करें, बहुत एनर्जी अच्छी आप क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी आपको वापस मिलेगी अगर वो 50 में से कोई एक कुछ और कर भी देता है, यू हैव इनफ पावर टू फेस द सिचुएशन,
1: बिकॉज़ यू आर वेरी फुल ऊर्जा और दुआएं हैं,
3: यू आर वेरी फुल, यू विल बी एबल टू फेस द सिचुएशन, एंड फिर आपको जो आप जो उनको वो एनर्जी भेजेंगे, दैट माइट इवन हेल्प देम टू चेंज द वे दे आर लीडिंग देयर लाइफ. इट्स पॉसिबल.
2: 98 तो अच्छा हुआ ना, 2% ही, अगर एक ने बुरा किया तो 2% ही आपको लॉस है, 98% तो बेनिफिट है कि जिसको आप रोक रहे हैं उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा.
3: इट्स लाइक सेइंग कि मैं रोड पे कभी भी नहीं जाऊंगा ताकि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए. इसका मतलब आप अपने जीवन को कितना रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे कि आप कभी सड़क पे बाहर निकलेंगे ही नहीं क्योंकि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए. इट्स लाइक दैट रिस्ट्रिक्टिंग योर लाइफ बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ
2: लोग होते हैं ना, उनको चाइल्डहुड में कहीं कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, somebody has broken their trust. और बस वो फिर अंदर में एक ब्लॉक बन गया.
1: तो पर वो दे फील कंफर्टेबल विद दैट.
2: नो, बोले कंफर्टेबल फील कर रहे हैं लेकिन वो अपना जो सचमुच हासिल करना चाहे वो नहीं कर रहे हैं.
1: तो वो क्या अपने आप कर सकते हैं या दे नीड समबडी एल्स टू हेल्प देम?
2: अपने आप भी कर सकते हैं. हाँ, अपने आप भी कर सकते हैं अगर इस चीज को वो समझे अच्छे से कि ये मेरे में ब्लॉक है और उस ब्लॉक को मुझे रिमूव करना है.
1: इट ऑल कम्स बैक टू जो हमारे अनरिजॉल्वड इश्यूज
3: हैं. ऐसे व्यक्ति के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे ना कभी भी. और फिर वो आप शुरू वर्किंग लोगों से करोगे कि मैं अपने काम के क्षेत्र पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति घर पे भी नहीं ट्रस्ट कर पाएगा.
1: उन्होंने बोला मुझे, ही सेज कि नहीं है, तो तभी तो उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है.
3: अब जिसके रिश्ते कोई भी रिश्ता ऐसे अच्छा ना हो, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, अंदर हमेशा एक खालीपन मिलेगा.
1: तो ये हुआ कि हमने जो आपने कहा पॉजिटिव थॉट्स, वो जो आपको फील गुड कराए.
2: नहीं, उतना ही नहीं. पॉजिटिव तो एक तो सिंपल तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि भी हर परिस्थिति में कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है. तो हम एडवांटेज को ढूंढ निकाले और फिर उसे बार बार रिपीट करें. और कई परिस्थितियों में एडवांटेज छोटा होता है, डिसएडवांटेज बड़ा है. तो छोटा एडवांटेज भी ढूंढ निकाले. कई बार वो एडवांटेज इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो इनडायरेक्ट एडवांटेज को भी ढूंढ निकाले. और ऐसी परिस्थिति में तो मैं एडवाइस देता हूँ कि उसको लिखो. सोचने जाएंगे तो नेगेटिव में ही जाना है क्योंकि सामने नेगेटिव है, फोर्स भी नेगेटिव का ज्यादा है. तो इसलिए पॉजिटिव को लिखो 20 बार 25 बार, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव की ओर ध्यान जाएगा.
1: हर सिचुएशन, हर व्यक्ति में हमें पॉजिटिविटी दिख सकती है, होती ही है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं
2: कर सकते हैं.
3: अगर टफेस्ट सिचुएशन भी हो ना जिसमें आपको लगे कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, सपोज कोई
1: किसी लव्ड वन की डेथ में क्या पॉजिटिविटी,
3: उसमें भी उस सिचुएशन को अगर मैं स्टेबिलिटी से हैंडल करके बाहर निकल आई, आई हैव कम आउट स्ट्रॉन्गर, उतना तो ध्यान रखना पड़ेगा. सी, इट्स ऑलवेज कि मेरा इतना नुकसान हो गया है, चाहे वो नुकसान जो भी हो, लेकिन और कोई नुकसान मैं नहीं क्रिएट करूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है. उस टाइम पर अपनी स्टेट ऑफ माइंड पर ध्यान रखने से डेफिनेटली, जैसे आपने कहा किसी ने शरीर छोड़ा, इसमें किसी को कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा उसके प्रति भी अभी मुझे कैसी एनर्जी भेजनी है, वो आत्मा भी अभी कहीं और है, और जो मैं थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ वो उसको जा रहे हैं. मैं नुकसान तो नहीं कर सकती ना उसका, उसका अपना और जो परिवार के बाकी लोग हैं. आई कैन नॉट क्रिएट सो मच पेन फॉर सो मेनी पीपल. सो एवरी टाइम नेगेटिव सोचना कभी भी फायदे में नहीं हो सकता किसी के लिए भी.
2: और बहुत सारी बातें कि भाई इतना ही समय उस आत्मा का मेरे साथ पार्ट था, तो वह पार्ट पूरा हुआ तो मैं पीसफुली अच्छे वाइब्रेशन दूं.
1: अच्छा, और इसमें राइट थॉट्स में क्या शामिल होगा?
2: पॉजिटिव थिंकिंग पर बहुत सारी किताबें भी है, लोगों ने पढ़ी भी है किताबें, लेकिन फिर भी लोग पॉजिटिव नहीं थॉट सोच पाते क्योंकि उसमें एक जो मूल चीज में ही अगर वह पकड़ लो तो सब कुछ हो जाएगा. और उसका मूल यह है कि ये इस बात को पक्की कर लो कि हो सकता है कि वर्तमान में कोई अच्छी बात दिखाई दे नहीं रही है, इनडायरेक्ट भी नहीं दिखाई दे रही है, तो भी यह मान्यता बना लो कि भविष्य में कुछ फायदा होगा और ये भी पॉजिटिव है. अगर एक बार पक्का व्यक्ति कर ले कि भी फ्यूचर में इससे कुछ बेनिफिट होगा, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी है कि जिसमें व्यक्ति को उस समय कोई बेनिफिट नहीं हुआ लेकिन आगे चल करके कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ.
1: लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में, तो वैसे भी अध्यात्म भी ये कहता है कि ना पास्ट के बारे में ना फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट के बारे में सोचो. तो फिर ये अगेन
2: भी गोइंग प्रेजेंट में रह रहे हो, लेकिन ये मान्यता तो बना सकते हो, उनको मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है
1: कि इसमें ही कुछ फ्यूचर
2: लॉस हुआ है ना, अभी बिजनेस में लॉस हुआ तो भी मैं मन को पीसफुल रखूं कि भले इस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इसके कारण फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, तो वह भी एक प्रकार से पॉजिटिव हुआ।
3: उससे आप फ्यूचर में नहीं जा रहे, आप अपने प्रेजेंट को ठीक कर रहे हो।
1: सी व्हाट इज द एम, आपको हौसला दे रहे हो।
3: नहीं, एंड इट्स अ बिलीफ सिस्टम जिसको आपको अच्छी तरह से पक्का करना है, एंड थॉट्स विल ग्रेविटेट द सिचुएशन टुवर्ड्स यू। सी, ये परमात्मा हमेशा हमें कहते हैं ड्रामा की हर सीन, क्योंकि ये पूरा एक ड्रामा है ना, ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, परफेक्ट है, कल्याणकारी है। इसको इतना पक्का हम लोगों ने किया है, एंड एक्चुअली हर सीन में कुछ बेनिफिट होता है। कोई सीन्स ऐसी होती हैं जो उस टाइम तो बहुत ही अकल्याणकारी लगती हैं, लेकिन अगर रिपीटेडली आपने अपने आप को तैयार किया है इस बात के लिए इसमें भी कल्याण है, तो पहले तो आप उस समय उस टाइम स्टेबल हो जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद, चाहे वो टाइम कितना हो, 6 महीना, 1 साल, कई बार उससे भी बहुत ज़्यादा, आपको वो कल्याण मिलता है, एंड फिर आप कहते हैं अच्छा हुआ वो हुआ, तो देखो अब कैसा हुआ। वो तो ठीक है, वो तो बाद में, लेकिन उस टाइम कैसा बीता आपका टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाय क्रिएटिंग दिस थॉट के इसमें भी कुछ कल्याण है, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, आप टोटली प्रेजेंट पर फोकस्ड है। एम इज के हर थॉट प्रेजेंट में हो और हर थॉट स्टेबिलिटी की तरफ हो, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस मैं क्रिएट नहीं करूं। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से सिचुएशन मैग्नीफाई हो जाती है। यू नो, छोटी सी भी प्रॉब्लम है लेकिन मैं उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं ढूंढूं, नेगेटिव ही ढूंढूं, तो वो सिचुएशन और भी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी मेरे लिए। कई लोग ऐसे हैं कि सब चीज़ें भी पॉजिटिव हो रही होंगी
1: लेकिन नहीं एक्सेप्ट कर पाते,
3: नहीं उसमें उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव मिल जाएगा। एक बहुत डीप रूटेड संस्कार है, ये संस्कार बन गया है नेगेटिव ढूंढने का, अब ग्रेजुअली संस्कार बनाना है पॉजिटिव ढूंढने का
2: और मान्यता बना लेंगे। कुदरत में भी देखो तो देखो, सुबह की सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, उससे पहले घोर अंधियारी रात होती है। तो जीवन में भी ऐसा ही है, जब घोर अंधियारी रात आ जाए तब सोचो कि अभी सुबह का सूरज उगने वाला है। बस ये मान्यता बना लो तो भी पॉजिटिव होंगे।
1: डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, सचमुच आप वक्त निकाल कर आए, आज भी बात हुई कि बहुत लोगों का जो है वो कल्याण है, तो ये पॉजिटिविटी का जो एस्पेक्ट आज आपने हमें बताया, थैंक यू सो मच। अब देखने की बात ये है कि जिसे मैं अभी तक मान रही थी कि ये तो नेचुरल है, लोगों के बीच बैठकर बात करते थे और हर रोज़ ही कहीं ना कहीं वक्त निकाल रहे थे, फ़ोन पर बात कर रहे थे लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे, कितने हार्मफुल हो रहे थे। क्या वो किसी भी तरह से यूज़ हो रहे हैं? और हमने सोचा कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फ़र्क पड़ रहा था। ना सिर्फ उन लोगों तक वो एनर्जी पहुंच रही थी, मेरे अपना जो संस्कार है, मेरी अपनी हैबिट बनती जा रही थी इस तरह की थॉट्स क्रिएट करने की, क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कि थॉट्स मैं खुद क्रिएट करता हूँ या करती हूँ। तो फिर अगर मैं ये वेस्ट, खासकर आज जो हमने वेस्ट थॉट्स की बात की है, और साथ ही व्हाट इज़ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स हैं क्या, क्यों हम पॉजिटिव थॉट्स नहीं क्रिएट कर पाते, सिचुएशन कोई भी हो हमें कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी मिल जाएगी। जैसे हम पॉजिटिव सिचुएशंस में नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं, वैसे ही हंस की तरह हम क्यों ना हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढें और उसी के साथ स्टिक करें, वो हम खुद क्रिएट करें, ये प्रयास करके देखें। क्योंकि ये हम पूरी जो श्रृंखला है उन स्किल्स को सीख रहे हैं, लाइफ स्किल्स का हिस्सा है इस तरह से अपने थॉट्स के साथ जीना। कोई बात मन में है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे और बात करेंगे। आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

आपने अब तक जाना कि नरेंद्रनाथ की बीए की परीक्षा खत्म होते ही उनके पिता का असामयिक निधन हो गया था। पिता के श्राद्ध के उपरांत उन्हें पता चला कि उनकी आर्थिक स्थिति भयावह है। पिताजी कुछ भी संचय नहीं कर गए थे और काफी कर्ज छोड़ गए थे। अच्छे दिनों के मित्रगण एवं पिता के अन्न से प्रतिपालित स्वजन वृंद इन दुर्दिनों में अलग हो गए। गृहहीन, संबलहीन, मित्रहीन, अन्नहीन नरेंद्रनाथ की आंखों के आगे अंधकार छा गया। वे अपना मार्ग ढूंढ नहीं पा रहे थे। अपनी अवस्था का वर्णन उन्होंने खुद इस प्रकार से किया।

0: सूतक की समाप्ति के पूर्व से ही मुझे काम की तलाश में घूमना पड़ा था। अनाहार, नंगे पांव, नौकरी का प्रार्थना पत्र हाथ में लेकर दोपहर की धूप दफ्तर घूमना पड़ता था। घनिष्ठ मित्रों में से कोई मेरे दुखित होकर किसी दिन साथ रहता था और किसी दिन मुझे अकेले ही घूमना पड़ता था, परंतु सर्वत्र ही विफलता होती थी। ये प्रथम अवसर था जब मुझे संसार के साथ विशेष रूप से परिचित होना पड़ा था। स्वार्थ रहित सहानुभूति यहां बहुत ही विरल है। यहां दुर्बल और दुखी का कोई स्थान नहीं है। मैं देखता था दो दिन पहले जो लोग मुझे कुछ भी सहायता देने का मौका पाने पर अपने को धन्य समझते थे, अब इस समय मुझे देखते ही मुंह फेर लेते थे। सामर्थ्य रहते हुए भी थोड़ी बहुत सहायता भी नहीं देना चाहते थे। देख सुनकर कभी कभी ऐसा लगता था मानो ये संसार दानवों का बनाया हुआ है। स्मरण है इस दिन एक दिन धूप में घूमते हुए पैर के तलवे में छाला पड़ गया था और बहुत थककर मैदान के पेड़ की छाया में बैठ गया था। संभवतः दो एक मित्र उस दिन थे जो मुझे सांत्वना देने लगे। मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो कोई मेरे मस्तक पर जोरों से आघात कर रहा है। माता और भ्राताओं की असहाय अवस्था की बात मन में उदित होने पर मैं दुख, निराशा और ग्लानि से बोल उठता था, ठहर, चुप भी रह। भूख की ज्वाला से दुखित परिजनों का कष्ट जिन्हें सहना नहीं पड़ता, अन्न वस्त्र का भाव जिन्हें कभी नहीं सताता, पंखे की हवा खाते हुए उन्हें वैसी कल्पना सुनकर प्रतीत भी हो सकती है। मुझे भी एक दिन प्रतीत होती थी, परंतु कठोर सत्य के सामने वो अब विकृत परिहास मालूम होती है। मेरी उस बात से संभवतः मेरे मित्र को कुछ दुख हुआ होगा, परंतु निर्धनता से पिस जाने के कारण मेरी भूख से उस दिन वो बात निकल पड़ी थी। उसे वो कैसे समझेगा? प्रातःकाल उठकर गुप्त रूप से पता लगाकर जिस दिन मैं जान पाता था कि घर में सबके लिए पर्याप्त खाद्य नहीं है और हाथ में पैसा भी नहीं है, उस दिन मां से मुझे निमंत्रण है कहकर मैं बाहर निकल जाता था और किसी दिन थोड़ा बहुत खाकर और किसी दिन वैसे ही रहकर बिता देता था। आत्माभिमान के कारण मैं उस बात को किसी से कह भी नहीं सकता था। धनी मित्रों में कोई कोई पहले की तरह मुझे अपने घर या बगीचे में ले जाकर संगीत आदि के द्वारा उनका आनंद वर्धन करने का अनुरोध करते थे। लाचार होकर कभी कभी मैं उनके साथ जाकर उनका मनोरंजन करने में प्रवृत्त होता था, किंतु मन की बात उनसे कहने की इच्छा नहीं होती थी। वे भी स्वतः प्रवृत्त हो उस विषय को जानने की चेष्टा नहीं करते थे। उनमें कदाचित कभी कोई कह देता था, तुझे आज बहुत ही उदास और दुर्बल क्यों देखता हूं, बता दो। केवल एक मित्र ने मेरे अनजाने में दूसरे से हमारी आर्थिक स्थिति की बात जानकर गुमनाम पत्र द्वारा मेरी माता को समय समय पर रुपया भेजकर मुझे चिर ऋणी किया था।
1: उन्हीं दिनों नरेंद्रनाथ को कई तरह के अच्छे और बुरे अनुभव हुए, पर इतने परेशान रहने के बाद भी उन्होंने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने उन कठिन दिनों को याद करके कहा था,
0: यौवन में जो बाल्य बंधु चरित्रहीन होकर असत उपाय से कुछ धन कमा रहे थे, उनमें से कोई कोई मेरी निर्धनता का हाल जानकर मुझे अपने दल में खींचने की चेष्टा कर रहे थे। उनमें जो लोग उससे पहले मेरी तरह एकाएक अवस्था के परिवर्तन से हीन वृत्ति का आलंबन करने के लिए बाध्य हुए थे, मैंने देखा कि वे यथार्थ में ही मेरे लिए दुखित हुए थे। मौका पाकर अविद्या रूपिणी महामाया ने भी मेरे पीछे पड़ने में कसर नहीं की। एक धनी महिला की दृष्टि मेरे ऊपर पहले से ही पड़ गई थी। इसी मौके पर उसने प्रस्ताव भेजा कि मैं चाहूं तो उसकी संपत्ति के साथ उसे अपनाकर अपने दुख क्लेश को दूर कर सकता हूं। तीव्र अवज्ञा और कठोरता दिखाकर मैंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। एक दूसरी महिला जब मुझे लालच दिखाने आई तो मैंने कहा था, देखो बच्ची, इस मिट्टी के शरीर से सुख के लिए तुमने अब तक न जाने क्या क्या किया है, अब तो मृत्यु सामने है, उस पार जाने का क्या कुछ संबल भी ग्रहण किया है। हीन बुद्धि छोड़कर भगवान को पुकारो।

0: व्यक्तिगत मित्रों से उन्होंने पूरे तौर पर मुक्ति नहीं पाई। एक संध्या को उनके कुछ मित्रों ने गाड़ी ठीक कर उन लोगों को कलकत्ते के समीप स्थित एक उद्यान भवन ले जाना चाहा। इस सांध्य भ्रमण के स्वरूप के संबंध में नरेंद्रनाथ को कोई ज्ञान नहीं रहने के कारण वे सहमत हो गए तथा उपयुक्त समय में सबके साथ आनंद पूर्वक गाड़ी से आकर एक उद्यान भवन के फाटक पर उतरे।
1: भीतर प्रवेश कर उन्होंने देखा कि वहाँ एक सांध्य उत्सव का आयोजन हुआ है। आनंद भोग करने के लिए ही वहाँ आगमन हुआ था, अतएव काफी गाना बजाना हुआ। नरेंद्र ने भी यथारीति उसमें योगदान दिया। थोड़ी देर बाद उनके थकान अनुभव करने पर मित्रों ने एक बगल का घर दिखाकर कहा कि वे वहां जाकर विश्राम कर सकते हैं। वे उस कमरे में अकेले सोए थे, तभी मित्रों द्वारा प्रेरित एक युवती उस कमरे में उपस्थित हुई। इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, ऐसा नरेंद्रनाथ समझ

0: क्षमा कीजिएगा, मुझे अभी जाना होगा। आपके प्रति मेरी आंतरिक सहानुभूति है और आपका कल्याण हो यही मैं चाहता हूं। आप समझ लें कि इस प्रकार जीवन व्यतीत करना पाप है, तो एक न एक दिन आप इससे निश्चित ही उद्धार पा जाएंगे।
1: नरेंद्रनाथ चले गए। वो युवती भी हतबुद्धि होकर उन मित्रों के निकट लौटकर बोली, एक साधु को लुभाने के लिए भेजकर आप लोगों ने खूब मजाक किया। ये घटना एक ओर जिस प्रकार नरेंद्रनाथ के चरित्र की दृढ़ता दिखाती है, उसी प्रकार दूसरी ओर प्रमाणित करती है कि उनका गुरुबल कितना अमोघ था।
2: इतना दुख झेलने के बावजूद नरेंद्र की ईश्वर भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे ईश्वर का नाम लेकर हर प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ते रहे। एक दिन सुबह होते ही भगवान का नाम लेकर वे जागे।
0: नारायण नारायण, शिव शिव, हर हर महादेव।
3: चुप रहे बिले, बचपन से ही रटता रहता है भगवान भगवान। तेरे भगवान ने तेरे लिए किया ही क्या? क्या यही दिन देखने के लिए हमने उनकी पूजा अर्चना की, उन्हें सिर आंखों पर बिठाया? खबरदार खबरदार जो उनका नाम लिया। छोटे छोटे बच्चों को मैं 2 जून खाना तक नहीं दे पा रही हूँ। तेरे भगवान क्या अंधे हैं, बहरे हैं, कुछ नहीं दिखता उन्हें?

0: ये शब्द नरेंद्र को लग गए और उनका अभिमान प्रचंड रूप से जाग उठा। वे सोचने लगे,
1: तो क्या सचमुच में भगवान निर्धन का कातर क्रंदन नहीं सुनते या सुनना नहीं चाहते? क्या वे निश्चल निर्विकार होकर हाथ समेट कर इस निष्ठुर सृष्टि की दानवी लीला देख रहे हैं? जो भगवान इस लोक में शुद्धार्थों को एक टुकड़ा रोटी देखकर जीवित नहीं रख सकते, वे ही अंत में अक्षय स्वर्ग में अनंत सुख का अधिकारी बनाएंगे, ये कैसे संभव है? तो क्या ईश्वर का नाम कुछ भी नहीं है? हाँ है, पर वो मंगलमय या दयामय नहीं है, वो निर्विकार है। दुख के क्रंदन से उसका हृदय नहीं पिघलता, वो हृदयहीन है।
2: नरेंद्र हताश होकर कभी कभी अपनी ईश्वर संबंधी इस नवीन धारणा की बात अपने दोस्तों से कह देते। इससे कई लोगों को यह धारणा हो गई कि नरेंद्रनाथ नास्तिक हो गए हैं। ये चर्चा श्री रामकृष्ण के कानों तक पहुंची, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उल्टे निंदकों को फटकारा।
3: चुप रहो मूर्खों, वो कभी ऐसा नास्तिक नहीं बन सकता। फिर कभी ऐसी बात करोगे तो मैं तुम लोगों का मुंह तक नहीं देखूंगा।
4: पर गुरुजी,
3: कहा ना चुप रहो, तुम लोग उसे क्या समझ पाओगे? वो बहुत महान व्यक्ति है। वो जिस विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, कोई और होता तो पागल हो जाता या आत्महत्या कर लेता, पर वो लड़े जा रहा है। उसे तो अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। भगवान तो उसकी परीक्षा ले रहे हैं।
0: उन दिनों नरेंद्र हताशा की चरम सीमा पर पहुंच गए थे। एक दिन वे दक्षिणेश्वर गए। रात भर रामकृष्ण देव और नरेंद्र में बातचीत होती रही। सुबह जब नरेंद्र घर लौटे तो उनका मन काफी शांत हो चुका था। इन दिनों वे संन्यास लेने के बाद भी गंभीरता से सोच रहे थे, पर गुरु ने न जाने क्या क्या बातें समझाई कि शिष्य ने एक बार फिर उठ खड़े होने का निश्चय किया और हार नहीं मानने की ठान ली।
2: देखा गया है कि हमारे देश में बहुधा नाबालिग और विधवा की संपत्ति को हड़पने के प्रयत्न होते रहते हैं। खानदान वालों के

0: षड्यंत्रपूर्ण मुकदमे के लिए नरेंद्रनाथ तैयार होने लगे। दावेदारों ने मकान का बंटवारा कर लेने के लिए अदालत से सहायता मांगी। उनका उद्देश्य था मकान के अच्छे हिस्से पर अधिकार प्राप्त करना। माता भुवनेश्वरी निरुपाय हो गई। विपत्ति पर विपत्ति के आघात से मर्माहत सिंह की तरह नरेंद्रनाथ अंतिम शक्ति के साथ विपक्ष पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। उनका प्रण था अन्याय के सामने असत्य के सामने कभी सर न झुकाएंगे। अदालत में मुकदमा चलने लगा। नरेंद्र के स्वर्गीय पिताजी के मित्र प्रसिद्ध बैरिस्टर उमेश चंद्र बंदोपाध्याय ने स्वयं प्रवृत्त होकर मुकदमा चलाने का भार ले लिया। इस मुकदमे से संबंधित कुछ घटनाओं में नरेंद्र की तीक्ष्ण बुद्धि, चरित्र की दृढ़ता आदि का परिचय मिला था।
1: जब विपक्ष के वकील नरेंद्रनाथ से जिरह कर रहे थे, उस समय नरेंद्रनाथ के निर्भीक, स्पष्ट, धीर और गंभीर उत्तर सुनकर ये जानकर कि वे कानून पढ़ रहे हैं, जज साहब हर्ष से बोल उठे, युवक, समय आने पर तुम एक अच्छे वकील बनोगे। जज साहब ने सारी स्थिति समझकर नरेंद्र के पक्ष में ही राय दी। मुकदमे में जीत का समाचार पाते ही नरेंद्रनाथ आनंद के साथ अदालत से माँ के पास दौड़े जा रहे थे कि विपक्ष के अटर्नी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका और आनंद के साथ कहा, जज साहब से मैं भी सहमत हूँ, कानून ही आपका योग्य क्षेत्र है, मैं आपका उज्जवल भविष्य चाहता हूँ। नरेंद्र दौड़ते हुए घर वापस चले गए।

0: माँ, माँ कहाँ हो? जल्दी आओ।
1: क्या हुआ?
0: जल्दी आओ।
1: बड़ा खुश दिख रहा है।
0: माँ माँ, मुझे पहले प्रणाम कर लेने दो।
1: अरे पागल, ये क्या कर रहा है? कुछ बताएगा भी या?
0: माँ, तुम्हारा मकान हमारा मकान हमारा ही रह गया।
1: सच? हे भगवान, तुमने मेरी लाज रख ली।
0: भगवान, अब कौन ले रहा भगवान का नाम? मेहनत वकीलों ने की और श्रेय भगवान को दे दिया।
1: बेटा, हर काम के लिए भगवान खुद थोड़े ही आते हैं, किसी किसी के द्वारा करवा लेते हैं।
0: और उस दिन भगवान का नाम लेने पर जो मुझे सुबह सुबह डांट दिया था, उसका क्या?
1: मुझे माफ करना बेटा, बच्चों को भूख से तड़पते देख मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। लेकिन भगवान तो दयालु है नरे, अब अपने दुख के दिन जल्द ही कट जाएंगे। देखना, आज ही से उसकी शुरुआत हो गई।
0: माँ, बाकी सब लोग कहाँ हैं? उन्हें भी तो शुभ समाचार दे दो।
1: हाँ, चल, सब अंदर है।

0: दिन बीतने लगे, पर नरेंद्र की सांसारिक परिस्थिति में कुछ विशेष सुधार न हुआ। लोग उन दिनों भुवनेश्वरी देवी की प्रशंसा करते थे कि एक दिन इस महिला को 1000 रुपए घर के खर्च के लिए मिला करते थे और आज सिर्फ 30 रुपए में वे बच्चों का पेट भरती हैं, घर चलाती हैं और उस पर भी कभी विचलित नहीं होती थीं। बड़े बेटे नरेंद्र को नौकरी नहीं मिल रही थी, हालांकि वे जी जान से नौकरी ढूंढ रहे थे।
1: एक दिन नरेंद्र ने सोचा शायद रामकृष्ण देव कुछ उपाय बता दें। ये सोचकर वे दक्षिणेश्वर गए। रामकृष्ण उन्हें देख आनंद विभोर हो उठे। नरेंद्र ने कहा,
2: महाराज, मेरी माँ और भाई बहनों को 2 आना अन्न खाने का मिल सके, इसके लिए आप अपनी काली माता से कहिए ना।
3: मैं कभी काली माँ से कुछ नहीं मांगता, तुम लोगों का भला हो इसीलिए एक बार अनुरोध किया था, परंतु तू तो मां को मानता ही नहीं, इसीलिए मां तेरी बातों पर ध्यान नहीं देती।
1: घोर निराकारवादी नरेंद्र की साकार में जरा भी निष्ठा न थी। मूर्ति पूजा विरोधी नरेंद्रनाथ इस परिस्थिति में क्या करेंगे? अविश्वास? अब तो अविश्वास के दिन चले गए थे, तो फिर क्या विश्वास? पर क्या बिना प्रमाण के ही साकार में विश्वास कर लेंगे? ये कैसे संभव है? नरेंद्रनाथ सिर झुकाकर रह गए।
0: पर श्री रामकृष्ण उनके लिए क्या नहीं कर सकते थे? उन्होंने जिसके दुख को जानकर स्वयं भिक्षा के लिए निकल पड़ने का संकल्प किया था, क्या वे उसी नरेंद्र के अनुरोध की उपेक्षा कर सकते थे? परंतु श्री रामकृष्ण भी छोड़ने वाले न थे। वे शिष्य की परीक्षा लेने के लिए बार बार कहने लगे,
2: माँ विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। माता तुम्हारी कृपा से सदा ही तुम्हें देख सकूं।
0: नरेंद्र लौट आए। श्री रामकृष्ण ने पूछा,
3: क्या मांगा?
0: तब कहीं उन्हें अपने पूर्व संकल्प की याद आई। अरे, उन्होंने ये क्या किया? श्री रामकृष्ण के आदेश पर वे पुनः मंदिर में गए। दूसरी और तीसरी बार भी वे मुंह खोलकर मां के चरणों में सांसारिक सुख के लिए प्रार्थना न कर सके। जन्म से ही वैराग्य की ओर झुका हुआ उनका मन बीच बीच में सांसारिक दुख कष्टों से विचलित होने पर भी पार्थिव भोग सुख की कामना से क्षुब्ध नहीं हुआ था। वे कैसे अन्न वस्त्र के लिए प्रार्थना करते? ऐसा कौन मूर्ख है जो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर अमृत फल को छोड़ कुम्हड़े के लिए प्रार्थना करेगा?
1: अंत में रामकृष्ण देव ने हंसकर नरेंद्र से कहा,
3: तू जब 3 बार में भी काली माता से मांग ना सका तो तेरे भाग में सांसारिक सुख है ही नहीं, फिर भी तुम लोगों को सूखी रोटी और मोटे वस्त्रों की कमी कभी नहीं होगी।
0: नरेंद्र को आश्वासन मिला। उन्हें अपने स्वयं के लिए तो सांसारिक सुख की आवश्यकता थी ही नहीं।
1: उसी दिन से नरेंद्र के जीवन में एक नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ। नरेंद्रनाथ के परिवार का अभाव अनेकांश में दूर हुआ। अटर्नी ऑफिस में काम करके और कुछ पुस्तकों का अनुवाद करके नरेंद्र जीविका चलाने लगे। अंत में स्थायी रूप से विद्यासागर महाशय के स्कूल में वे अध्यापन कार्य करने लगे।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्ण हसन भांडण आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
2: तेरे जैसा यार कहां ऐसा यार आना।
1: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
3: लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा।
1: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर अपोप फिरकत।
4: आय एम अ डिस्को डान्सर।
1: त्याच सोबत
5: गावाची आठवण मातीचा सुगंध।
6: कोण दिसा मेले की चलारी बटुहिया।
1: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध तीच नशा।
7: पहला नशा पहला खुमार।
1: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा आनंद लुटा।
8: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, वो नदी थी सदा नीरा, बहती रही निरंतर, बूंद बूंद सींचती रही धरती। कड़ी चट्टाने खड़ी थी मार्ग में उसके, ऊंचे पर्वत मार्ग रोके अवरोध बने, पर वो नदी थी सदा नीरा, बहती रही, नए मार्ग तलाशती, निर्बाध निरंतर। नदी की तरह निरंतर गतिशील एक ऐसी ही वीर महिला क्रांतिकारी थी महारानी तपस्विनी, जिनका असली नाम सुनंदा था। वो रिश्ते में महारानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थीं। उनके पिता नारायण राव एक पेशवा सरदार थे। महारानी तपस्विनी ने जन क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने साधुओं, फकीरों और संतों को पूजा पाठ के साथ साथ अंग्रेजों के विरुद्ध जन सामान्य को जगाने और आजादी की लड़ाई के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करने की भी प्रेरणा दी। सुनंदा बचपन में ही विधवा हो गई थीं और अपना जीवन पूजा पाठ में व्यतीत करने लगीं। संस्कृत पढ़ने में उनकी रुचि थी, इसलिए उन्होंने पुराणों और उपनिषदों का अध्ययन आरंभ किया। किशोरावस्था से ही उन्होंने योगासन के साथ शस्त्र संचालन तथा घुड़सवारी आदि सैनिक गुणों का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। पिता को लगता कि किसी भी तरह बेटी का मन लगा रहे, उसका दुख कम हो, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की बाधा नहीं डाली। समय के साथ सुनंदा के भीतर अंग्रेजों से भारत भूमि को मुक्त कराने की भावना बलवती होती गई और वे अपनी अस्त्र शस्त्र चलाने की निपुणता बढ़ाने लगीं। इसी बीच पिता का साया भी सर से उठ गया। अब उन्हें बेलूर जागीर का कार्यभार भी संभालना पड़ा। जागीर की व्यवस्था अपने हाथ में लेते ही सबसे पहले उन्होंने किले की मरम्मत करवाई और सिपाहियों की नई भर्ती का कार्य शुरू किया। जाहिर है, ये सारी तैयारी अंग्रेजों को देश से निकालने की थी। रानी की इन गतिविधियों की सूचना अंग्रेजों को मिल गई और अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में नजरबंद कर दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ ही समय में रानी का हौसला पस्त हो जाएगा और वो भविष्य में ऐसी कोई योजना नहीं बनाएंगी। इसी सोच के आधार पर कुछ समय बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया। रानी सुनंदा प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य में जाकर रहने लगी और संत गौरी शंकर की शिष्या बन गईं। अंग्रेज धोखा खा गए। उन्हें लगा कि रानी को संसार से विरक्ति हो गई, जबकि सच तो ये था कि ये रानी की दूरदर्शिता और कूटनीति थी। वे शिव और शक्ति की उपासना करती रहीं और मन ही मन भारत की आजादी की योजनाएं बनाती रहीं। रानी की इस साधना की चर्चा चारों ओर होने लगी। आसपास के ग्रामीण बड़ी श्रद्धा से उनके दर्शनों को आने लगे। सुनंदा से बनी रानी सुनंदा अब रानी तपस्विनी कहलाने लगी और थोड़े ही समय बाद श्रद्धालु उन्हें रानी तपस्विनी के स्थान पर श्री माता तपस्विनी कहने लगे।

रानी तपस्विनी अपने दर्शनार्थियों को आध्यात्मिक उपदेश देने के साथ साथ देश प्रेम का उपदेश भी देती रहीं। भारत की दशा की चर्चा करतीं और मुक्ति के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देतीं। उनका उपदेश सुनकर लोगों ने क्रांति के समय देशभक्तों का साथ और सहयोग देने की सौगंध ली। इस तरह क्रांतिकारी साधुओं की कई टोलियां बन गईं। 1857 के विद्रोह का बिगुल बज जाने के बाद रानी द्वारा तैयार क्रांतिकारी साधुओं की गुप्त टोलियां छावनियों में भी प्रवेश कर जाती थीं। अंग्रेज अधिकारी सैनिकों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें जाने देते थे। रानी के भक्त जो भी भेंट उन्हें चढ़ाते वो उन्हें गांव में अस्त्र शस्त्र बनवाने में लगवा देती। रानी तपस्विनी गांव गांव जाकर अपने भक्तों और शिष्यों को प्रेरित करती कि वे क्रांतिकारियों की सहायता तो करें ही, साथ ही इस आंदोलन में शामिल भी हों। माता तपस्विनी के इन क्रियाकलापों को देखकर साधारण लोग भी तन मन धन से अपनी आहुति देने को तैयार होने लगे। माता तपस्विनी के शिष्य ये साधु जन क्रांति का संदेश घर घर पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। लाल कमल द्वारा सैनिकों को और जन सामान्य में संदेश के प्रतीक स्वरूप चपाती एक हाथ से दूसरे हाथ तक घूमती चलती। इन्हें माता तपस्विनी के आशीर्वाद के रूप में बांटा जाता। युद्ध के समय माता तपस्विनी स्वयं घोड़े पर सवार हो शत्रुओं से टक्कर लेते हुए सभी मोर्चों पर निरीक्षण करती और अवसर मिलते ही अपने छापामार दस्तों के साथ अंग्रेजों के सैनिक ठिकानों पर आक्रमण करती थीं। उनके दल में केवल पूजा पाठ कर आत्मशुद्धि करने वाले कोरे साधु नहीं थे, बल्कि वे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, युद्ध में निपुण और प्राणों की बाजी लगाने वाले देशभक्त साधु थे। अंग्रेजों की सुसंगठित शक्ति के सामने साधुओं का छापामार विद्रोह सफल नहीं हो सका। अंग्रेजी सरकार ने अपनी अमानवीय दमन नीति का सहारा लेकर इन्हें गद्दार करार देते हुए पकड़ पकड़ कर पेड़ों पर लटकाकर फांसी देना शुरू कर दिया। अंग्रेज जासूस माता तपस्विनी के पीछे लगे हुए थे, लेकिन ग्रामीण जनता की श्रद्धा की वजह से वो बची रहीं। विद्रोह के असफल हो जाने पर वे नाना साहब के साथ नेपाल की ओर प्रस्थान कर गईं। नेपाल पहुंचकर उन्होंने भारतीय जनता के नाम सांत्वना भरा संदेश देते हुए कहा, आप लोग घबराइएगा नहीं, महिषासुर की भांति अंग्रेज हुकूमत का भी नाश होगा, क्रांति की दुर्गा फिर प्रकट होगी।

नेपाल में रहते हुए उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए जो धार्मिक चर्चा और क्रियाकलापों के साथ साथ धीरे धीरे क्रांति संदेश का केंद्र बन गए। उन्होंने नेपाल की जनता को भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जागरूक किया और इसी कारण कुछ समय बाद उन्हें नेपाल छोड़ना पड़ा। यहां से निकलकर वे दरभंगा होती हुई कलकत्ता पहुंची। कलकत्ता प्रवास के दौरान उन्होंने महाकाली पाठशाला खोल दी। पाठशाला की आड़ में उन्होंने पुराने संपर्क सूत्रों को फिर से जोड़ा। सन 1901 में यही उनकी भेंट बाल गंगाधर तिलक से हुई और उनके सामने रानी तपस्विनी ने नेपाल में शस्त्र कारखाना खोलकर वहीं से पुनः क्रांति का शंखनाद करने की अपनी गुप्त योजना का उद्घाटन किया। कुछ समय बाद इस हेतु जब उन्होंने तिलक जी से दोबारा संपर्क किया तो इस बार तिलक जी ने खाडिलकर नामक युवक को माता तेजस्विनी के पास भेजा, जिसे अपनी योजना समझाकर माता ने नेपाल भेजा। खाडिलकर ने नेपाल के सेनापति चंद्र शमशेर से संपर्क कर उसके साथ जर्मन फर्म क्रुप्स के सहयोग से टाइल्स बनाने का कारखाना खोल लिया, किंतु इस कारखाने में टाइल्स की जगह हथियार बनाए जाने लगे। खाडिलकर ने यहां अपना नाम कृष्णराव प्रचलित कर रखा था। कारखाने में बनी बंदूकें नेपाल सीमा पर लाकर बंगाल के क्रांतिकारियों को सौंप दी जाती थीं। ये काम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन धन के लालच में आकर एक विश्वासघाती ने खाडिलकर को बंदी बनवा दिया। कारखाने से हथियार बरामद हुए, लेकिन असहनीय यातनाएं सहने के बावजूद खाडिलकर ने माता तपस्विनी का नाम उजागर नहीं किया। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन में भी बहुत से साधु और सन्यासियों ने माता तपस्विनी की प्रेरणा से ही हिस्सा लिया। 1857 की क्रांति असफल हो जाने पर भी लगभग आधी शताब्दी तक माता तपस्विनी ने क्रांति की ज्वाला जलाए रखी। आध्यात्मिक चिंतन मनन के साथ ही देश की आजादी का संदेश फैलाती हुई रानी तपस्विनी ने सन 1907 में कलकत्ता में ही अंतिम सांस ली। जिनके त्याग तपोवन से ये माटी चंदन है, ऐसी मां तपस्विनी को हमारा वंदन है। आज तिरंगा जिनकी याद लिए फहराता है, मन आज भी जिनकी गौरव गाथा गाता है। धन्य नींव के पत्थर जिन पर बना भवन है, जिनके त्याग तपोवन से ये माटी चंदन है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपने एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत
1: हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज के जमाने में माँ बाप अपने बच्चों को सुख देना चाहते हैं, सारी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं। बच्चे जो मांगे वो दिलाते हैं, बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं, बच्चे ने जो कहा उसे पूरा करते हैं। लेकिन यही माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। ऐसे बच्चे बड़े होने पर भी जिद्दी स्वभाव वाले बन जाते हैं। बचपन में ना सुनने की आदत नहीं होने के कारण ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद भी ना किसी से सुन नहीं पाते। अगर किसी ने किसी बात के लिए मना किया तो ऐसे बच्चे अपना आपा खो देते हैं, दूसरों पर बिगड़ पड़ते हैं। जिंदगी हमेशा हर बात के लिए हाँ तो नहीं कहेगी। जिंदगी में कभी कभी ना भी सुनना पड़ेगा। जिंदगी हर बार हमारी जिद, हमारी इच्छाओं को हाँ नहीं कहेगी। हमें अपने बच्चों को बचपन में ही सिखाना होगा कि आपकी हर जिद पूरी नहीं होने वाली है। अगर बचपन में बच्चों को ना सुनने की आदत होगी तो वो बड़ेपन में उधम नहीं मचाएंगे। अगर बच्चे किसी वस्तु की जिद करें तो पहले देखिए कि वो चीज़ उसके लिए ज़रूरी है या नहीं। अगर ज़रूरी नहीं है तो उसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे ने किसी बात की इच्छा व्यक्त की तो उसी समय उसे पूरा मत कीजिएगा, थोड़ा वक्त लीजिए। बच्चों को धीरज रखना सिखाइए, इंतज़ार करना सिखाइए। अगर हम उसी समय बच्चे की हर इच्छा पूरी करते रहे तो ऐसे बच्चे बड़े होने पर बिगड़ सकते हैं, उनमें धैर्यता नहीं आती। आज माँ बाप बच्चों का दिल बहलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल बच्चों के आँखों पर, ब्रेन पर बुरा असर डालता है। आज बच्चे मोबाइल के एडिक्शन के शिकार बनते जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो पागलपन तक पहुंच गए हैं। बच्चे वही बन रहे हैं जो वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे बचपन में सिर्फ दूरदर्शन था, लेकिन आज के बच्चों के पास कई केबल चैनल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है। आज के बच्चों का जीवन ज़्यादा खतरे में है। आज कम उम्र में भी बच्चों के पास दुनिया भर की बातें पहुंच जाती है। कलयुग का बढ़ता प्रभाव, संग दोष, मोबाइल का बढ़ता उपयोग, फिल्में, दुनिया में घट रहे अपराध, इससे बच्चों को बचाना है। हमारा बचपन बहुत सुरक्षित था, लेकिन आजकल के बच्चों का बचपन इतना सुरक्षित नहीं है। इस बढ़ते असुरक्षा के वातावरण में बच्चों को सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है। कभी भी बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करना है। उन्हें बचपन से ही सिखाना है कि आपकी हर जिद पूरी नहीं होगी, हर इच्छा पूरी नहीं होगी। कुछ पूरी होगी, कुछ इच्छा पूर्ति के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और कुछ इच्छाएं तो बिल्कुल ही पूरी नहीं होगी। अगर हमने बचपन में नहीं सुनना नहीं सिखाया तो ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद भी हर हालात में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को बड़े गर्व से कहते हैं कि हम आपके फ्रेंड हैं। फ्रेंड बनते बनते बच्चों के पेरेंट्स माँ बाप बनना भूल जाते हैं। आजकल के बच्चों के पास फ्रेंड्स बहुत हैं और बहुत मिलेंगे भी, लेकिन पेरेंट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा डांटते रहेंगे या हम हमेशा प्यार करते रहेंगे। जब ज़रूरत होगी तब डांटना भी पड़ेगा, जब ज़रूरत होगी तब प्यार भी करना पड़ेगा। गलती हुई तो गलती भी दिखानी होगी, वरना हम हर बार सही है ये वहम उनमें नहीं पनपने देना है। हम परिस्थिति में हम ही सही हैं, ये भावना भी अच्छी नहीं है। कभी कभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होना भी जरूरी है। बचपन में खुद की बात सच करने वाले बच्चे आगे जाकर भी खुद की बात को सही करने की जिद करते हैं, बड़ों का लिहाज रखना भूल जाते हैं। बच्चों को अपनी गलती स्वीकार करना भी सिखाना होगा। जब गलती स्वीकारेंगे तभी तो उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर गलती स्वीकारेंगे ही नहीं तो सुधारेंगे कैसे? गलती को स्वीकारना भी परिवर्तन की पहली स्टेज है। हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करना और दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, यह भी ठीक नहीं है। ऐसे बच्चे बड़े होने पर भी खुद की हर बात सही है यही सिद्ध करने की जिद करते हैं। इससे किसी का भला नहीं होता। अगर गलती की है तो गलती को स्वीकारना भी आना चाहिए। अनजान लोगों पर भरोसा करना नहीं है, ये भी बच्चों को सिखाना चाहिए। पहले के जमाने में माँ बाप पड़ोसी के घर भी बच्चों को बड़े विश्वास से भेजते थे, लेकिन अब जमाना अलग है। बिना परखे अपने बच्चों को किसी के यहाँ भी नहीं भेजना चाहिए। भगवान की कृपा से आपके पड़ोसी अच्छे भी हो तो भी उनके घर आने वाले मेहमान कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, ये तो आपको पता नहीं है ना। पहले के ज़माने में घर का पूरा काम करके भी चार पांच बच्चे संभाल लेते थे। आजकल एक दो बच्चे संभालने में भी माँ बाप तंग हो जाते हैं। बच्चों से तंग होकर उन्हें मोबाइल देना या पड़ोसी के घर बिना परखे भेज देना, ये भी माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। अनजान लोगों से सतर्क रहना, सही गलत का फर्क समझना, ये भी बच्चों को सिखाना होगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना, सभी फ्रेंड्स कर रहे हैं इसलिए हमें भी करना है, यह गलत है। जरूरी नहीं जो काम सभी कर रहे हैं वो सही हो। सही के साथ अकेले खड़े होने की मन की तैयारी भी बच्चों की करानी चाहिए। जो काम सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो सही हो। अगर सच के साथ, सही के साथ अकेले खड़े होना पड़े तो उसके लिए भी मन की तैयारी रखनी पड़ेगी। जिंदगी सिर्फ मौज मजा मस्ती नहीं होती, जिम्मेवारी भी उठाना है। सही कर्मों की पहचान भी बच्चों को देनी होगी। घर की सुख शांति वातावरण को खराब करके अपनी जिद पूरी करना, ये भी अच्छा संस्कार नहीं है। आज अगर हमने ऐसे संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसे संस्कार बढ़ते जाएंगे। आज अगर हमने इन संस्कारों को हंसी मजाक में लिया, ऐसे संस्कारों को बचपना समझा, तो बड़े होने के बाद अपनी जिद पूरी करने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, बच्चों को समय का भी महत्व सिखाना बहुत आवश्यक है। देर रात तक घर से बाहर रहना ये भी बच्चों के लिए सही नहीं है। ये कलयुग है, सतयुग नहीं। देर रात तक बाहर रहना ये हमारी सुरक्षा के लिए भी सही नहीं है। पहले का जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। लोगों में विकारी वृत्ति बढ़ गई है, विकारी दृष्टि बढ़ गई है। इसे रोक टोक करना नहीं कहा जाता, इसे आपके भविष्य को सुरक्षित करना कहा जाता है। स्वतंत्रता यह नहीं है कि हम अपनी सारी मर्यादाएं छोड़ दें, इसे स्वतंत्रता नहीं कहते। किसी एक गलती से, लापरवाही से भविष्य खराब भी हो सकता है। आजकल के बच्चों ने स्वतंत्रता का गलत मतलब ले लिया है। स्वतंत्रता यह नहीं है कि हम कैसे भी कपड़े पहनेंगे, रात में बाहर रहेंगे, इसे स्वतंत्रता नहीं कहते। इसे अपने भविष्य में होने वाले अनहोनी के प्रति लापरवाही कहते हैं। छोटे कपड़े पहनना इसे सभ्यता संस्कार नहीं कहते और ना ही इसे स्वतंत्रता का नाम देना चाहिए। फैशन के नाम पर हम बच्चों को अश्लीलता की ओर नहीं ढकेल सकते। दुनिया में लोगों की दृष्टि विकृत हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसे समाज में कैसे जीना है ये भी हमें बच्चों को सिखाना होगा। देर रात को घर पे आने के बाद बच्चों में ये डर जरूर होना चाहिए कि माँ बाप पूछेंगे कि इतनी देर कहाँ थे, इतना देर क्यों लगी। आजकल तो उल्टा हो गया है, बड़े ही डरते हैं छोटों से ये बोलने में कि इतनी देर रात तक घर से बाहर मत रहो। अगर बड़े हमें कोई सलाह देते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए देते हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते, वो बस हमें सुरक्षित देखना चाहते हैं। ये महसूसता बच्चों में होनी चाहिए। इसमें टोकने की बात नहीं है और ना ही स्वतंत्रता की बात है। जिंदगी दांव पर लगाकर देर रात तक घर से बाहर रहना ये स्वतंत्रता नहीं है। बड़े हमारा बुरा नहीं चाहते, वो बस हमें सुरक्षित देखना चाहते हैं। इस बात की महसूसता बच्चों में होनी चाहिए। हर घर की संस्कृति अलग है, हर घर की रीति रिवाज अलग है। जो रीति रिवाज हमारे घर के हैं वही रीति रिवाज दूसरों के भी घर होंगे ये जरूरी नहीं है। हर घर की रस्म रिवाज अलग है। हम जहां भी जाएं वहां के रस्म रिवाज में हमें खुद को ढालना आना चाहिए। जिंदगी हमेशा वैसे ही नहीं चलती जैसे हम उसे चलाना चाहते हैं। कभी कभी हमें जिंदगी के अनुसार भी चलना पड़ता है। हर जगह बच्चों की मनमानी तो नहीं चलेगी ना, इस बात का एहसास बच्चों को दिलाना बहुत जरूरी है कि हर घर हर जगह आपकी मनमानी नहीं चलने वाली, कभी परिस्थिति के अनुसार भी आपको चलना पड़ेगा। इससे एडजस्ट होने की, परिस्थिति अनुसार ढलने का संस्कार बच्चों में आएगा। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज के युग में बच्चों के पास सारी सुख सुविधाएं हैं। हमने ऐसा भी युग देखा है जब टीवी, फोन, इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज के बच्चों को जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं हैं। पहले के जमाने में दिखाई जाने वाली फिल्में भी कुछ न कुछ सिखा देती थी, कुछ न कुछ कहानी बताती थी। बचपन में टीवी पर लगने वाली फिल्में ऐसी होती थी कि पूरा परिवार इकट्ठे बैठकर देख सकते थे। आज हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि बच्चों को कौन सी फिल्में दिखाए, क्योंकि फिल्मों का बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन सब का बच्चों पर असर होता है। हमारे बचपन में स्नैक्स के रूप में भी हमें हेल्दी चीजें खाने के लिए मिलती थी, लेकिन आजकल के बच्चों को पैकेट फूड मिलता है जिसमें ढेर सारा प्रिजर्वेटिव मिलाया हुआ होता है, आर्टिफिशियल कलर मिलाया होता है, घटिया क्वालिटी का तेल इस्तेमाल होता है। बचपन में हमारा स्नैक्स चने, फुटाने, राजगीरा, कॉर्न, फल, ये सारी चीजें होती थी जो हेल्दी होती थी। खेल भी अलग होते थे, घर के आगे आंगन होता था और वही भागदौड़ वाले खेल होते थे, जिस वजह से शरीर की भी एक्सरसाइज अपने आप हो जाती थी। आजकल तो आंगन मिलेगा नहीं, वीडियो गेम, टीवी, मोबाइल, यही मनोरंजन के साधन बन गए हैं। हमारे बचपन में हर एक त्योहार उमंग उत्साह लाता था, खुशी लाता था। हर त्योहार में बनने वाला पकवान उस समय के हवामान, ऋतु के हिसाब से बनता था, लेकिन आजकल के भागदौड़ में पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स जैसे जंक फूड हमारे बच्चों के पकवान बन गए हैं। हमें बच्चों को वही खिलाना चाहिए जो हेल्दी हो, जो हेल्दी नहीं है वो चीजें अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को नॉनवेज जैसा तामसिक आहार भी नहीं देना चाहिए, नॉनवेज बच्चों के मन को कमजोर करता है, नॉनवेज का मन पर बुरा असर होता है। जितना हो सके बच्चों को सात्विक अन्न खिलाए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर तामसिक, नॉनवेज, मांसाहारी अन्न खिलाएंगे तो ऐसे बच्चों में डर, गुस्सा, नफरत, हिंसा के संस्कार बढ़ते जाएंगे। हमें ऐसे खाने से बच्चों को बचाना होगा। आजकल के बच्चों को बाहरी सुख सुविधाएं देना सिर्फ यही हमारी जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि इमोशनल हेल्थ पर भी अब हमें ध्यान देना होगा। आज हमारे बच्चे इंटेलिजेंट तो है लेकिन मन से कमजोर है, ये भी हमें स्वीकार करना होगा। केवल शरीर की हेल्थ पर ध्यान देकर नहीं चलेगा, बल्कि मन की हेल्थ पर भी अब हमें ध्यान देना पड़ेगा। शरीर की खुराक के साथ साथ मन के खुराक पर भी हमें ध्यान देना होगा। मेडिटेशन, प्राणायाम, ओम का उच्चारण, योगा, भ्रमरी आसन, ये सब हमें सिखाना होगा। जिंदगी में कब कौन सी परिस्थिति कैसे आएगी हमें नहीं पता, पर हर परिस्थिति के लिए बच्चों की मानसिक तैयारी भी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है राजयोग मेडिटेशन, ध्यान करना। मेडिटेशन से मन दुनिया की नकारात्मक बातों से हटकर परमात्मा से जुड़ता है। केवल परमात्मा ही है जो सबको शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ध्यान, यही हमारे बच्चों का सुरक्षा कवच है। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
3: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
4: ओम शांति।
3: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
4: थैंक यू।
3: मैं इतने साल से परेशान था एक वर्ड से, क्रिएट क्रिएट क्रिएट। एक एपिसोड में आपने जो क्लैरिटी कर दी कि आई एम नॉट ओनली द क्रिएटर ऑफ माय थॉट्स, लेकिन मैं हर चीज मेरी फ्यूचर में सीन्स भी करके क्रिएट करता हूं। और उससे मेरा फायदा क्या हो गया मालूम है? अब मैं ब्लेम गेम की जो मेरी बचपन की आदत थी ना, इसकी वजह से हो गया, मौसम ऐसा था, मुझे बुखार था, फलाने ने आवाज कर दी, उसने ये कर दिया, उसकी नौकर ने मेरा मूड खराब कर दिया, तो मैंने बच्चों को भी डांट दिया, मतलब कुछ भी कहीं से भी। अब तो ये हो गया है कि मैं ऐसा कॉर्नर हो चुका हूं इस अपने आप से कि जो भी करता हूं मैं करता हूं। कहीं बोलने को जगह ही नहीं है कि आई एम नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग।
4: वो चेन जो है वो हमेशा याद रखनी है, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी। हमारी सोच हमारे भाग्य में आएगी ही, चाहे वो सिचुएशन वैसी बन जाएगी, चाहे हमारा रिएक्शन वैसा हो जाएगा, चाहे आने वाली जो परिस्थिति है उसका रूप वैसा बन जाएगा, हमारी थॉट हमारी डेस्टिनी में आएगी ही। सो वी हैव टू टेक सो मच केयर। अब इसमें जब हमें ये याद रहा, आई एम द क्रिएटर, आई हैव द पावर टू चूज। क्रिएटर है लेकिन क्रिएटर के पास पावर टू चूज भी तो है। क्रिएट तो हम नेगेटिव भी कर सकते थे, लेकिन क्रिएटर के पास पावर टू चूज भी है।
3: एक और पावर भी है।
4: हाँ जी।
3: जो आपने सिखाया, पावर टू इरेज व्हाट वी हैव चोजन अर्लियर, जो हमारे इतने संस्कार बन गए। मैं कहता था मेरी आदत पड़ गई ना मुझसे निकल जाता है, वो भी नहीं बोल सकता अब मैं।
4: आई हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म।
3: रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म,
4: अब्सॉर्ब। तो हमें दूसरे की एनर्जी न अब्सॉर्ब करने न रिफ्लेक्ट करने, हमें ट्रांसफॉर्म करने है। हमें पास्ट की भी अपनी जो एनर्जीज क्रिएट की हुई है, जो थॉट्स क्रिएट किए, ट्रांसफॉर्म करने हैं। एवरी न्यू थॉट आई क्रिएट विल इन्फ्लुएंस माय डेस्टिनी। तो पास्ट में चाहे कुछ भी क्रिएट किया था, इट डजंट मैटर, वो हो चुका है। अब उसके ऊपर गिल्ट, उसके ऊपर रिग्रेट, उसके ऊपर के लेकिन अब मैं कैसे चेंज होऊंगा, नो, वो हो चुका है, इट्स फाइन। लेकिन अब नॉट अ सिंगल थॉट मोर टू गेट वेस्टेड। और जैसे हमने पिछली बार देखा, पॉजिटिव थॉट्स, सारा दिन में चेकिंग कितनी परसेंटेज है पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव मींस जो परिस्थिति आई उस परिस्थिति के लिए सही रिस्पांस क्या है, सही सोच क्या है। तो पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेसेसरी थॉट, ये करना है, यहां जाना है, आज ऐसे करना है। कई बार नेसेसरी के साथ नेगेटिव और वेस्ट जुड़ जाता है। नेसेसरी हम उसको बोल रहे हैं जो मंडेन है, उसमें ना हम कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ना कोई नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। थॉट क्रिएट हो रही है लेकिन उसकी क्वालिटी में कुछ नहीं है उस तरह का।
3: हाँ,
4: नहीं है, इट्स नेसेसरी। जैसे आपने कहा नाश्ता करना है, नेसेसरी थॉट, लेकिन टाइम पे बना क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, जिस तरह मैंने मांगा था वैसे बना क्यों नहीं, अब ऐसे बना है तो मैं खाऊंगा नहीं। हर रोज ऐसे ही बनता है, कितना भी इनको समझाओ ये ऐसे ही बनाते हैं, कल अगर ठीक से नहीं बना तो मैं नहीं खाऊंगा, ये नेसेसरी थॉट्स नहीं थे। नेसेसरी थॉट एक ही थी कि नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता करना है। तो नेसेसरी थॉट्स के साथ कब सूक्ष्म में अनअवेयर नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स जुड़ जाते हैं उसके चेकिंग, क्योंकि एवरी थॉट वी क्रिएट इज एनर्जी। तो हम अपनी एनर्जी को इस तरह से वेस्ट नहीं होने दे सकते। अब नेगेटिव थॉट्स में कौन सी आएंगी, सारी हमारी नकारात्मक चिंतन, जिसमें हम एंगर, जेलेसी, हर्ट, रिजेंटमेंट, ये सब उसमें आ जाएगा। वेस्ट थॉट्स में क्या आएगा? वेस्ट थॉट्स किसको कहेंगे?
3: वेस्ट ये क्यों हो रहा है, ये मौसम ऐसा क्यों है,
4: विच मीन्स एवरीथिंग जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना। दूसरे लोग, उनका स्वभाव, संस्कार, व्यवहार मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सोचते जाना। वी कीप थिंकिंग अबाउट सो मच व्हाट पीपल आर वेयरिंग,
3: हाउ पीपल आर बिहेविंग। ऐसे क्यों बोला, वो भी एक वेस्ट थॉट।
4: हाँ, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये वेस्ट थॉट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे बात करूंगा, मैं भी उसको दिखाऊंगा हर बार वो ही ऐसा करते हैं। दिस इज ऑल माई एंगर एंड रिजेंटमेंट दैट आई एम क्रिएटिंग। अब तो मैं बात ही नहीं करूंगा,
3: ये नेगेटिव थॉट,
4: मुझे करना ही नहीं है, जाए उनको अपने आप जो करना है कर ले। वेस्ट थॉट वॉज उनके बारे में सोचना, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम जो क्रिएट कर रहे हैं और करेंगे वो हमारे कंट्रोल में है। तो दूसरे लोगों का चिंतन करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो वो वेस्ट थॉट। पास्ट और फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो क्षण बीत गया उसके बारे में चिंतन वेस्ट ऑफ एनर्जी। जो क्षण अभी आया नहीं है, ऐसा होगा, कल ऐसा होगा, फिर परसों ऐसा, फिर अगले साल ऐसा, फिर ऐसा, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वेस्ट ऑफ एनर्जी। आज अगर हम चेकिंग करें तो हम बहुत ज्यादा समय बीती हुई बातों के बारे में चिंतन करते हैं और काफी सारा समय आने वाली बातों के बारे में सोचते हैं। दोनों मुझ आत्मा के कंट्रोल में नहीं है। जो बीत गया, इमेजिन द एनर्जी दैट इज गेटिंग इन्वेस्टेड इन समथिंग दैट इज ओवर।
3: लेकिन ओवर में भी दो है। एक दुख वाली बातें हैं, इसने ऐसे बुरा बोला, अच्छा भी जब सोचते हैं क्या जमाना था, उसके अंदर भी नेगेटिव,
4: विच मीन्स अभी नहीं है वो।
3: हाँ, तो अब लैक बता रहे हैं ना।
4: तो अब अगर लैक है तो वो अच्छी फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकता।
3: नेगेटिव तो नेगेटिव हो रही, पॉजिटिव जो पहले एंजॉय कर चुके उसको भी मैं नेगेटिव कर रहा हूं।
4: कर रहे हैं, यस। एक दिन, मतलब एक घंटा भी अगर हम चेक करें ना, व्हाई सो मच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द वर्ल्ड ऑफ द पावर ऑफ नाउ। स्पिरिचुअलिटी मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट।
3: प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट टू यू बाय गॉड। इतना सब बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन
4: सी द पावर ऑफ नाउ मीन्स क्या, हमारी शक्ति कौन से क्षण पर है। जो बीत गया उस पर भी नहीं, जो आने वाला है उस पर भी नहीं,
3: अब
4: सिर्फ अब। दिस इज द ओनली थिंग इन माई कंट्रोल। क्या हो रहा है, ये मोमेंट है, ये मोमेंट है। इस मोमेंट अगर हमने बीती हुई बात के बारे में सोचा, उतनी देर में ये वाला मोमेंट क्या हो जाएगा,
3: बीत भी गया, निकल गया, पास्ट
4: ये वाला भी बीत गया। हम अगले वाले पे आ जाएंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे या उसके बारे में सोचेंगे। जितनी देर हम इस वाली जगह पर हैं, अगर हम इसके बारे में न सोचकर इधर या उधर सोच रहे हैं, वी आर वेस्टिंग दिस मोमेंट।
3: और दी अदर वे ऑल्सो, मैं कल से ये करूंगा तो वो कल,
4: दैट इज ऑल्सो फ्यूचर।
3: अभी कल ही कल, कल रोज कल का कल आता है
4: फ्यूचर। परमात्मा एक बहुत अच्छी लाइन हमें देते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं,
3: अभी नहीं तो कभी नहीं,
4: अब नहीं किया तो नहीं होगा, क्योंकि अब में पावर है आपके पास। जो करना है अभी कर लो, आज भी नहीं अभी, ये भी नहीं कि आज कर लेंगे, क्योंकि सोचा जो करने का अभी कर लो, क्योंकि पावर अभी में है। एक्चुअली हम बहुत कम टाइम प्रेजेंट में बिताते हैं। अगर हम प्रेजेंट में होंगे, माइंड विल बी वेरी पीसफुल। इट्स ऑलवेज उसने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों किया था, अगली बार मैं ऐसा करूंगा। इट्स ईदर हियर और हियर। प्रेजेंट में अगर रहने लगे, माइंड साइलेंट होने लगेगा। दैट्स वाई मेडिटेशन में बहुत अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि माइंड साइलेंट होने लगता है, क्योंकि वो ना पास्ट का सोच रहा है ना फ्यूचर का सोच रहा है, प्रेजेंट में थॉट क्रिएट कर रहा है। आपने पिछली बार कहा कि 2 मिनट मेडिटेशन करने से माइंड को भी बहुत अच्छा लगा, बॉडी को भी बहुत अच्छा फील
3: ऐसा लगा, 6-7 घंटे अच्छी नींद करके उठा,
4: क्योंकि उस 2 मिनट में भी हमने क्या किया था, बहुत प्योर एलिवेटेड थॉट क्रिएट किए। 2 मिनट के लिए सही, कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट नहीं क्रिएट हुई। दो मिनट यहाँ इतना अच्छा फील हो गया और उस दो मिनट की सारी थॉट्स का वाइब्रेशन पूरी बॉडी को भी मिल गया. माइंड ऑल्सो फील्स चार्ज्ड, बॉडी ऑल्सो फील्स रिलैक्स्ड. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर एक नई प्रोग्रामिंग बननी शुरू हो गई उस दो मिनट के अंदर.
3: ये नहीं समझा मैं, क्या नई प्रोग्रामिंग बननी शुरू?
4: जब दो मिनट हमने ये थॉट क्रिएट की, आई एम अ सोल, मैं आत्मा शरीर का मालिक, मैं हर थॉट का क्रिएटर. ये सारी थॉट्स हमारी पहले की प्रोग्रामिंग से डिफरेंट है. पहले हमारी प्रोग्रामिंग क्या थी? आई एम तो बॉडी, नेम, पोजिशन. थॉट्स तो अपने आप आती हैं, परिस्थिति की वजह से थॉट्स हो जाते हैं. आई एम द क्रिएटर, नहीं, सिचुएशन की वजह से ऐसी वाली थॉट आती है. मेरे रिएक्शन का जिम्मेवार कौन? परिस्थिति या लोग? ये हमारी प्रोग्रामिंग थी, यही हमारी प्रोग्रामिंग थी. सारी प्रोग्रामिंग चेंज हो रही है दो मिनट के अंदर.
3: और उस प्रोग्रामिंग को इतना अच्छा मन आर्ग्यू करता था, इतना अच्छा वो लॉजिक बताता था. देखो, आपकी सर्कमस्टांसेस ये थी, आपका परिवार ऐसा था, माता पिता के ऊपर से आपको ये वाले संस्कार मिले, सपोजिंग गुस्से वाले, लड़ाई किसी को डांट ये मिले, वो आदमी ऐसा बुरा था, ये सब. और फिर अपना देखो जो होना है सो होके रहता है.
4: जैसे एक सीडी है सपोज, उस पर ये सब कुछ रिकॉर्डेड था कि ये मिला इनकी वजह से, हुआ इसकी वजह से, ये सारे गाने रिकॉर्डेड थे. राइट, अब ये गाने सीडी पे रिकॉर्डेड होंगे तो यही गाने सारा दिन बजेंगे.
3: सही बात,
4: यही बजेंगे. कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी हमारा रिएक्शन होगा, इसमें से कोई गाना बज जाएगा कि क्या करूं, हेरिडिटरी संस्कार है, क्या करूं, सिचुएशन है, क्योंकि गाना ही वो रिकॉर्डेड है, प्रोग्रामिंग ही वही है. अब जब हम दो मिनट साइलेंस में बैठे और हमने कॉन्शियसली ये थॉट क्रिएट की, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टिमुलस. परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मैं मालिक हूं, मैं हर सोच का रचयिता हूं. ये हमने थॉट क्रिएट की तो हमने सीडी पे धीरे धीरे क्या शुरू किया?
3: नई रिकॉर्डिंग
4: हुई तो कहीं ना कहीं वो सारा दिन में रिकॉर्डिंग तो यूज होगी, वो गाना तो बजेगा ही.
3: और उसको थोड़ा थोड़ा ओवरपावर भी कर देता है नई रिकॉर्डिंग, पुरानी थोड़ी
4: रोज करने से. लेकिन एक दिन भी किया जब, तो एक शुरुआत हुई,
3: एक पोर्शन तो रिकॉर्ड हुआ.
4: नेक्स्ट डे फिर उस पर करेंगे, थर्ड डे फिर उस पर करेंगे, फोर्थ डे करेंगे. अब आप सोचिए, अगर रोज ऐसा होगा तो परिवर्तन नहीं आएगा, आना ही है.
3: जिसको भी हम फीड करेंगे वही ग्रो करेगा ना.
4: जिसको भी हम करेंगे ना, जहां जिस थॉट को हम क्रिएट करके एनर्जी देंगे. अभी क्या कर रहे थे? वो वाली प्रोग्रामिंग ब्लेम गेम की, उसको हम रोज एनर्जी देते थे.
3: तेरी गलती नहीं है.
4: हाँ, उसकी वजह से बचपन से हमें सिखाया भी वो गया, समाज भी वही बोल रहा है, हमने भी वो एक्सेप्ट किया, हम बोलते गए. वो रिकॉर्डिंग कितनी स्ट्रांग है, इसीलिए आज भी हम अनुभव करेंगे कि हम सुबह नई रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन दिन में बीच में मन फिर से पुराना वाला गाना सुनाएगा.
3: है ज्यादा है ना वो,
4: अब वो स्ट्रॉन्गर है ना, थोड़ा स्ट्रॉन्गर है. वो एक होता नहीं प्ले, ऑटोमेटिक मोड में चला गया वो गाना, लूप में बजता रहता है. अब धीरे से नया गाना कॉन्शियसली पहले रिकॉर्ड करना है, फिर सारा दिन में कॉन्शियसली उस गाने को प्ले करना है. अगर चलते चलते पुराना गाना प्ले भी हो जाए, ये बात आई, हमने फिर ब्लेम किया, फिर वो पुरानी रिकॉर्डिंग में चला गया, लेकिन अब हमारे पास नया गाना है, तो कॉन्शियसली वो नहीं होते थे.
3: हाँ, रिकॉर्ड
4: वो
3: नीडल के साथ जो प्ले होते थे,
4: तो नीडल अगर एक जगह पे अटक जाता था तो उसको वहीं बजाते रहता था, तो उसको कॉन्शियसली उठा के फिर दूसरे ट्रैक पे डालना है. तो सुबह ट्रैक बनाना है. और दिन में अगर गलती से अभी भी पुराना ट्रैक बज रहा है तो नीडल को कॉन्शियसली उठा के नए ट्रैक पे डालना है. इवन इफ इट हैपेंस आफ्टर द सिचुएशन, के बात आई, हमने पुराने तरह से रिएक्ट भी कर दिया, सब हो गया, कोई बात नहीं, सोच तो अभी भी चल रही है ना, क्योंकि सोच जो चल रही है वो ट्रैक को रीअफर्म करेगी. तो फिर से ध्यान से उठा के नीडल को नए ट्रैक पे डालना है कि ये सारा हो गया, लेकिन आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस, आई एम द क्रिएटर. तो हमने नीडल को नए ट्रैक पे डाला, धीरे धीरे नया वाला ट्रैक क्या होता जाएगा वो पावरफुल होता जाएगा एंड देन वी विल सी सोच बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा और हम कहेंगे थोड़े दिन बाद, मेरे को पता नहीं चला ये चेंज कब आया. वी डोंट कम टू नो व्हेन दैट चेंज हैपेंस. इट्स नॉट ऐसे चेंज नहीं है ना वो कि अभी ऐसे ऐसा नहीं. वो सिर्फ रोज की रिकॉर्डिंग है एंड थोड़े दिन के बाद सडनली कोई परिस्थिति आएगी और आप पाएंगे कि हम एक अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं एंड फिर वी विल रिफ्लेक्ट बैक एंड से पहले तो मैं ऐसे नहीं करता था, आज मैंने ऐसे रिस्पॉन्ड कैसे कर दिया. ओ आई हैव चेंज्ड दिस.
3: तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो इरेज करने की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज को डिलीट करने की भी जरूरत नहीं, नई रिकॉर्डिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ आराम से.
4: आत्मा पे से हाँ कुछ भी डिलीट नहीं होता कभी,
3: लेकिन हम यूज ना करें
4: हाँ
3: तो वो कमजोर तो पड़ जाती है ना बात.
4: यूज नहीं करना है
3: पड़ी
4: है हाँ, तो डिलीट करने की तो मेहनत करनी ही नहीं है.
3: जो चीज मुझे पसंद है
4: बिल्कुल
3: नई, नए फोल्डर को ही खोलना है,
4: नया क्रिएट करना है. सुबह सारा दिन में उसको यूज करना है, सुबह फिर क्रिएट करना है, सारा दिन में फिर यूज करना है. जब नई प्रोग्रामिंग क्रिएट और यूज होती गई तो थॉट से डेस्टिनी तक ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है. तो आत्मा की पहली शक्ति या कहें आत्मा का पहला रोल है मन. दुनिया में कई बार जब हम शब्दों को यूज करते हैं तो माइंड एंड सोल इज यूज्ड सेपरेटली, तो मन अलग. यू नो कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं या बुक्स के टाइटल्स भी होते हैं तो कहते हैं बॉडी माइंड सोल. माइंड एंड सोल इज नॉट डिफरेंट, एक ही शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है. दो एनर्जीज नहीं है अंदर, एक एनर्जी है जो उसको चलाती है, जो सोचती है, तो हम उसको मन कहते हैं. अब मैं आत्मा, एक बार हमने थॉट्स क्रिएट करने शुरू कर दी और इतनी सारी हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तब मैं आत्मा की दूसरी फैकल्टी बुद्धि, बुद्धि वो क्या करेगी, थॉट्स को इवैल्यूएट करेगी, समझेगी, परखेगी, चूज करेगी, डिसीशन लेगी. इंटेलेक्ट
3: के मन, माइंड के बाद इंटेलेक्ट.
4: माइंड तो थॉट्स क्रिएट कर रही है ना,
3: मन ने थॉट क्रिएट किया,
4: मन ने थॉट
3: और सिलेक्शन किया इसने,
4: बुद्धि,
3: बुद्धि ने,
4: इंटेलेक्ट जिसको हम विवेक भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं,
3: पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन,
4: पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिसीशन, बुद्धि जिसके लिए आपने उस दिन कहा था कि अंदर एक आवाज आती है,
3: अंदर वाला,
4: ये करो ये नहीं करो, ये आवाज आती है, ये वो बुद्धि की आवाज है, वो विवेक जो बताता है, क्योंकि उसके पास सब नॉलेज है, वो बताता है ये करो ये नहीं करो. अब हमारी चॉइस है कि उस आवाज को सुनना और इम्प्लीमेंट करना. तो थॉट्स के बाद इमीडिएटली जो सेकेंड स्टेज आएगी वो है थॉट्स को इवैल्यूएट करके उस पर डिसीशन लेने की. जब हम बॉडी कॉन्शियस हैं और हमारी अटैचमेंट रोल पोजीशन नाम बॉडी से है तो हमारी कॉन्शियसनेस में हमेशा फियर और एंगर रहता है. देयर विल ऑलवेज बी फियर. फियर एंड एंगर आर द टू डोमिनेंट इमोशंस ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, फियर एंड एंगर डोमिनेंट. उसके बाद सेकेंडरी दूसरी आएंगी सारी, ये डोमिनेंट है क्योंकि जब हमारी किसी से अटैचमेंट है, चाहे अपने शरीर से, चाहे अपनी पोजीशन से, चाहे अपने आइडिया से कि ये मेरी राय है,
3: एक्वायर्ड प्रॉपर्टी,
4: एक्वायर्ड, जहां अटैचमेंट है वहां खोने का डर, तो फियर हमेशा होगा. और जहां फियर आएगा तो एंगर आएगा क्योंकि वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दैट. तो फियर इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे उसको खोने का डर है, और एंगर इसलिए क्रिएट हो रहा है ताकि वो मेरा प्रोटेक्ट करने का तरीका है. सपोज आप एक पर्टिकुलर काम करने के तरीके से अटैच्ड हैं, आप कहेंगे ऐसे ही होना चाहिए, वी आर नॉट रेडी टू डिटैच एंड सी इफ देयर इज एनी अदर पॉसिबल वे, ऐसा ही होना चाहिए, मेरा ही कहना मानना चाहिए, तो हमेशा एक फियर होगा कि अगर मेरे अनुसार नहीं हुआ तो मेरे अनुसार करने के लिए हमने तरीका कौन सा अडॉप्ट करना है, हमने जोर से बोल के वो बात कहनी है ताकि उसके चांसेस ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड वो बढ़ते जाएंगे. तो फियर एंड एंगर विल गो हैंड इन हैंड विद बॉडी कॉन्शियसनेस. जब फियर और एंगर होगा तो इंटेलेक्ट जिसने डिसीशन लेनी है, इंटेलेक्ट जिसकी वो इंट्यूटिव आवाज है, वो इंटेलेक्ट इस फियर और एंगर में राइट और रॉन्ग का सही डिसीशन नहीं देती, क्योंकि उसके पास थॉट्स ही सारी कौन सी आई है फियर और एंगर की। अब इनमें से वो राइट और रॉन्ग किसको बोलेगा?
3: तो वो चुप रहेगा,
4: उसके पास नहीं है। इसीलिए आज हम डिसीशन लेने से डरते हैं, लोग आजकल डिसीशन लेने से डरते हैं।
3: क्यों?
4: और उसे जाके पूछते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि, निर्णय शक्ति कोई यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वहां कुछ अच्छा दिख नहीं रहा उसमें से, किसमें से निर्णय ले क्या करना है।
3: आपका मतलब ये कि जो बुद्धि काम करना छोड़ देती है क्योंकि उसके पास गुड एंड बैड तो है ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव है।
4: इसने अपने विवेक को मार दिया है, इसकी कॉन्शियंस खत्म हो चुकी है, वर्ड्स नहीं यूज करते हम ऐसे,
3: क्योंकि उसके पास फियर और हेट्रेड और एंगर देंगे। हाँ। तो क्या सही है कैसे बताएगा?
4: क्योंकि वो रूट कॉज बॉडी कॉन्शियस है, उसमें से अच्छी थॉट आ नहीं सक रही। अब जितना हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भी मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो मेडिटेशन करने से हम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाएंगे, हम इन चीजों से डिटैच होते जाएंगे।
3: किन चीजों से डिटैच हो गए हम?
4: आई विल यूज द बॉडी बट आई विल बी डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी। एंड डिटैच्ड मीन्स व्हाट? द इमेज दैट आई हैड क्रिएटेड, आई एम द बॉडी, आई एम डिटैच्ड फ्रॉम दैट बिकॉज नाउ आई नो आई एम नॉट द बॉडी।
3: फियर ऑफ लूजिंग भी चला जाएगा?
4: फियर ऑफ लूजिंग तो जाएगा ही, मरने का डर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को मालूम है कि मैं नहीं मरती, शरीर बदलना है, चोला बदलना है, इस शरीर में इतने समय के लिए है, अच्छे कर्म करें, आगे चलना है।
3: एंड फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस?
4: वो भी मालूम है कि उन्होंने भी शरीर छोड़ना है। फियर किस बात का? फियर ऑफ द अननोन होता है, जहां नोन है उसका क्या फियर? उन्होंने भी जाना है एक दिन।
3: बट ये नोन कहां है? तो कभी याद ही नहीं आता उन्होंने जाना है।
4: ये नोन नहीं है कि हर एक आत्मा ने शरीर छोड़ना है।
3: अगर मेरा एक दोस्त मर गया, मुझे ये नहीं लगता कि मैं भी मरने वाला, कभी भी मर सकता हूँ।
4: मुझे भी ये शरीर छोड़ना ही है,
3: ये बस एक मालूम है बैकग्राउंड में।
4: बैकग्राउंड में क्योंकि वो फैक्ट है।
3: हाँ।
4: फैक्ट है,
3: अभी मर जाऊंगा, जैसे उसको थोड़ी मालूम था जो
4: हमें ये नहीं सोचना कि कौन से क्षण शरीर छोड़ना है। पहली बात, ये वर्ड भी जो है ना कि मैं मर जाऊंगा, ये वर्ड राइट नहीं है। मैं नहीं मरता, शरीर खत्म होगा, मैं नहीं मरता, मैं मर जाऊंगा भी हम क्यों कहते थे? क्योंकि मैं सोचा मैं कौन?
3: बॉडी।
4: तो मैं मर जाऊंगा, पंडित जी आके कहते थे आत्मा अजर अमर अविनाशी, वो कहते थे वो मर गया, वो वहां से कह रहे हैं वो अजर अमर अविनाशी, हम कहते हैं फला मर गया। मर गया नहीं,
3: फलाने ने दूसरा चोला ले लिया।
4: हाँ, एक ड्रेस उतारी, दूसरा ड्रेस लिया, जर्नी गोज ऑन। आज आपने ये ड्रेस पहनी, कल आप दूसरी ड्रेस पहनेंगे। यस, दैट सोल विल नॉट बी विद अस, क्योंकि वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। वो हम मिस करेंगे कि जो हमारे साथ थे, जो हम रिश्ता उनके साथ शेयर कर रहे थे, आज वो हमारे साथ नहीं है। तो उनकी प्रेजेंस, उनका वो रिश्ता, वो हम मिस कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो मर गए, क्योंकि वो नहीं मर गए, वो आत्मा ने तो बस एक कॉस्ट्यूम चेंज किया है। अब वो आत्मा एक नया कॉस्ट्यूम, नए रिश्ते, नई लोकेशन, एवरीथिंग चेंज्ड, लेकिन आत्मा है। कभी भी किसी के लिए नहीं कहना कि वो मर गए। शरीर चेंज्ड, अब फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस नहीं हो सकता। मालूम है कि उन्होंने एक दिन जाना है, हमें सबका ध्यान रखना है, हमें अपना ध्यान रखना है, शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन इस भय में नहीं रहना कि हाय मुझे कुछ ना हो जाए। क्यों हमें ये फियर नहीं क्रिएट करना? क्योंकि एवरी थॉट आई क्रिएट,
3: आई एम क्रिएटिंग अ सीन,
4: आई एम क्रिएटिंग इम्प्लिकेशंस ऑफ दैट थॉट। ऐसे ही बैठे बैठे डर की थॉट तो नहीं क्रिएट कर सकते ना। डर की थॉट क्रिएट की, यहां भी हिले, यहां भी इफेक्ट हुआ, वातावरण में भी फैल गया। डर की थॉट ऐसे ही क्रिएट कर ली, होना तो है ही वो एक दिन। एक एक थॉट की क्वालिटी की पावर हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ये एक दिन होना, इट्स लाइक ये कुर्सी है, मालूम है ना एक दिन टूटनी है, मिली है जब तक प्यार से संभालेंगे, ऐसे नहीं कि कहीं भी उसको उठक पटक कर देंगे, ये भी नहीं करेंगे कि हाँ एक दिन तो खत्म होनी है ना तो कैसे भी फेंक दो, नहीं, प्यार से संभालेंगे, प्यार से रखेंगे, प्यार से यूज करेंगे, लेकिन हर रोज ये थोड़ी सोचेंगे हाँ इस कुर्सी को कुछ ना हो जाए, हाँ ये कुर्सी खत्म हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, इस कुर्सी के बिना मेरा कैसे चलेगा, ये एक एक थॉट, एवरीथिंग इज फॉर यू, उस कुर्सी को यूज करें, उस कुर्सी का ध्यान भी रखें, विच मीन्स अपने शरीर को यूज करें, अपने शरीर का प्यार से ध्यान रखें
3: और उसका धन्यवाद भी करें,
4: शुक्रिया रोज करें, उसी को तो यूज करके हम अपने कर्म कर सकते हैं, औरों के साथ बहुत अच्छे से रहें, औरों की हेल्थ का भी ध्यान रखें, लेकिन फियर की थॉट, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, तो वी हैव टू टेक वेरी गुड केयर कि मन क्या सोचता है, और मन सही सोचेगा फिर बुद्धि की शक्ति को हम बढ़ाएंगे कि बुद्धि निर्णय भी राइट लेगी। जब हम 2 मिनट भी रोज मेडिटेशन करते हैं, सोल कॉन्शियस स्थिति बढ़ती है, डिटैचमेंट टू ऑल दीज रॉन्ग इमेजेस होगा। डिटैचमेंट किससे? सब गलत इमेजेस जो मैंने सोचा था मैं हूं, शरीर, पोजिशन,
3: रोल, या मेरा है,
4: मेरा तो है लेकिन मैं हूँ,
3: मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पिता,
4: वो रिश्तों से,
3: वो जो वो
4: रिश्तों के इमेज से,
3: मैं ये हूँ
4: और
3: वो मेरे हैं,
4: यस,
3: इनको कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, ये
4: अब जैसे ये थोड़ा सा भी डिटैचमेंट हुआ इस इमेज से, फियर और एंगर कम हो जाएगा। जैसे फियर और एंगर कम हुआ, इंटेलेक्ट की आवाज, इंट्यूटिव पावर, सही और गलत, विजडम से आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी इंट्यूटिव पावर बढ़ती जाएगी, कि वो हमें जो आवाज मिलती थी ये करना है ये नहीं करना, वो बहुत स्ट्रांग मिलेगी और हम उसको फॉलो करेंगे। तो माइंड, सेकंड पावर ऑफ द सोल, सेकंड फैकल्टी ऑफ द सोल, इंटेलेक्ट, फिर हम देखेंगे कि थर्ड फैकल्टी क्या है उसके बाद,
3: अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू सो मच।
4: ओम शांति।
5: The soul has 3 faculties, mind, intellect and sanskars. Mind creates different types of thoughts. Elevated thoughts are thoughts of soul consciousness and supreme soul. Positive thoughts are seeing the best in every person and situation. Neutral thoughts are necessary thoughts of daily routine. Waste thoughts are thinking about other people and thinking about the past or the future. Negative thoughts are thoughts of stress, irritation, anxiety, fear or hurt. Toxic thoughts are of hatred, resentment, harm or violence. The thoughts of blame and negative emotions that we have been creating in response to situations have been recorded on the soul for many births. In meditation, we create pure thoughts of soul consciousness and personal responsibility, which come into action during the day. The second faculty of the soul is intellect. Mind creates different types of thoughts in the same situation. Intellect evaluates the thoughts and then takes a decision. The decision that the intellect takes comes into words and actions.
6: If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज के विशेष मेहमान डॉक्टर जीत सर हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और आप लंबे समय से हिंदी के प्रोफेसर हैं और अभी भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हिंदी एक हमारा जो है विषय है जिसके माध्यम से हम सभी लोग जो है बहुत ज्यादा अपना जो है अच्छा करियर बना सकते हैं। स्काई इज द लिमिट है। तो कहाँ कहाँ पर हम हिंदी सब्जेक्ट को लेकर मास्टरी करने के बाद कौन कौन सी जगह पर अपनी जगह बना सकते हैं, इस विषय को लेकर बातें करेंगे। तो डॉक्टर जीत सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। नमस्ते जीत सर, कैसे हैं आप?
3: मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ।
2: जी
3: सर, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और राष्ट्रभाषा की बात है। हिंदी दरअसल यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें या राज्यों की बात करें तो कक्षा 12 तक तो हम हिंदी पढ़ते ही हैं, कंपलसरी है उत्तर प्रदेश में।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: हो सकता है लेकिन सबसे पहले यदि हम रोजगार की बात करें हिंदी में, तो जितने भी मैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करूंगा विशेषकर, और जितने भी हिंदी क्षेत्र के राज्य हैं वहाँ इंटर कॉलेज में TGT और PGT अध्यापकों की बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं। यानी जो भी कॉलेज खुलता है, इंटरमीडिएट कॉलेज जो भी खुल रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी कॉलेज जो हो, उनमें इस पद की आवश्यकता पड़ती ही है। और यदि हम देखें राष्ट्रीय स्तर पर, तो केंद्रीय विद्यालय भी राष्ट्रीय स्तर पर है, वहाँ भी हिंदी की अध्यापकों की अति आवश्यकता रहती है। और वहाँ प्राइमरी में और TGT और PGT में भी अध्यापकों की भर्ती निकलती है, तो हम हिंदी के माध्यम से वहाँ भी हम रोजगार से जुड़ रहे हैं। अब बात आती है हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में भी हिंदी की पोस्ट रहती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनते हैं लोग हिंदी के। ट्रांसलेटर, यदि हम ट्रांसलेटर हो जाए तो उसकी वैकेंसी पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय सरकार भी खाली पड़ी रहती है।
2: अच्छा,
3: दरअसल बच्चों को बहुत सारी जानकारी नहीं प्राप्त होती कि MA हिंदी करने के पश्चात आप 1 साल का या 2 साल का ट्रांसलेटर का एक प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग है, यदि हम उसको कर लेते हैं तो हम अनुवादक की पोस्ट आराम से प्राप्त कर सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: इसके अतिरिक्त भी सबसे बड़ा जो जॉब का क्षेत्र है वो पत्रकारिता है। और इससे भी अधिक कहना चाहिए फिल्मी दुनिया है।
2: अच्छा,
3: फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा जॉब हमारे हिंदी क्षेत्र के हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हिंदी भाषी लोग हैं या हीरोइन है, जिन्हें हम हीरोइन की भूमिका में देख रहे हैं, उन्होंने पैसा कमाने के लिए और रोजगार से जुड़ने के लिए हिंदी सीखी और

0: किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एक हिंदी में एक व्याकरण जो भाषा के क्षेत्र में व्याकरण आता है, यदि हम लोग व्याकरण को अच्छी तरह से समझ सकें तो पत्रकारिता के माध्यम से और फिल्म दुनिया की पटकथा हुई या और बहुत सारे चीजें हैं जो कविता लेखन है, मंच पर आजकल कविता खूब पढ़ी जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से लोग नाम रोशन कर रहे हैं। कुमार विश्वास का नाम पूरा
1: सबसे पहले आता है
0: सबसे पहले आता है और कई करोड़ रुपए का मतलब वो अर्निंग करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनका सिर्फ काम कविता पढ़ाने सुनाने का है, लेकिन वो मतलब ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा है उनका, बहुत अच्छी जीएसटी देते हैं वो बेचारे। तो
1: बिल्कुल,
0: इसका मतलब ये है कि हिंदी सब्जेक्ट कोई कमजोर तो है नहीं सर, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें उसे अलग तरीके से तैयार करने की आवश्यकता है। हमारी रामायण हो, महाभारत हो और गीता हो, ये सब हिंदी में ही तो लिखे हुए हैं और हिंदी के पाठक बहुत हैं, हिंदी को पढ़ने वाले बहुत हैं, हिंदी को समझने वाले बहुत हैं, पर जब तक हमारे मन में ये धारणा बनी रहती है कि हिंदी विषय जो है बहुत कमजोर है, तब तक हमारे इस समाज में बड़ी विकृति और बहुत मतलब परेशानी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो मेरा कहना यह है कि हिंदी विषय में रोजगार के अवसर बहुत हैं।
1: जी सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को, आज जो लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन सभी को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि वह हिंदी जो है सिर्फ एक भाषा पढ़ना या भाषा सीखना नहीं है, बल्कि हिंदी के साथ जुड़कर हम अपने जीवन बना सकते हैं, अपना पूरा करियर जो है अच्छा फ्रेम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग, जैसे अभी सर ने बहुत अच्छी बात बताया, कुमार विश्वास सर का नाम लिया, जिन्होंने हिंदी के माध्यम से पूरी दुनिया में एक नई चेतना, एक नई जागृति लाई और खुद अच्छे जो है वक्ता के साथ साथ बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे लिटरेचर है, फिल्मी दुनिया की बात करें, महाभारत कहे, रामायण करे, जितने भी हमारे शास्त्र हुए हैं, भारत के हिंदू शास्त्र जिसको कह सकते हैं हम लोग, वो सारी चीजें हिंदी में है और उसको हिंदी में लोग सुनना पसंद भी करते हैं। इसके साथ में आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि फिल्मी दुनिया एक बहुत बड़ा जो है करियर का ऑप्शन है, जहां पर हिंदी के साथ जुड़ी हुई कई गतिविधियां आप कर सकते हैं, हिंदी सिखाने के से लेकर जो है हिंदी लिखने और फिर उसके साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप फिल्मी दुनिया में काम कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारी ट्रांसलेशन वाले जो काम है वो भी, आप अगर हिंदी सीख लेते हो तो बहुत सारे विदेशी भाषाओं को हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों के बीच में उसको रख भी सकते हो। इवन अपने भारत में भी जितनी सारी भाषाएं हैं, उन सभी का जो है ट्रांसलेशन अगर हिंदी में करना हो तो उसमें आप महारत हासिल कर लेंगे तो वो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को एक और बात पूछना चाहूंगा सर को। डॉक्टर जीत सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होते हुए और मैं चाहूंगा कि आप कैसे हिंदी से जुड़े, आपकी शुरुआत कैसे लिया आपने, अपनी थोड़ी यात्रा बताइए बचपन के दिनों में, क्या आपको ऐसा लग रहा था कि बड़ा होकर मैं हिंदी का ही मास्टरी करूंगा, हिंदी बच्चों को पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ था या फिर कुछ आप और सोचे थे और कुछ और हुआ, ऐसे क्या है जी?
0: दरअसल सर, हमारी जो जीवन पृष्ठभूमि रही वो गांव की रही सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो गांव में हिंदी में भी तीन प्रकार की शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे तत्सम तद्भव शब्द है, इसे हम यदि हम इस तरीके से मान लेंगे, आर्य भाषा परिवार के शब्दों का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। तो जैसे तत्सम तद्भव और शब्द आए, तो तत्सम तद्भव और एक देश शब्द है, ये तीन भाषाओं के हम शब्दों को, ये हिंदी के ही है, मूल से हिंदी ही है, तो ये तीन वर्गों में यदि हम इन शब्दों को बांटते हैं तो उसको समझ लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ बोल रहे हैं। जैसे बताने के लिए हम ये कह सकते हैं कि गांव में वो ताकत है जो शहरों का रोज निर्माण करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शहरों में कोई ताकत नहीं है जो गांव का निर्माण कर सके, अर्थात जो देश शब्द है उनमें अपनी ताकत है, उनमें अपनी गति है, मतलब तत्सम शब्दों का निर्माण देश शब्द करते हैं, ना कि तत्सम शब्द देश का निर्माण करते हैं, लेकिन देश शब्द ही तत्सम शब्दों का निर्माण करते हैं, लेकिन तत्सम शब्दों से देश नहीं बनते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर जीत सर है जिन

से हम बातें कर रहे हैं हिंदी को लेकर, हिंदी से कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद। और बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर जीत सर से हो रही हैं, करियर ऑप्शन को लेकर, करियर को लेकर, और हिंदी विषय में करियर कैसे कर सकते हैं इस विषय पर सर बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं, जहां पर उन्होंने ये बताया कि हिंदी को लेकर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट, बहुत सारे जगह पे आप अपना करियर जो है हिंदी के वजह से अच्छा कर सकते हैं, और हिंदी की वजह से आपकी एक जो है छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक आपकी पहचान बन जाती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर जीत सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, करियर को लेकर आप क्या सोचते थे 10th या 12th में या डिग्री हासिल करने के बाद? थोड़ा सा अपना निजी अनुभव सुनाइए।
1: सर, मैं ये मेरा अनुभव ये था, और मैं बचपन से ही अध्यापक बनना चाहता था।
0: अच्छा, अध्यापक बनना चाहते थे।
1: हाँ, दरअसल क्या हुआ कि बचपन में जब मैं 5th क्लास का स्टूडेंट था, तो जनपदीय स्तर पर एक नाटक खेला गया, जिसमें अच्छा, गुरुजी मतलब एक शिष्य और गुरु का उसमें रोल था, तो मुझे वहाँ अध्यापक बनाया गया। और 5वीं क्लास के स्टूडेंट को एक दाढ़ी वाड़ी सब बना के मतलब अध्यापक की भूमिका को मतलब बनाया गया। तो मुझे उस दिन से ये समझ में आया कि मुझे एक अच्छा आदर्श अध्यापक बनना चाहिए, और मैं उसी तरीके से फिर तैयारी करता रहा। NCERT अजमेर से मैंने BEd किया, और उसके बाद फिर मैं केंद्रीय विद्यालय में 16 इयर्स की नौकरी की मैंने, और फिर मेरा लोक सेवा आयोग इलाहाबाद से मेरा सिलेक्शन ये हायर एजुकेशन के लिए हो गया, और अब मुझे 17 साल यहाँ भी हो गए हैं।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया।
1: हाँ, तो मेरी जैसे मैं सर सेवानिवृत्ति पा चुका हूँ जून में, इसी जून में 23 जून,
0: बहुत बढ़िया,
1: 23 को, तो 33 साल 3 महीने मेरी ये जॉब रहा। और हिंदी को मैं आत्मा के रूप से मानता हूँ।
0: क्या बात,
1: हिंदी में सांस है, जीवन है, आत्मा है। हिंदी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते सर। और यदि कोई भी अध्यापक इस बात को या कोई भी स्टूडेंट ये मान ले कि भाषा कोई कमजोर नहीं होती सर, भाषा सब अच्छी है, सब बढ़िया है, सब स्तरीय है, लेकिन जिस भाषा में हम स्वप्न देख सकते हैं, जिस भाषा में हम व्याख्या आराम से कर सकते हैं, जिस भाषा से हम दूसरों को अपने पास तक बुला सकते हैं, रख सकते हैं, तो वह भाषा हिंदी ही है, और हिंदी ही होनी चाहिए।
0: सही बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बताया सर। और मैं चाहूंगा कि आपका जो पढ़ाई वगैरह जहाँ पर हुआ, उनसे कुछ ऐसे अनुभव सुनाइए स्कूल कॉलेज के आपको याद हो।
1: जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इंटर कॉलेज का एक अनुभव मुझे याद आ रहा है सर।
0: जी,
1: एक हमारे अध्यापक थे, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, वो शनिवार के दिन निबंध लिखने के लिए दिया करते थे हमको।
0: क्या बात है,
1: शनिवार के दिन केवल कि आपको एक किताब से निबंध लिख के लाना है, और अगले सोमवार को या अगले ही शनिवार को मैं उसे निबंध को देखूंगा।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: 50-40 बच्चे थे हम लोग। अच्छा, उन अध्यापकों से मैं डरता बहुत था। हालांकि इंटरेस्ट था मेरा सब्जेक्ट। एक बात और भी थी कि उनके जो उनका जो पुत्र था वो भी मेरे क्लासमेट था।
0: अच्छा,
1: दोनों हम क्लासमेट थे सर। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि शनिवार के दिन उन्होंने कोई निबंध बताया और मुझे याद था, क्योंकि वो पिटाई भी अच्छी किया करते थे उस जमाने में। अब तो पिटाई खैर,
0: अब तो पिटाई का बताना भी मुश्किल है,
1: अब तो शब्दों का भी मामला खराब हो गया है।
0: बिल्कुल।
1: तो अगले शनिवार को, जैसे ही अगला शनिवार आया, तो सर ने खड़े कर दिए, निबंध लिखा है। तो मुझे याद था, मैं निबंध की कॉपी लेके गया था, क्योंकि 8 दिन में ना बच्चा वैसे ही भूल जाता है, शनिवार को बताया, शनिवार समझ ही नहीं आया, तो शनिवार को कॉपी नहीं ले जाएगा। वहाँ हाथ खड़े हुए तो निबंध की कॉपी हमने दिखाई सर। उस दिन से और सब बच्चों की पिटाई बहुत हुई। सिर्फ मैं एक ऐसा बच्चा था, मैं एक बच्चा था कि वो बचा, बचा, उन्होंने निबंध पर लिखा था, वो वेरी गुड दिया गया। और उस दिन के बाद तक, मतलब जब तक हमारी मुलाकात उनसे होती रही, मतलब कॉलेज से बाहर आ जाने के बाद भी, वो मुझे अच्छे स्टूडेंट के रूप में मानने ही लगे। और मैंने मूक चुनौती स्वीकार की कि जो सर के पुत्र हैं उनसे मेरे हिंदी में अधिक नंबर आए, आने चाहिए कायदे में, और वो ऐसा ही हुआ। मेरे नंबर 75 आए उस समय इंटर कॉलेज, इंटर में होता था, इंटर में, और उनके 65 आए, उस बच्चे के 65 आए। तो वो अध्यापक मुझसे कहने लगे कि दावत चाहिए मुझे आपसे। जब मैं टीसी कटाने लगा, तो कहने लगे मुझे दावत चाहिए। जो वहाँ क्लर्क थे, लिपिक थे, वो बहुत सज्जन आदमी थे, बड़े समझदार थे। कहने लगे सर आपने इस बच्चे ने तो जीत सिंह ने तो कॉलेज का रिकॉर्ड तोड़ा है, दावत इससे उल्टी दीजिए, आप इससे दावत क्यों मांग रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो एकदम गुरुजी तैयार हो गए, कहने लगे हाँ ठीक है ठीक है मुझे दावत देनी चाहिए और चलो चलते हैं वहां मार्केट में और दावत खिलाते हैं, दावत किसको खानी थी क्योंकि मैं तो शिष्य रहा। तो ये मेरा उस दिन से मेरा मुझे लगा कि यार हिंदी में बहुत कुछ किया जा सकता है, करना चाहिए। उस दिन से मेरे अंदर ललक लगी कि एक सब्जेक्ट हिंदी जो सब्जेक्ट है उसे बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है, बढ़िया किया जा सकता है। दरअसल गड़बड़ क्या है, हिंदी में हम बहुत त्रुटियां करते रहते हैं, जैसे हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें भी गड़बड़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बहन कहाँ जा रही हो, तो हम बोलते हैं बहन उत्तर देती है कि आटा पिसाने जा रही हूँ, जबकि ये अशुद्ध वाक्य है सर। आटा तो पिसता ही नहीं, आटा तो पिसा पिसाया होता
2: है। जाने का क्या मतलब है?
1: हाँ क्या मतलब है, हमें ये बोलना चाहिए कि हम अनाज पिसाने जा रहे हैं या हम मक्का पिसाने जा रहे हैं, हम गेहूं पिसाने जा रहे हैं। बहुत हम ऐसी अशुद्धियां करते हैं सर, तो बहुत ही, मैं तो बच्चों को बहुत बोलता हूँ कि भाई आपके माँ बाप उस समय अनपढ़ रहे होंगे तो बोल रहे होंगे, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो शुद्ध बोलिए। अब जैसे बोलते हैं कि मेरे जेब में 10 का नोट शेष बचा है ना, तो या तो शेष है या बचा है, एक ही बोलेंगे ना हम लोग।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन ऐसे ही चल रहा है ना। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। हिंदी भाषा बड़ी संवेदनशील है सर, बहुत ही संवेदनशील है। हम जरा सी गलती करने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हालांकि हर भाषा संवेदनशील है। जैसे हम हिंदी में सुख और सुख, अब कोई कहे कि मात्राएं तो गलत चढ़ाई है लेकिन अर्थ तो अलग हो गया ना सर। दिन और दीन कितना अंतर है, शिव और शव, धरती और आसमान का फर्क है सर। जरा सी गलती करने पर भी बहुत कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है सर।
2: सही बात है।
1: हालांकि इंग्लिश में भी ऐसे ही है, उर्दू में भी ऐसी भाषा है कि जरा सी भी हम यदि हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है। तो हम हमारे विद्यार्थियों से कहना ये है कि यदि हम ध्यान पूर्वक और गंभीरता से अपने विषय को लें तो इस विषय में भी हमारा जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो सकता है और हम देश के लिए एक राष्ट्र निर्माण का काम कर सकते हैं सर। अब मोदी जी ने सबको नमस्ते करने सिखा दिया, ये हमारी राष्ट्रभाषा का या हिंदी भाषा का ही तो कमाल है सर। दूसरे देशों के लोग भी यहाँ हिंदी बोलने की बात करते हैं और हमारे साहित्यकारों ने भी ऐसे कुछ काम किए हैं कि जो हिंदी क्षेत्र के लोग थे उन्होंने हिंदी सीखी। मधुशाला जो पुस्तक है सर, मधुशाला पुस्तक की 50-60 पैरोडी है उसमें केवल, और उसको सीखने के लिए मतलब उसको पढ़ने के लिए अंग्रेजों ने, बहुत सारे अंग्रेज जो थे उन्होंने हिंदी सीखी सर, तब उस किताब को पढ़ा, उसका आनंद उस हिंदी में ही आएगा। अंग्रेजी में रूपांतरण करने पर, अनुवादित करने पर वो आनंद नहीं आ सकता, वो गंभीरता नहीं आ सकती उन शब्दों की। तो ये है सर।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर आपको, और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो रही होगी आज के आपके भाषा को सुनकर, आपकी भावनाओं को सुनकर। तो एक और बात पूछना चाहूंगा कि कई बार हिंदी हमें मुश्किल क्यों लगती है, कभी कभी क्या कारण हो सकता है?
1: हमारे ये शिक्षक वर्ग के क्षेत्र से गड़बड़ है सर।
2: अच्छा अच्छा।
1: तो अध्यापक का सबसे पहला काम है उस विषय में रुचि पैदा करना, बच्चों को बच्चों के मन में एक जागृति पैदा करना, एक ऐसी चीज डालना कि भाई हिंदी तो हमारे दिल की भाषा है। यदि हम ये बात कहने सिखाएं बच्चों से और बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाए तो कहीं गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे अब तक हमें भी बचपन में सर मात्राओं को जब पढ़ाया तो मात्रा, जैसे कहते हैं चंद्र बिंदु लगा दो, छोटी मात्रा चढ़ा दो, बड़ी मात्रा चढ़ा दीजिए, ये तीनों चीजें अशुद्ध है सर। हिंदी में मात्राएं नहीं है, हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियां हैं। किसी स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं तो मात्राएं कितनी होती है तो बताते हैं 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है। ये स्वर बता रहे हैं वो। पढ़ाने का यदि मेथड हम लोगों का बढ़िया हो जाए तो उसमें बच्चों को भी रुचि आती है सर, इसलिए भी बच्चे इससे भागते हैं। अब जैसे वर्णमाला सिखानी है क्योंकि हमारे यहाँ 52-55 अक्षर है, है ना सर, इंग्लिश में 26 है तो वो कम है तो जल्दी याद हो जाते हैं बच्चों को। अब 52 अक्षर याद नहीं होते तो इस कारण से बच्चा भागता है, कारण उसको पढ़ाने का है गड़बड़। जैसे हम उसको यह कहें कि भाई तुम्हें बावन अक्षर याद नहीं करने, आपको तो कचट तप याद करना है सब, कचट तप। तो सीधा अर्थ इसका हो जाएगा कैवर्ग चैवर्ग चैवर्ग चैवर्ग चैवर्ग, 25 हो गए, यह लेवे ध्वनि वो हो गई, है हो गया 25 और 8 33, ये हो गई। अब यदि हम स्वर पढ़ाते हैं तो स्वर क्या करके पढ़ाते हैं, जबकि बताना चाहिए कि स्वर 11 ही होते हैं। भोलानाथ तिवारी की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि स्वर 11 हैं, 12 और 13 नहीं है। अब 5 छोटे 5 लघु और 5 गुरु हैं सर, और ऋषि जो है, ऋषि जिसे बनता है वो संस्कृत से आया हुआ है। तो पढ़ाने का मेथड, पढ़ाने का जो ढंग, यदि सरलीकरण है हम लोगों का और रुचिकर है, तो बच्चे उस भाषा से, उस विषय से दूर नहीं भागते, बल्कि उस विषय को आत्मसात करते हैं और उस विषय में वो पारंगत भी हो जाते हैं सर।
2: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर जीत सर। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुना है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को, और हमारे साथ आज के विशेष मेहमान डॉक्टर जीत सर है, जिनसे हिंदी के बारे में बातें हो रही है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और डॉक्टर अजीत सर हमारे साथ हैं। हिंदी के बारे में बड़ी ही गंभीर बातें और बहुत ही अच्छी बातें वो बता रहे हैं। और हिंदी को सीखने का अब आसान तरीका क्या हो सकता है, किस तरह से हम हिंदी के प्रति सजाग हो, आप इसके लिए डॉक्टर अजीत सर हमारे विद्यार्थी मित्रों को, बच्चों को क्या बताना चाहेंगे?
1: जी सर,
0: जी जी,
1: मैं यही बताना चाहूंगा कि हिंदी से जो व्याकरण है ना सर, व्याकरण को ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाना चाहिए और व्याकरण को आत्मसात करना चाहिए। हिंदी बड़ी संवेदनशील भी है और बहुत ही वैज्ञानिक है सर।
0: अच्छा।
1: देवनागरी लिपि की यदि हम बात करें तो वैज्ञानिक है। ए के बाद आ और क के बाद ख क्यों आता है, ये सब वैज्ञानिक रीति है सर, वैज्ञानिक स्थिति है। साइंस ही विज्ञान नहीं है, बल्कि हमारी हिंदी वर्णमाला जिसे हम कह रहे हैं वो भी वैज्ञानिक रीति है और वैज्ञानिकता के स्तर पर पूरी खरी उतरती है सर। जैसे अल्पप्राण महाप्राण ध्वनियां हैं, अल्पप्राण महाप्राण ध्वनि, अब सीधा सा अर्थ है, अल्पप्राण का मतलब है अल्प माने आधा, प्राण माने हवा, हवा। तो जिस जिन वर्णों में आधी हवा उच्चारित हो रही है वो अल्पप्राण हो गए, जिनमें उससे अधिक हो रही है वो महाप्राण ध्वनि हो गई। अब जैसे को कै बोलते हैं, हम एक तो उच्चारण भी गलती करते हैं, कै बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, इस वर्ण को गलत बोलते हैं, वर्णमाला सारी ही मतलब उसका उच्चारण गलत तरीके से करते हैं, जबकि बोला चाहिए हमने को। अब ये अल्पप्राण है, अब मैं अंग्रेजी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अल्पप्राण वो ध्वनि है जिनमें स्पेलिंग में एच नहीं आता सर। जैसे क को हम कै लिखते हैं, के लिखते हैं, और ख के एच। अब ये महाप्राण हो गया क्योंकि इसमें ध्वनि अधिक निकल रही है, को खो गो, फिर अल्पप्राण आ गया जी बनेगा, और जी एच घो, इसका मतलब ये महाप्राण है, यानी पहला और तीसरा अल्पप्राण, बाकी के सब महाप्राण ध्वनि है सर। तो एक समझाने का जो तरीका है वो यदि अच्छा हो तो बच्चे अपने आप उस तरह से अच्छा सीख पाते हैं और एक अच्छे मतलब एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं सर, विश्व स्तर पर भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूंगा कि एक करियर की बात अगर हम लोग करें, जैसे कि शुरुआत में आपने बताया बहुत सारी चीजें बच्चों में, जैसे कि हम लोग हिंदी को लेकर सिर्फ अध्यापक या ट्रांसलेटर छोड़ के सरकारी नौकरियां कौन कौन सी मिल सकती हैं, सरकारी दफ्तर में कौन कौन सी जगह हम हिंदी के वजह से शिरकत कर सकते हैं, वो बताइए सर।
1: हाँ, सरकारी सर शिक्षक जो है, चाहे वो प्राइमरी से लेकर वो हायर एजुकेशन तक, शिक्षकों की भर्तियां और शिक्षक इस भारतवर्ष में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिक्तियां भी निकलती हैं। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र शिक्षकों के क्षेत्र में है, यदि हम कार्यालय को छोड़ दें, इन बातों को छोड़ दें, तो शिक्षक की नौकरियां जो है बहुत अधिक है और वो निकलती भी रहती है। और उसमें जब भी आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि शिक्षकों की जो भर्ती है वो पूरी नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं क्षेत्रों में कमी है, वो अध्यापक वर्ग ही है जो पूर्ति कर सकता है सर। और आजकल तो सी टेट बी एड वगैरह वगैरह करके तभी तो योग्यता पूरी करके तभी आदमी, मतलब एक सरकार ने भी थोड़ा सा बाधा सी डाल रखी है, ताकि पहले क्या था, पहले बी एड की और नौकरी लग जाया करती थी, अब उसमें सी टेट और यूपी टेट और सी टेट लगा रखे हैं सर। तो ये भी एक थोड़ी सी जनसंख्या को लेकर समझिए, या और नौकरियां कम होती जा रही हैं और जनसंख्या ज्यादा है, पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा है, तो इसमें भी थोड़ा सा अंतराल आ रहा है सर।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि और कहाँ कहाँ हम लोग जो हैं इन सारी चीजों को देखते हुए कैसे हम लोग सरकारी ऑफिस में भी अच्छा जो है काम कर सकते हैं, ये आपने बताया है। और जाते जाते सर मैं चाहूंगा कि आपको विद्यार्थी मित्र सुन रहे हैं उन सभी को क्या बताना चाहेंगे, एक संदेश के रूप में, एक मैसेज के रूप में, या एक मोटिवेशन के रूप में? जी
1: जी, मैं संदेश के विषय में ये बतानी चाहूंगा अपने सारे विद्यार्थियों को कि विषय कोई कमजोर नहीं होता, और ये हमारे मन में ये आत्मग्लानी नहीं होनी चाहिए कि हम हिंदी भाषा के हिंदी क्षेत्र के लोग हैं तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी बोलने वालों से हम कहीं पीछे नहीं है, जिन शब्दों की हिंदी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी अंग्रेजी बनाई नहीं जा सकती सर। तो लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम शुरू से ही उसके लिए प्रेरित रहें और अच्छी तरह से मतलब बोल सकें, पढ़ सकें, पढ़ा सकें, अच्छी तरह से उनका अध्ययन किया जाए, तो तभी हम अच्छे विद्यार्थी के रूप में भी होंगे। शोध कार्य भी हम उस तरीके से इस तरीके करेंगे तो हम पूरे विश्व में नाम होगा हमारा। शोध कार्य से बच्चों को जुड़ना चाहिए सर, छोटे छोटे शोध कार्य भी करेंगे हम, चाहे किसी शब्द का ही शोध कार्य करें, चाहे हम किसी विषय पर शोध कार्य करें, क्षेत्र का शोध कार्य करें, तो यदि हम इन चीजों से जुड़े रहेंगे तो बच्चे भी इससे प्रेरित होंगे और आने वाले समय बच्चों के लिए भी उज्जवल भविष्य का काम करेगा।
0: डॉक्टर जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताया और विद्यार्थी मित्रों को आपने अपने अनुभव के साथ साथ हिंदी में कैसे हम अपना करियर कर सकते हैं इस विषय को बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल शब्दों में अपने अनुभव के साथ साझा किया, हमें बड़ा अच्छा लगा और बहुत बहुत साधुवाद आपको, और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह रेडियो से बने रहे हमारे साथ में। और चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और मैं चाहूंगा कि सर ने जो जो बातें आपको बताई है उस पर गौर कीजिए और हिंदी के साथ प्यार से उसको सीखे, उसको पढ़े, उसके साथ आप जिए और अपने करियर को अच्छा बनाए, इसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। धन्यवाद सर,
1: धन्यवाद सर।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हेलो यशु, कैसा है?
1: ठीक हूँ, आप बताओ।
0: मैं भी ठीक हूँ। और आजकल क्या कर रहे हो तुम? बहुत दिनों से दिख नहीं रहे स्टूडियो में।
1: भैया थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था मुंह पे, इस कारण तबीयत खराब हो गई थी।
0: अच्छा, और मम्मी पापा कैसे हैं?
1: मम्मी पापा तो ठीक हैं। आपको पता है क्या हो गया? पापा गए हैं दिल्ली।
0: अच्छा,
1: काम से। और जब तक मेरी तबीयत खराब थी तो मैं ही सुबह के समय, जब मम्मी तो जाते हैं स्कूल में पढ़ाने और मेरी बहन जाती है पढ़ने स्कूल में, तो उस समय दोनों चले गए होते हैं, मैं घर पे अकेला होता हूँ। और आसपास कितने सारे लेबर्स वर्कर्स काम करते हैं ना, तो घर पे अकेले रह रहे का थोड़ा डर लगता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मम्मी देकर जाते हैं घर पे कि संभालना।
0: अच्छा, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुम्हें?
2: हेलो बच्चों।
3: हाय दीदी,
2: कैसे हो तुम लोग?
3: ठीक है।
2: अच्छा, तो स्टूडियो में अभी तुम लोग बैठ के क्या बातें कर रहे थे? यश और पंकज, आप दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
0: दीदी अभी यश आया बहुत दिनों बाद, तो मैं बस पूछ रहा था कि आजकल कैसा है और क्या चल रहा है उसके घर पे। और इसने बताया कि इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है क्योंकि इसके पापा कहीं बाहर गए हुए हैं।
2: भाई अगर मम्मी पापा घर पे ना हो, कोई भी एक घर पे ना हो, तो बच्चों पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ ही जाती है।
4: हाँ दीदी।
3: जी दीदी,
2: है ना। तो एक काम करते हैं, आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि आप बच्चों के ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं।
3: जी दीदी।
1: ओके
2: ठीक है। तो सबसे पहले दृष्टि, आप बताओ कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप फील करते हो कि आपकी है?
3: कभी कभी जब मम्मी घर पे नहीं होते, मतलब मोस्टली मम्मा घर पे नहीं होती क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं ना, तो इस वजह से फिर घर को संभालना, जैसे बर्तन धोने का काम होता है, झाड़ू पोछा होता है, तो यश भी कभी कभी यहाँ स्टूडियो आ जाता है तो मैं घर पे वो सारे काम करती हूँ और मुझे लगता है कि वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मुझे करनी चाहिए।
2: अच्छा, घर के अलावा भी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको लगता है, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा करने की हो या फिर कुछ और ऐसे काम हो, जो आपको लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है?
3: जी दीदी, क्योंकि स्कूल में हम लोग को कितने सारे काम देते हैं, कोई टीचर हमें इंग्लिश स्पीकिंग मॉनिटर बनाता है तो उसके लिए भी हमको पूरे क्लास को देखना पड़ता है कि वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि नहीं, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मतलब मुझे लगता है मेरी स्कूल में जो फ्रेंड्स होती हैं, कभी कभी क्या होता है वो लोग एब्सेंट हो जाते हैं तो उनका काम करवाना ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसमें उनकी मदद करना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
2: अच्छा, तो अभी यश आप बताओ, आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील होती हैं?
1: दीदी मेरे को रेडियो में जैसे हमारा उड़ान का शो आता है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए दीदी ने जिम्मेदारी दी है कि हम कुछ चीज़ें घर से लाएं और कुछ इधर आके थोड़ी प्रिपेयर कर लें। और मम्मी ने कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी हैं, जैसे घर पे साफ सफाई रखना, कोई ना कोई काम करते रहना और घर का संभाल रखना, और जैसे कुछ नीचे लेबर्स काम करते हैं, मेरे को थोड़ा डर तो लगता है बट लेकिन फिर भी स्कूल में फ्रेंड्स की तो बस हेल्प करना, उनके साथ मस्ती करना, बस खेलते रहना, पढ़ते रहना फ्रेंड्स के साथ स्कूल में, जैसे उनकी हेल्प करना। और क्लास में जैसे मैम ने कुछ ना कुछ अगर हमें किसी चीज़ के लिए अपॉइंट किया हो तो वो काम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट चीज़ करके मैम को थमाना।
2: ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने। पंकज आप बताओ, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको लगता है इस वक्त आपकी है?
0: मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सुबह आंखें खोलते ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि सुबह अपने टाइम पे उठना ताकि हम पूरे दिन का जो टाइम है उसको मैनेज कर पाए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं 5 बजे उठूँ जिससे कि मैं अपने पूरे दिन का जो भी शेड्यूल है उसको मैं मैनेज करूँ। तो ये स्टार्टिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके बाद बिना किसी के कहे और बिना मम्मी पापा के कुछ बोले ही अपने सारे कामों को करना, जैसे स्कूल के लिए रेडी होना, ब्रेकफास्ट करना और जो भी काम होते हैं हमारे, कपड़े वगैरह भी अच्छे से आयरन करके पहनना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये मैं खुद करता हूँ।
2: ठीक है। और
0: घर पे कोई भी अगर सामान लाना हो बाहर से या कुछ भी काम करना हो जो करना चाहिए, तो वो सब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। और स्कूल में भी अगर टीचर नहीं हो तो स्कूल के क्लास की चीज़ों का ध्यान रखना, और हमारे जो भी शेड्यूल के जो काम होते हैं उनका खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी शेड्यूल को तोड़े नहीं, तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है, शेड्यूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। अच्छा सैंडी, आपको क्या लगता है आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं?
4: यदि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम जब पंकज जैसे बोला कि जब उड़ते तब से, तो सबसे पहला तो टाइम का पंकज ने बताया वो है ही है। फिर दूसरा कि हम अपने कभी कभी कुछ काम के लिए मम्मी बोलती है तो मैं शायद कभी नहीं कर पाता, तो फिर मैं बाद में फील करता हूँ कि हाँ मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करनी भी चाहिए। फिर फर्स्ट पढ़ाई, कि हमारी पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हम कुछ नहीं पढ़े करेंगे तो फिर हमारे मम्मी पापा को बुरा लगेगा, तो ये दूसरी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अगर स्कूल से आए तो अपना बैग सही जगह पर रखना, अपनी कॉपी किताब का ध्यान रखना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कभी कभी मैं किताबें यहाँ रख देता हूँ और फिर बाद ध्यान नहीं देता हूँ, तो मुझे फील होता है कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे रखना चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ नहीं मिलती है, फिर स्कूल के लिए कॉलेज के लिए लेट होते हैं, इसीलिए ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है जो हमें करनी चाहिए।
2: फ्रेंड्स के प्रति कुछ नहीं?
4: हाँ फ्रेंड्स के प्रति भी है, जैसे कि अगर वो दुखी है तो मुझे पता करने का क्यों दुखी क्यों है, अगर मेरी बात से उसे कोई बुरा लगा तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे कारण बुरा क्यों लगा उसे, फिर उसे हैप्पी भी रखना, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
0: दीदी हमारी फ्रेंड्स के लिए तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए हैं और हमारे भले ही हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए हैं और वहाँ कुछ भी करते हैं, एक दूसरे को संभालना या किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको समझाना या उससे निपटना, सारे फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सही सलामत और सुरक्षित अपने घर पहुँचे।
4: हाँ और दीदी दूसरी बात और कि हम कहीं जाते हैं और कुछ हमारे साथ गलत होता है तो फ्रेंड्स को तो पता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम चाहें तो अपने घर वालों को ही बताना चाहिए कि बाद में कुछ प्रॉब्लम होती है तो कि हाँ मैं वो फिर मैं सिक्योर कर सकें, इसीलिए ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
2: मतलब पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होती है?
3: जी दीदी।
2: हाँ यश आप क्या कहना चाह रहे हो?
1: और दीदी जैसे हमारे दोस्त को अपने से हमारे ग्रुप से अलग ना होने दे, छूट ना जाए किसी चीज़ को देखते हुए, तो ये भी बात है। अगर वो अलग हो जाए या उसको नया हो इस जगह पे, जैसे उसने देखा ना हो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, अगर ना उसके पास फोन हो तो उसके लिए एक मुश्किल हो जाएगी ना, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे सारे फ्रेंड्स हमारे साथ बिल्कुल एक ग्रुप में ही साथ में चल रहे हैं इकट्ठा वैसे।
2: अच्छा
3: दीदी हमें हमारे मैनर्स का ध्यान रखना, वो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम किसी से जुबान ना लड़ाए,
2: ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होती है?
3: जी दीदी।
2: अच्छा तो अब मुझे ये बताओ, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने फील की अपने फैमिली के प्रति, स्कूल के प्रति, टीचर्स के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी भी हैं जो आपको अपने देश के प्रति फील होती हैं?
1: उसे स्वच्छ रखना, जैसे हमारे बाहर की कंट्री से हमारे इंडिया का कई कई जगह देखने आते हैं फॉरेनर्स, वो सोचते होंगे कि थोड़ी बहुत गंदगी है यहाँ पे, जैसे फॉरेन कंट्री साफ होती है वैसे हमें भी अपने भारत को स्वच्छ और साफ बनाना चाहिए ताकि और लोग आके हमारे भारत को देखें।
2: ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है?
1: यस दीदी।
2: और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी?
3: दीदी हमें पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
2: और पंकज?
0: दीदी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और होती है टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो, जो हमारे बाहर के जो फॉरेनर्स हमारे इंडिया में घूमने के लिए आते हैं तो उन्हें काफ़ी लोग होते हैं जो उनको मिसगाइड कर देते हैं या किसी तरह उनसे कुछ पैसे कमाने की लालसा दिखाते हैं और उनको लूटने की भी कोशिश करते हैं, तो एक तरह से हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है या कोई उनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर अगर हम मौजूद हों तो हम उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं और उनको कुछ अच्छा बताया जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
2: मतलब सही इन्फॉर्मेशन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। आपको लगते हैं? अच्छा और सैंडी आपको?
0: दीदी आजकल जैसे देश में काफ़ी चर्चे में चल रहा भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार से जैसे हम खुद भी भ्रष्टाचार करते हैं, जैसे मैं भी कई बार बाइक पर जा रहा होता हूँ तो हेलमेट नहीं भी पहना होता लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला अगर रोकता है तो मैं साइड से निकल जाता हूँ या उसको चकमा दे के कहीं से खिसक जाता हूँ, तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए या पैसे बचाने के लिए ऐसा कर लेता हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस जिम्मेदारी को अपने सर पर लूँ और जितना हो सके अपने देश के लिए कुछ करूँ, तो ये देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसे और भी देखा जाए तो कई तरह के भ्रष्टाचार हैं, जिस भ्रष्टाचार में हम साथ देते हैं, हम खुद जिम्मेदार होते हैं उनके, तो ऐसे भ्रष्टाचार हमें नहीं करने चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
2: बिल्कुल, मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट ना करना, जो गलत काम है उसे सपोर्ट ना करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होता है।
0: बिल्कुल,
2: तो मतलब आज से पंकज हेलमेट में ही हमेशा नजर आएगा।
3: जी दीदी।
2: अच्छा ठीक है बच्चों, देखो ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि कभी कभी हम किसी बारे में सोचते नहीं है, लेकिन जब हम सोचना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है।
3: जी दीदी,
2: है ना
1: दीदी। जैसे अगर किसी ने कोई गलत काम किया और हम उस बारे में जानते हैं बट लेकिन किसी को बता नहीं रहे हैं, तो फिर वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बताएं। हाँ। जैसे अगर वो हमारा दोस्त और हमें वो आ रहा है कि अगर हम बता देंगे तो आगे क्या होगा, ऐसे करके, लेकिन हम कुछ ना कुछ गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो आगे जाके उसकी फ्यूचर में ही उसको हेल्प मिलेगी। जैसे अभी हम उसको रोक देंगे वैसे काम करने से, तो फिर आगे जाके वो वैसे करेगा नहीं, क्योंकि उसे याद आएगा कि अरे हाँ मैंने किया था तो ऐसे हुआ था।
2: तो मतलब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि अपने दोस्त को गलत कामों में साथ नहीं देना है।
1: यस दीदी, होती है,
2: फील होती है।
3: दीदी मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच बोलना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
2: बिल्कुल, सच बोलना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत अच्छी बात कही दृष्टि आपने। अच्छा ठीक है, ये तो आप लोगों ने बताया कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फील होती हैं। अब ये बताओ, कभी कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आई है या कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया हो जबकि उस समय सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे कि आप वो चीज कर पाए, लेकिन क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसीलिए आपने वो काम किया हो?
0: दीदी एक बार क्या हुआ था, अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, एक दो महीने पहले की बात है। तो मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब होने के कारण कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी लेबर्स या मिस्त्री काम करते थे उनका ध्यान रखना, उनसे काम करवाना या साइट को संभालना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी, क्योंकि अगर नहीं संभालते तो काफ़ी नुकसान हो जाता। तो मैंने 1.5 महीने तक कंस्ट्रक्शन साइट को संभाला था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर।
2: ये तो पंकज ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कभी कभी जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हम हार मान जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन दुखी ना होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानकर जो उसने काम किया उस सब के लिए मुझे लगता है हम सबको जोरदार ताली बजानी चाहिए।
1: थैंक यू।
2: अच्छा तो अब मुझे ये बताओ कि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपको कैसा फील होता है?
3: बहुत बुरा लगता है दीदी, ये मेरे साथ आज ही हुआ। मतलब मैं रेस में थी और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सफायर हाउस यानी कि जो ब्लू हाउस होता है उसको कैसे भी करके मुझे जिताना था रेस में, और उन्होंने बोला था जो फर्स्ट और सेकंड आएगा वही जीतेगा। बट लेकिन हुआ क्या, जो मेरे साथ दो लड़कियां थी ना अलग अलग हाउसेस की, वो पहले भाग गई टाइम से पहले, और मैंने जब सर को बताया तो सर ने भी बोल दिया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं होता है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे को सेकंड या फर्स्ट आना चाहिए था, लेकिन मैं थर्ड आई, तो मुझे लगा कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाई।
2: अच्छा दृष्टि देखो, इसमें एक बात ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अच्छा परफॉर्म करने की होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट या सेकंड आए ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं लेनी चाहिए। हमारी

0: किया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है।
1: जी दीदी, और बाद में जिस दीदी ने मुझे सिलेक्ट किया था उन्होंने बोला कि अगर वो लोग जल्दी नहीं भागते तो आप फर्स्ट जरूर आते, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा बोला।
0: और सैंडी आप बताओ, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते हो तो कैसा फील होता है?
2: ऐसे तो बुरा लगता है दीदी, क्योंकि जो हमारा दायित्व था हमने पूरा नहीं किया, तो बाद में से फील होता है कि हाँ मुझे करना चाहिए था और नेक्स्ट टाइम करने की कोशिश भी करते हैं।
0: कभी आपने ऐसा कुछ फील किया है अपनी लाइफ में?
2: हाँ दीदी, एक बार घर पे शायद कुछ काम चल रहा था, पापा ने बोला था कि उस दिन संडे था, पापा ने बोला था ये काम करके रखना, वो गए थे ड्यूटी, फिर मैंने किया नहीं, फिर शाम को आया तो उन्होंने बोला किया नहीं, फिर दूसरे दिन मैंने शायद नहीं किया, तो फिर मुझे तीसरे दिन से बुरा लगा कि हाँ मुझे कर देना चाहिए था, क्योंकि बाद में तीसरे दिन पापा ने खुद ने किया, फिर मुझे बुरा लगा कि हाँ मुझे कर देना चाहिए था, तो मुझे तो उस वक्त थोड़ा बुरा लगा था।
0: बिल्कुल, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो हमें बुरा तो लगता है, लेकिन उसके बाद हम स्टेप क्या लेते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। अगर हम ये सोच लें कि हमें आगे करना ही है तो मतलब हमें एक लेसन मिल गया जो लाइफ लॉन्ग हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में मदद करता है। तो क्या आपने ये लेसन दिया?
2: हाँ बिल्कुल दीदी।
0: अच्छा यश, आप बताओ आपको कैसा लगता है या फिर आप उसके बाद क्या करते हो?
3: जी वैसे तो बहुत बुरा लगता है जब मैं कोई काम पूरा ना कर पाऊँ, तो जैसे घर पे मम्मी अगर कोई काम देकर जाएं और अगर वो पूरा ना हो तो जब मम्मी घर आते हैं तब थोड़ी डांट भी पड़ती है और बुरा भी बहुत लगता है कि मतलब ये काम पूरा नहीं कर पाए, जैसे कोई भी काम हो, घर का हो चाहे बाहर का हो, तो मतलब फिर उससे तो मैंने सीख ली और अब मम्मी कोई भी काम बोले तो मैं टाइम टू टाइम करके दे देता हूँ।
0: मतलब मम्मी जो काम बोलती है वो इम्पोर्टेंट ही होगा और मैं कर सकता हूँ तभी वो बोलती है, इसीलिए उसे तुरंत कर देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल तुरंत कर देना सबसे अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई यश आपने। पंकज आप बताओ, कभी आपने ऐसा कुछ फील किया है या फिर उसके बाद आपने क्या किया है?
4: दीदी बहुत पहले की बात है, जब मैं थोड़ा छोटा था और मेरे मम्मी और दीदी वगैरह सब गाँव गए हुए थे, मैं और मेरे पापा ही केवल यहाँ आबरोड में रह रहे थे, तो एक बार क्या हुआ कि पापा ने कुछ बाहर सूखने के लिए रखा था और पापा ने कहा था कि बारिश हो या कोई जानवर उसे खा जाए उससे पहले उसको तो घर में रख देना और ध्यान रखना थोड़ा, तो मैं खेलने में बिजी था और मैंने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा और इतने में कोई गाय आके उसने वो खा लिया, तो फिर जब पापा घर पे आए और उन्होंने देखा तो मुझे बहुत डांट पड़ी और फिर मुझे बहुत बुरा फील हुआ।
0: और उसके बाद फिर आपने क्या सोचा?
4: उसके बाद मैंने सोचा कि मैं दोबारा कभी ऐसी गैर जिम्मेदारी वाली हरकत नहीं करूंगा।
0: अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, जब आप ये सोचते हो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा फुलफिल करोगे और वो डिसीजन लेते हो तो क्या उसको हमेशा खड़े रह पाते हो या भूल जाते हो?
1: दीदी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, वरना तो मैं कर लेती हूँ।
0: अच्छा तो अब एक और बात मुझे ये बताओ
4: दीदी, कई बार होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है लेकिन फिर भी हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते नहीं, उनसे दूर रहने की कोशिश करते।
1: जी दीदी।
0: अच्छा तो उनसे दूर रहने की जो हम कोशिश करते हैं तो वो क्या रीज़न होता है, हम क्यों कोशिश करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते क्यों हैं?
4: क्योंकि उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में शायद हमें ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, जैसे कि एक बार मुझे मेरी मम्मी ने कहा था कि कुछ काम दिया था करने को, एक हॉस्पिटल का बिल था उसकी कॉपी बनाने को कहा था कि इसकी कॉपी कर देना सारे जितने भी पेजेस हैं उनके, तो 30-40 पेज थे और उसमें बहुत सारे दवाइयों की लिस्ट थी तो उसको लिखना था मुझे, लेकिन वो इतने ज़्यादा थे कि मुझे देख के उसको करने की इच्छा नहीं हो रही थी तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की थी, लेकिन बाद में बहुत देर बाद मैंने वो काम किया।
0: क्योंकि कभी कभी हमारा मन नहीं होता है करने का।
4: तो मैं यही कहना चाहता था कि कई बार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता होती है लेकिन फिर भी हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं
0: क्योंकि हमारा मन नहीं होता है या फिर हमें मजा नहीं आता है वो करने में।
4: हाँ दीदी,
0: है ना, लेकिन मजे से ऊपर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसीलिए आपने करने की कोशिश भी की। तो यश आप बताओ, कभी आपने अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश की है?
3: नहीं दीदी।
0: अच्छा मुझे बच्चों आप ये बताओ, ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होती है जो आपके अराउंड लोग हैं, जो सबसे क्लोज लोग आपके अराउंड हैं, जैसे आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फील होती हैं कि उन्हें फुलफिल करनी चाहिए आपके लिए? हम पंकज आप बताओ।

0: दीदी, मेरे साथ कई बार क्या होता है कि स्कूल में जैसे काफ़ी टीचर्स हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स में और मुझ में काफ़ी डिफरेंस देखते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतने डिफरेंस जो वो महसूस करते फील करते वो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर स्टूडेंट को एक जैसा ही देखें और उनसे अपनेपन जैसा व्यवहार करें।
1: अच्छा दृष्टि, आप बताओ।
2: दीदी, मुझे लगता है कि मेरी मम्मी को मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के देना चाहिए। वैसे तो वो बहुत अच्छा खाना बना के देते हैं, लेकिन उनके काम की वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो सुबह सुबह जल्दी उठ के खाना बनाते हैं और मैं उसमें उनकी हेल्प करती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मुझे चाहिए कि वो और अच्छा खाना बनाए।
3: यानी कि कुछ स्पेशल बनाए।
2: हाँ
1: अच्छा, तो ये आपको फील होता है मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
2: जी दीदी।
1: और अच्छा यश, आप बताओ।
3: दीदी, मैं तो अपने दोस्तों के बारे में ये सोचता हूँ कि हर समय मेरे साथ ही रहे और कभी मेरे विरोधी टीम में ना चले जाए।
1: अच्छा, मतलब आपको ये लगता है कि आपके फ्रेंड्स की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा आपकी साइड ले।
3: हाँ, अगर गलत काम हो तो मेरे को समझाए, लेकिन अगर सही बात है तो फिर उनको मेरे साथ ही रहना चाहिए।
1: और सैंडी, आप बताओ।
4: दीदी, मुझे मेरी मैम से लगता है कि उन्हें ऐसा कभी लगता कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो कभी भी मुझे ऐसा बोलती रहती अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। मैम को विश्वास होना चाहिए मेरे पे।
1: मतलब आपको ये लगता है कि आप पे विश्वास रखना टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
2: जी दीदी।
1: हाँ। अच्छा, क्योंकि जब वो ऐसा नहीं करते तो आपको बुरा लगता है।
4: हाँ बहुत।
1: और किसी से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है? राह चलते लोगों से फील होती है, कुछ ऐसा लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मी पापा की?
2: दीदी, मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई लोग ना, किसी के अगर हम लोग के जैसे कभी ऐसा हुआ हो, होता है किसी किसी के साथ, कि उस जन के पैसे गिर जाते हैं, लेकिन बाजू में वो जो जाता है वो जानता है कि इसके पैसे गिरे हैं, लेकिन वो उसको नहीं देता, वो खुद रख लेता है। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना खुद रख कर उस जन को दे जिसके वो पैसे थे।
1: ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमें लगता है दूसरों को हमारे प्रति फुलफिल करनी चाहिए।
2: जी,
1: लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इन दैट केस आप लोग क्या करते हो? मतलब आपको कैसा फील होता है वो एक अलग बात है। जब वो लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते तो आप क्या करते हो?
2: दीदी, मैं जब मेरी फ्रेंड ऐसे करती है तो मैं उसको समझाती हूँ कि देख, मैं तुझे कभी फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं चाहती क्योंकि तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बट मैं उसको समझाती हूँ और बाद में फिर उन दोनों के बीच में जब वो फाइट होती है ना, उसको सॉल्व भी करना होता है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग साथ में बैठकर।
1: अच्छा, ये बात आपने अच्छी कही, क्योंकि कई बार नहीं समझ पाते, हमें लगता है दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी बात को समझे, लेकिन सबका समझने का नजरिया अलग अलग होता है।
2: जी दीदी।
1: तो जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि अगर वो ना समझे तो हम उन्हें समझाएं, क्योंकि कभी कभी हम अपनी बात कहते नहीं है, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझ जाएं।
2: जी दीदी, ये आपकी बात बहुत सही
1: है ना। तो समझाने में कोई पराई नहीं है, अगर कोई आपकी बात ना समझे तो उसे समझाओ। अच्छा सैंडी, आपको क्या लगता है?
4: दीदी, वो नहीं कर पाते बुरा तो लगता है, ये बात है। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं खुद वो कमियां दूर करता हूँ। कभी मैम बोलते कि मैम को विश्वास नहीं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ तो मैम को लगे कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैम को मुझे विश्वास हो कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और परफॉर्म करने की कोशिश भी करता हूँ।
1: ये अच्छी बात है अगर हम कोशिश करें अपनी तरफ से, क्योंकि हम दूसरों को तो बदल नहीं सकते।
2: जी दीदी,
1: है ना। तो दूसरे अपनी जिम्मेदारियां ना भी समझें, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है और ये हमारे प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
4: हाँ
1: हम
4: दीदी
1: अच्छा परफॉर्म करें।
2: जी दीदी,
1: है ना। और पंकज, आप बताओ।
0: दीदी, जैसे स्कूल में टीचर्स तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार नहीं भी निभाते हैं, या फिर उनसे कोई मिस्टेक में या किसी स्टूडेंट को समझने में गलती भी कर देते हैं अनजाने में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान न देकर अपने जो भी काम है उसमें ध्यान देना चाहिए और मुझे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए जो भी मेरा काम है उसमें।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास एक टीचर है, लेकिन एक टीचर के पास कितने सारे स्टूडेंट्स होते
0: हैं?
2: 65।
1: अब सोचो एक एक को समझ पाना कितना मुश्किल है।
2: बहुत ज्यादा दीदी।
1: है ना, तो कभी अगर बाय चांस या गलती से ऐसा हो भी जाए तो हमें बुरा फील नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो चलो आज हमने बहुत सारी बातें की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर और हमने ये समझा कि दूसरों की जो हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो फुलफिल नहीं भी कर पाते, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे प्रति हमारी भी हैं जो हमें पूरी करनी है।
2: जी दीदी।
1: तो इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए बाय बाय।
2: बाय बाय।
5: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
6: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
5: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं बोलो मैं।

0: का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
1: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
0: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?
1: आएगा आएगा

देखो ये तमाशा पहुँचे वहाँ से थाने, हुआ ये हम पे सितम, वहाँ जकड़े गए हम, मांगा परमिट जो उद्यम, हाय हाय हमने कहा ना ना, परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहाँ में दो दिन बिना दिया जाए, परमिट।

की दुखा पर कहा दो जहर मिश्र को बोला वो सितमगर क्या क्या परमिट को दिखाना परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट परमिट बिना इस जहां में दो दिन बिना

रोजा बुढ़े का हुक्का भरा, बोला क्या कर है फिरा, आज से पहले जरा परमिट तो दिखाना, परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहां में गुदिन बिना दिया जाए, परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट, परमिट बिना इस जहां में गुदिन बिना दिया जाए, परमिट परमिट परमिट।

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण। क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं जिनके सपने खो बैठूं वो प्रीतम अपने।
0: तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना?
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजाइया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां बिरह की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

0: नकली तोड़ा मारा था, असली तोड़ा हमसे सुनो।
1: काम तो सही तब सही, काम तो सही तब सही, काम तो सही तब सही।